कि कामनाओं की इच्छाओं को परिपूर्ण करे और संसार से पार लगाए, तारे, उसका नाम तरु है। ये जो प्रेमपुरी आश्रम एक कल्प तरु है, इसके जो है बीजारोपण करता जो स्वनाम धन्य प्रेमपुरी जी महाराज हैं, ऐसे कल्प तरु को यहां पर लगाया जिसके नीचे बैठ करके हम अपने जीवन के सभी कामनाओं को ही परिपूर्ण करते हैं और साथ में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। स्वाध्याय से, प्रवचन से सब कुछ उपलब्ध होता है। लोगों के मन में बड़ी भारी भ्रांति है। लोग क्या सोचते हैं कि स्वाध्याय प्रवचन तो निठल्ले लोगों का काम है, जिनको अब कोई संसार की जवाबदारी नहीं, जिम्मेदारी नहीं, ऐसे लोगों के लिए स्वाध्याय प्रवचन है। परंतु तो भगवान पतंजलि जी स्वयं कहते हैं, स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्याय से अपने इष्ट देवता का साक्षात्कार होता है और हमारी सारी इच्छाएं परिपूर्ण होती, चाहे आपके धन की इच्छा हो या किसी युवक की नौकरी नहीं लग रही नौकरी उसकी लगनी हो, या लड़की का ब्याह नहीं हो रहा ब्याह कराना हो, जितनी भी कामनाएं है ना, आज सबसे बड़ी तीन कामना है, नौकरी, विवाह और तीसरी क्या है, रोजगार धंधा। तो सब कुछ इससे संभव है। अर्जुन भी यही समझता था, अर्जुन यही समझते थे कि जो है हम भिक्षाटन करके आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे। उन्होंने कह भी दिया कि इस युद्ध रूपी संग्राम से बढ़िया भिक्षाटन करना, पर भगवान ने क्या किया, आत्मज्ञान का उपदेश दिया। असोच्यानन्व सोचस्तम प्रज्ञावादा च भाषसे गतासु न गता सोच नानु सोचन्ति पंडिता। इस प्रथम श्लोक में भगवान ने अर्जुन के प्रज्ञावाद पर कुठारा घात किया है, कारण नानु सोचन्ति पंडिता और प्रज्ञावादा च भाष्य, देखो दो शब्द का प्रयोग है कि प्रज्ञावादा च भाष्य का अर्थ है कि तुम बुद्धिमानों की तरह से बात कर रहे हो परंतु बुद्धिमान नहीं हो। तो अर्जुन भी अपने जमाने का बड़ा भारी प्रज्ञावादी था, जिसको हम बुद्धिवाद कहते हैं ना आजकल। ये बुद्धिवाद लोग क्या सोचते हैं कि ये जो है ना स्वाध्याय प्रवचन तो जिसको कुछ काम नहीं धंधा नहीं उनके जीवन का है। परंतु जब अर्जुन को भगवान ने गीता रूपी आत्मज्ञान को उपदेश दिया तो अर्जुन संग्राम को स्वीकार किया, जो अर्जुन भगोड़ा बन रहा था। ऐसी हमारे जीवन में यदि अधिक नहीं तो 24 घंटा में एक घंटा भी आप समय निकाल करके प्रेमपुरी आश्रम पधारे, स्वाध्याय प्रवचन श्रवण करें, तो जो हमारी ये जो प्रज्ञावादिता है इसमें निखार आएगा। जो हम लोग बुद्धिवाद से देह कोई सर्वस्व मान रहे हैं, इस शरीर ही सब कुछ है, देह ही आत्मा है, ऐसा मान करके जो हम लोग तमाम व्यवहार कर रहे हैं, जब आप स्वाध्याय प्रवचन श्रवण करेंगे तो आपको यह ज्ञान उपलब्ध होगा कि शरीर कुछ भी नहीं, इस शरीर व्यध्यारोपित है आत्म ज्योति के ऊपर। ये जब तक आत्म ज्योति है तभी तक शरीर, इंद्रियां अपना सारा काम सुचारू ढंग से कर रही हैं। जिस दिन आत्म ज्योति शरीर से जुदा हो जाए वो दिन तमाम व्यवहार बंद हो जाएंगे। व्यवहार तो बंद हो जाएंगे, आपके अपने लोग भी जो है ना बस तुरंत कहेंगे ले जाओ इसको जलाओ शमशान में। जब तक नहीं जलाएंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा, तुरंत जलाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो तमाम व्यवहार का आस्पद है आत्मा, उसी आत्मा की जानकारी आपको स्वाध्याय और प्रवचन के द्वारा श्रवण करने को मिलता है। और इसका परम श्रेय जिनका मैं बार बार नाम ले रहा हूं, स्वनाम धन्य महाराज श्री का है, उन्हीं की स्वर्ण महोत्सव मना रहे हैं।

सविद्या वासना कामना के कारण। सी कामना भी एक दो नहीं हजारों हैं। छोटा बच्चा होता है दो तीन वर्ष का, वह मात्र खेल कूद में मस्त होता है। बड़ा हुआ पढ़ने लगा, पढ़ने के बाद जब साक्षर हो गया तो कामना होगी ब्याह होनी चाहिए, धन होना चाहिए, मकान होना चाहिए। न जाने इतनी कामनाएं होती हैं जिसको भगवान ने गीता में कह दिया है, आशा पास सतैर बद्धा काम क्रोध परायणः यन्ते काम भोगार्थम अन्याय नाथ संचयान। ऐसी आशाएं कामनाएं हैं, वही हमारे अंतःकरण में चुभी हुई है, उनका नाम है वाण। क्योंकि व्याकरण में रलयुर बवयुर अभेद होता है, रकार और लकार, और वकार बकार का अभेद है। जैसे किसी आदमी के दो दो नाम नहीं होते हैं, वैसे रकार लकार और वकार बकार अभेद है, दो चीज नहीं है। तो वाण शब्द का अर्थ है बाण। जैसे किसी व्यक्ति को बाण लग जाए, बाण जो है ना ऐसे नुकीले होते हैं, सीधा शरीर में ऐसे जाता है पर जब आप खींचेंगे ना तो सीधा नहीं निकलता है, वो पूरा शरीर का लेकर आता है जो भी है हाड़ मांस चाऊ। तो जो हमारे शरीर में मन में अंतःकरण में अविद्या वासना और काम का बाण चुभा हुआ है, वह जिसके द्वारा निकल जाए वही न है निर्वाण। और जिसके शरीर से निकल जाता है ना, इस शरीर तीन है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, उसका मनाते हैं स्वर्ण निर्वाण महोत्सव। तो निर्वाण मतलब कि वासना कामना रूपी बाणों का समापन, स्वरूप में स्थिति, परमानंद की प्राप्ति। तो देखिए निर्वाण तो हम सभी चाहते हैं, ऐसा नहीं कि कोई नहीं चाहता हो। सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन की जितनी समस्याएं हैं, चाहे वह समस्या आध्यात्मिक हो, आदि भौतिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, वाचिक हो, कैसी भी समस्या हो जो शूल के समान हमारे को पीड़ा पहुंचा रही है, उन समस्याओं से निजात हो, परमानंद की प्राप्ति हो, सभी चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं तो निश्चित ही आपको इस निर्वाण के रहस्य को समझना पड़ेगा। उपनिषद में एक मंत्र आता है, ह्यात्मज्ञम ह्यार्चेत भूति कामः। जो लोग स्वाध्याय करते हैं उन्हें मालूम है, आत्मज्ञ की अर्चना करे भूति कामः। भूति शब्द का वहां पर दो अर्थ किया है, दैवित और मानुषवित, ऐसा दो अर्थ किया है। यदि आपको भूति मतलब ऐश्वर्य, चाहे आपको मानुषवित चाहिए, रुपया पैसा धन चाहिए, या आपको दैवित आत्मज्ञान चाहिए, दोनों ही कामनाओं की परिपूर्ति आत्मज्ञानी की अर्चना से होती है। इसलिए जो है इस 50 वर्ष के बाद स्वर्ण निर्वाण महोत्सव हम सभी लोग जो है मना रहे हैं। और ऐसा मनु महाराज ने भी कहा है, जहां पर विचार हुआ कि सनातन धर्म हम किसे कहते हैं, वहां पर मनु महाराज कहते हैं मनुस्मृति में, कृतम प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातन। ये मनु महाराज का कथन है, जिसने हमारे लिए कुछ किया है उसके लिए कुछ हमें करना चाहिए, यही सनातन धर्म है। कृतम प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातन। जिस महापुरुष ने बंबई जैसे महानगरी में प्रेम पुरूपी कल्प तरु का बीजारोपण किया, जिसके नीचे हम लोग बैठ करके अपने जीवन को सफल बना रहे हैं, उसके लिए कुछ मतलब कि तर्पण करने का अवसर है। इसलिए हमें हर्षोल्लास के साथ करना चाहिए, ये सनातन धर्म है। यदि हम नहीं करें तो हमें शास्त्रों में जैसा बतलाया गया है वैसा जो कृतज्ञता का दोष है वह लगता है। तो आज तो जो है हमें पता नहीं था प्रवचन है कि नहीं।

0: अग्निश भाई ने बताया भी होगा तो कुछ सुनाई नहीं पड़ा ट्रेन में, अचानक ही मालूम पड़ा प्रवचन भी है। तुमने कहा चलो कल से जो हम लोगों का प्रकृति विषय है शिव महिमन का, जिसमें से मैं समझता हूं 12 या 13 श्लोक हो चुके हैं, उसके आगे जो बाकी है उसको हम लोग करेंगे और पुस्तक लेकर के अपना जो है चलेंगे इन्हीं बचनों के साथ। मान करते हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।
1: ओम नमः शिवाय। You're listening to Shaivam.org Radios, 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
2: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Atharvana Veda, Saunaka Shaka, Kandam 2, Sukta 27. Thank you.

प्रजापातिष्ठ्वा साधयत्वपां पृष्ठे सामुद्रस्येमन् यचस्वतीं रथस्वतीं रथस्व पृथिव्यासि भूरासि भूमिरस्यदीतिरसि विश्वधाय विश्वस्य भुवानस्य धर्त्री पृथिवी यच्च पृथिवीन्द्रज्ञः पृथिवीं माहि ज्ञसीः विश्वस्मै प्राणाय आपानाय व्यानायोदानाय प्रतिष्ठायै चरित्राय अग्निष्ट्वाभिपातु मह्या स्वस्त्या छर्दिशा शन्ता मे नतया देवतायाङ्गिरस्वध्रुवासीद काण्डात् काण्डात् प्ररोहन्ति परुषः परुषस्परी एवानो दूर्वे प्रतानुसहस्रेण शतेन च या शतेन प्रत

ज्योतिरधारयत् प्रजापातिष्ट्वा सादयतु पृष्ठे पृथिव्या ज्योतिष्मतीम् विश्वस्मै प्राणाय आपानाय व्यानाय विश्वं ज्योतिर्यच्छ अग्निष्टेधि।

वृणक्त चित्रं देवानामुदागादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षज्ञ सूर्या आत्मा जगात्।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम डॉट ऑर्ग रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम डॉट ऑर्ग।

ಸದೇವಾಭವನ್ ಪರಾಸುರಾಧಮೇ ಪುರೋಣಾಧಮಾಲ ಅಗ್ನಿಮೇವಾ.

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Brahmasutra Shtikhanda Bhashyam, presented by K.S. Ageshwaran Nambodiri.
1: ओम नमो अहम् पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने
2: अतः केवल अध्ययनानन्तरं ब्रह्मविचारः इति चेत् भवतु नाम तादृशम् अध्ययनं तदनन्तरं तु धर्मविचारः तस्य तदसिद्धौ सिद्ध्यभाव
1: अथ इत्यस्य आनन्तर्यमर्थः कस्मादनन्तरम् इत्युक्ते अध्ययनानन्तरं वेदाध्ययनानन्तरम् इति भवतु वा इत्युक्ते भवतु वेदाध्ययनं तु अपेक्षते शाङ्करभाष्ये किमस्ति वेदाध्ययनानन्तर्यं तु समानम् इत्युक्तं समानम् इत्युक्ते तत्तु अपेक्षते साधारणकारणमिति असाधारणं कारणं किम् इति वक्तव्यं तत्तु वेदाध्ययनं न वेदाध्ययनं तु अपेक्षते नापेक्षते इति न परन्तु तावन्मात्रेण न पर्याप्तम् इति उक्तम्
2: आचार्यैः प्रतिपादितम् अथा तु धर्मजिज्ञासा इति तथा च आचार्यैः प्रतिपादितम् अथा तु धर्मजिज्ञासा इति प्रथमतः उपाध्यायात् अध्ययनानन्तरं धर्मविचारप्राप्तिरिति विचारः उच्यते
1: तत्र तदनन्तरं किमुक्तं भवतु नाम तादृशम् अध्ययनं तादृशं यादृशम् अध्ययनम् उक्तं तद् भवतु नाम तदनन्तरं तु धर्मविचारः वेदाध्ययनानन्तरं साक्षात् किं भवति इत्युक्ते धर्मविचारः भवति धर्मविचारो नाम पूर्वमीमांसा अध्ययनमित्येव तस्य तदसिद्धौ सिद्ध्यभावात् तस्य धर्मविचारस्य तदसिद्धौ वेदाध्ययन असिद्धौ वेदाध्ययनं विना सिद्धिरेव न भवति तत्र जैमिनिना तथैव उक्तम् अथातो धर्मजिज्ञासा इत्यत्र अथशब्दः वेदाध्ययनानन्तर्यं वदति अथशब्दस्तु वेदाध्ययनानन्तरम् इत्यर्थे तादृशीं किं धर्मजिज्ञासां पुरस्कृत्य अथशब्दं प्रयुक्तवान् आचार्यः या वेदाध्ययनमन्तरा न भवति इति भाष्यं तत्र शाबरभाष्यं तस्य तद् असिद्धौ सिद्ध्यभावात् इत्युक्ते तद् असाधारणकारणं तत्र इति ज्ञायते तथा आचार्यैः तत्र जैमिनिना प्रतिपादितम् इति प्रथमतः इति अन्यस्मिन् वाक्ये प्रथमतः उपाध्यायात् उपाध्यायस्य सकाशात् अध्ययनं कृत्वा
2: धर्मविचारप्राप्तिः
1: धर्मविचारः प्राप्तः साक्षात् कर्तव्यत्वेन स एव प्राप्तः किमनन्तरम् अस्य आरम्भः अस्य ब्रह्मविचारस्य किमनन्तरम् आरम्भः तदुच्यताम् धर्मविचारानन्तरम् आरम्भः कथम्
2: न वयं धर्मब्रह्मविचाररूपयोः शास्त्रयोः अत्यन्तभेदवादिनः एकत्ववादिनः
1: तदेव इदानीम् अपेक्षते न वयं धर्मब्रह्मविचाररूपयोः शास्त्रयोः अत्यन्तभेदवादिनो न अद्वैतिनस्तु भेदवादिनः धर्मविचारशास्त्रमन्यत् ब्रह्मविचारशास्त्रमन्यत् शास्त्रैक्यं न अङ्गीक्रियते अद्वैतिभिः नाङ्गीक्रियते रामानुजैरपि अङ्गीक्रियते शास्त्रैक्यम् अङ्गीक्रियते एतैरपि अङ्गीक्रियते धर्मब्रह्मविचाररूपयोः शास्त्रयोः अत्यन्तभेदवादिनः वयं न किन्तु एकत्ववादिनः अत्र किञ्चित् व्याख्यानं पठामि ननु धर्मब्रह्मविचारयोः ब्रह्मैकपर्यवसायित्वेन ऐकशास्त्र्यं मध्ये तदा अग्रे अग्रे सः अन्यः विषयः ततः पूर्वम् उत्तरमाह धर्मविचारानन्तरम् इति ननु धर्मविचारानन्तरं ब्रह्मविचारः इत्युक्तं धर्मब्रह्मविचारयोः पौर्वापर्यहेतुं हेतुसम्बन्धाभावादिति पृच्छति कथम् इति धर्मब्रह्मविचारयोर्वेदरूप एकग्रन्थव्याख्यानत्वेन एकशास्त्रत्वात् व्याख्येये वेदे धर्मब्रह्मभागयोः पौर्वापर्यमेव तत्पौर्वापर्यहेतुसम्बन्धः इत्यभिप्रेत्य उत्तरमाह न वयमिति अर्थः अवगतो वा किमवगतम् इत्युक्ते अस्य प्रश्नस्य उत्तरम् अनेन लब्धव्यं धर्मविचारानन्तरमेव ब्रह्मविचारः इति उक्तम् आचार्यैः तत्र किं कारणं कुतः इति पृष्टे न वयं द्वयोश्शास्त्रयोः भेदवादिनः किन्तु अभेदवादिनः इति समाधानम् अनेन किं समाधानम् आगतम् इत्युक्ते इदमेव वदन्ति पौर्वापर्येको हेतुः धर्मविचार अनन्तरं ब्रह्मविचारः इत्यस्मिन् पौर्वापर्येको हेतुः इत्युक्ते एकस्यैव ग्रन्थस्य इदं भागद्वयं यदा एकस्य ग्रन्थस्य भागद्वयं भवति तदा पूर्वभागं पठित्वा उत्तरभागः पठ्यते इति तु स्वाभाविकं तत्र विचारस्य अवकाशः एव नास्ति क्लेशः एव नास्ति इति कुतः एकग्रन्थत्वम् इत्युक्ते व्याख्येयस्तु वेदः एकः वेदस्य भागद्वयं धर्मविचारात् धर्मविधिवाक्यानि अनन्तरं ब्रह्मस्वरूपनिरूपणपराणि वाक्यानि इत्येवं वेदस्य भागद्वयं वर्तते तदेव उक्तम् अत्र व्याख्याने ननु पुनः पठामि पश्यन्तु ननु धर्मविचार अनन्तरं ब्रह्मविचारः इत्युक्तं धर्मब्रह्मविचारयोः पौर्वापर्यहेतुसम्बन्धाभावादिति पृच्छति कथम् उक्तम् एवं धर्मब्रह्मविचारयोः पौर्वापर्ये कोऽपि हेतुर्नास्ति इति पृच्छति कथम् इति कथम् इति प्रश्नस्य आशयः समाधानं किम् धर्मब्रह्मविचारयोर्वेदरूप एकग्रन्थव्याख्यानत्वेन एकशास्त्रत्वात् एकशास्त्रत्वे इदमेव हेतुः अयमेव हेतुः एकस्य ग्रन्थस्य व्याख्यानं चेदेकः एकं शास्त्रं वेदस्तु एकः तर्हि वेदरूप एकग्रन्थव्याख्यानत्वेन एकशास्त्रत्वात् व्याख्येये वेदे धर्मब्रह्मभागयोः पौर्वापर्यं व्याख्येये वेदे पौर्वापर्यमस्ति प्रथमतः धर्मविचारः अनन्तरं ब्रह्मविचारः तर्हि व्याख्यानेऽपि तथैव इति लभ्यते एवञ्च पूर्वमीमांसा जैमिनिना कृता उत्तरमीमांसा बादरायणेन कृता इति कृत्वा ग्रन्थभेदः इति न शङ्कनीयं तत्र व्याख्येयं तु एकं व्याख्यानं द्वाभ्यां ऋषिभ्यां कृतं तावदेव तावता ग्रन्थभेदः इति नास्ति नाम पृथक् अस्माभिः वेरवेर प्रिण्टिङ्ग् पण्णि इर्केन्द्रनाल ग्रन्थभेदं सुलकूडाद् इप गादाधरी इर्कल्या ಗದಾಧರ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಪಣ್ಣ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅದು ಇಪ್ಪ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸೌಕರ್ಯಾರ್ಥಂ ಪಂಚಲಕ್ಷಣಿ ಸುಲ್ರದ ಇಲ್ಲ ಪಂಚಲಕ್ಷಣಿ ಚತುರ್ದಶ ಲಕ್ಷಣಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಲಕ್ಷಣ ಅವಯವ ಪಕ್ಷದ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ಕೀಂಗ್ಲ ಇದು ತನಿತನಿ ಗ್ರಂಥಂ ಇಲ್ಲ ಇದು ತತ್ವಚಿಂತಾಮಣೇ ಅನುಮಾನಖಂಡಸ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ದೀಧಿತಿ ತಸ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಇದಂ ವ್ಯಾಖ್ಯೇಯಂ ಏಕಮೇವ ತತ್ರ ಪರೀಕ್ಷಾಯಾಂ ಗಂತೃ ಛಾತ್ರಾಣಾಂ ಸೌಕರ್ಯಾರ್ಥಂ ತನಿತನಿ ಮುದ್ರಣಂ ಪಣ್ಣಿರ್ಕಾರ್ ಅದನಾಲ ವೇರ ಗ್ರಂಥಂ ಆಯಿಡುವಾ அந்த மாதிரி
2: அவ்வளவுதான்
1: வக்தவியம் சாஸ்திரபேதவாதினா சாஸ்திரபேதவாதினா ஏ பவந்தி தேஷாம் சாஸ்திரபேத சாதனாய யாஹ யுக்தயஹ தா சர்வா தத்ர பூர்வபக்ஷத்வேன ஸ்தாபயதும் சக்யந்தே இதி வாக்யார்த்தா வக்தவ்யம் தர்ஹி அது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அதெல்லாம் பூர்வபக்ஷத்தில் வரும் வாக்கியார்த்தம் பண்ணோன்னா அது அதெல்லாம் கொண்டு வந்து வாக்கியார்த்தம் பண்ணலாம் சாஸ்திரபேதே கிம் பிரமாணம் சாஸ்திரபேதவாதினாம் ஆசயக்கா தத் தஸ்ய கண்டனம் பரஸ்பர விமர்சாதிகம் பவதி அவசியம் பவதி அதுக்கு ஒரு இடம் கொடுத்துருக்காரு அவ்வளோதான் விசாரம் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு சரி வியாக்கியேயே வேதே பிரம்ம தர்ம பிரம்ம பாகையோ பௌர்வாபரியமேவ தத் பௌர்வாபரிய ஹேது சம்பந்தா இத்யபிப்ரேத்யாஹ நவயமிதி விசாரசாஸ்திரையோர்தர்ம தர்மவிசாரசாஸ்திரே பூர்வாபர கிமஸ்தி பூர்வாபர ஷ அக்ஷரம் நதிருஷ்யதே அஸ்து அக்ரே படது கிந்து ஏகத்வவாதினஹ தர்மப்ரஹ்மணோ அக்ரே
2: தரிஹி கிம் அனந்தரமஸ்ய ஆரம்பஹ தர்மவிசாரானந்தரம் நவ யோ தர்மப்ரஹ்மணோ ஆராதன ஆராத்ய பூதயோ பிரதிபாதகம் அதாதோ தர்மஜிஜ்ஞாஸ
1: ஆராதனாராத்தியூத்தோதிபாதகம் ஜைமினியம் சாஸ்திரம் பிரம்ம பிரதிபாதகம் பாதராயணீயம் சாஸ்திரம் அஸ்து அனையோ கஹ சம்பந்தஹ பிரதிபாத்ய விஷயயோஹ சம்பந்தஹ அஸ்தி வா இத்யுக்தே ததப்யஸ்தி कः सम्बन्धः आराधन आराध्यभावः अस्ति धर्मस्तु भगवदाराधनात्मकः ईश्वर आराधनमेव धर्मः इति यदा स्वीक्रियते तर्हि धर्मेण आराध्यः वर्तते ईश्वरः तस्य स्वरूपं प्रतिपाद्यते उत्तरमीमांसायाम् उत्तरभागे इति स्थिते धर्मः यदा धर्मशास्त्रं धर्मशास्त्रं नाम धर्मशास्त्रम् इति धर्मविधिवाक्यम् अन्यत्र भवति धर्मविचारात्मकं शास्त्रम् पूर्वमीमांसाशास्त्रं यदा कश्चित् पठति तदानीम् ओ एतेन धर्मः विचारितः धर्मे विचारिते धर्मः सर्वोऽपि भगवद् आराधनरूपः ईश्वराराधनरूपः इति यदा ज्ञायते तर्हि तदानीं जिज्ञासा भवति एतैः धर्मैः आराध्यस्य ईश्वरस्य किं स्वरूपं, तस्य किं लक्षणं, के महिमानः इत्येवं जिज्ञासा भवति. तस्यां जिज्ञासायाम् उत्तरमीमांसाशास्त्रम् आरभ्यते इति वक्तुं शक्यते. इदानीं पौरापर्यं लभ्यते, तदेव उक्तं. पश्यन्तु, धर्मब्रह्मणोः
2: आराधन आराध्यभूतयोः प्रतिपादकम् अथातो धर्मजिज्ञासा
1: इत्यारभ्य इत्यारभ्य अथातो धर्मजिज्ञासा इत्यारभ्य अनावृत्तिशब्दादिति कुत्र अस्ति उत्तरमीमांसायाम् अन्तिमं सूत्रं तावत्पर्यन्तम् एकं शास्त्रम् इति वर्तते. अथातो धर्मजिज्ञासा इत्यारभ्य अनावृत्तिशब्दादित्येतावत्पर्यन्तम् एकमेव शास्त्रम्. अद् नडुविल् इन्नोन्नु इरुक्कु तेरियुमा, सङ्कर्षकाण्डम् इरुक्कु. सङ்கர்ஷகாண்டம் இருக்கு. சங்கர்ஷகாண்டம் வந்து பூர்வமீமாம்சையோடு சேர்ந்தது தான். சங்கர்ஷகாண்டத்தில் ஒன்றும் இல்லை. இப்போ நம்ம பூர்வமீமாம்சையில் அதிகரணங்கள், பாதங்கள், அத்தியாயங்கள் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதில் ஒரு கிரமமாக இருக்கும். ஒவ்வொரு அத்தியாயத்தில் விஷய நியமம் இருக்கு. இந்த சங்கர்ஷகாண்டம் எப்படி இருக்குன்னா, அதில் அங்கங்கே சொல்ல வேண்டிய விஷயம் விட்டு போச்சுன்னா அதெல்லாம் எடுத்துட்டு ஒரு இடத்துல போட்ட மாதிரி இருக்கு. சங்கர்ஷகாண்டம் ஜைமினியான்யேவ சூத்திராணி தேவ பிரசித்தி சங்கர்ஷகாண்டம் இருக்கு. அது ஒரு பூர்வமீமாம்சையுடைய ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் மாதிரி இருக்கு. அது ஊர்மீமாம்சதா ஊர்மீமாம்சாயாக விஷய இவ கிஞ்சித் தத்ர தத்ர கிமபி வக்தும் தியக்தமிவ பஷ்சாத் யோஜிதமிவ வர்த்ததே. சத்வாரஹ அத்யாயாஹ விஷகலித விசாராஹ வர்த்தந்தே. விஷகலித விசாராஹ யாக விஷய இவ ததைவ இதி சங்கர்ஷகாண்டம் இதி அஸ்தி ததபி யோஜ்யதாம். விம்சதி லக்ஷணீ மீமாம்சா இதி. விம்சதி லக்ஷணம் நாம அத்யாயாஹ. த்வாதஶ லக்ஷணீ ஜைமினிய மீமாம்சா. இது சங்கர்ஷகாண்டம் நாலு அத்தியாயம், இது நாலு அத்தியாயம் எல்லாமே சேர்த்து வேதார்த்த விசாரம்னா 20 அத்தியாயம். வேதார்த்த விசாரம் தர்ம விசாரம் பிரம்ம விசாரம். ஆமா,
2: தத்ர அதாத சேஷ லக்ஷணம் இத்யாதிவத் அவாந்தர பரிச்சேதஹ பரிச்சேதார்த்தஹ அயம் அதாதோ பிரம்ம ஜிஜ்ஞாஸா இத்யாரம்பஹ.
1: ஆ, இப்ப அதாதோ பிரம்ம ஜிஜ்ஞாஸா இத்யாரம்பஹ இதி ஆரம்பஹ. அது அந்த ஆரம்பம் எப்படி இருக்குன்னா, பரிசிஷ்டம் அங்க சொல்ல சொல்ல மறந்தது இல்ல. அவர் ஜைமினி அது அது பண்ணி முடிச்சிருக்கார். தர்ம விசாரம் எவ்வளவு பண்ண வேண்டியது இருக்கோ அவ்வளவு முடிச்சு பண்ணி பண்ணி பண்ணி முடிச்சிருக்கார். அதுக்கப்புறம் இதை ஆரம்பிக்கிறார். அது எப்படி அதாத சேஷ லக்ஷணம் மாதிரி இருக்கு. அதாத சேஷ லக்ஷணம் இது குற்ற அஸ்தி திருத்தீயாத்தியாய ஆத்தியம் சூத்திரம் ஜைமினியே அதாத்தோ தர்ம ஜிஜ்ஞாசா இது ஆரத்தம் கலு இதம் கிமர்த்தம் புனரம்பா இது பிரஷ்னோ பதி தரி ஏகமேவ சாஸ்திரம் சேத் அதா இது புனரம்பவத் கிமர்த்தம். இப்ப வந்து பசியந்தோ மங்களாச்சரணத்துக்கு கேள்வியே இல்லை. இப்போ இது நடுவில் இருக்கு. மத்திய மங்கள தது அஸ்து மங்களாச்சரணம் குதஹ ந கிருதம் இது கோலாஹலஹ ந கர்த்தும் சக்யதே. க்ரியதே சேத் அஸ்து அதஹ த்வனி மாத்திரேண மங்களம் பவதி இத்யுக்தம். ந கிருதம் சேதுபி கேட்க முடியாதுன்னு கேட்கிறேன் சொல்றேன். ஏன்னா நடுவில் தானே இருக்கு. நமக்கு ஒரு தனி கிரந்தமா தோன்றது அவ்வளவுதான். இப்ப கௌமுதி நாலு பார்ட்டா போட்டிருக்கா இல்லையா, என்ன நாலு புஸ்தகமா, அது நாலு கிரந்தமா, ஒரு கிரந்தம் தானே. ஆரம்பத்திலும் கடைசி வரைக்கும் ஒரே விசாரம், ஒரே விசாரமா அப்படின்னு கேட்டால் ஒரே விசாரம் இல்லை. பல பிரகரணங்கள், பல விஷயங்கள், ஒன்று ஒன்று முடிச்சு இன்னொன்று ஆரம்பிக்கிறார் இல்லையா. தத்வதேவ திரஷ்டவியம் இது வதந்தி. தத்வதேவ திரஷ்டவியம் தரிஹி அதாத சேஷ லக்ஷணம் இது யதா திருத்தீயாத்தியாய ஜைமினிய சாஸ்திரே ஏவ ஆரம்பியதே. ஜைமினிய சாஸ்திரம் அதாதோ தர்ம ஜிஜ்ஞாசா இது ஆரம்பம் பிரமாணாத்தியாய ஆரம்பே வர்த்ததே. அனந்தரம் கர்மபேதா நிரூபிதா த்விதீயாத்தியாயே. அனந்தரம் அங்கத்வம் அங்கத்துவம் அங்காங்கி பாவ நிரூபணார்த்தம் திருத்தியாத்தியாயம் ஆரம்பியதே அத இது அஸ்தி தத்ர தாவதா தத் அன்யத் சாஸ்திரம் இது உச்சதே வா கேனாபி. அத இதானீம் கர்மபேதம் நிரூப்ய அனந்தரம் இதம் நிரூப்யதே அங்காங்கி பாவோ நிரூப்யதே இது கலு வக்தவ்யம். தத்வதேவ இதானீம் பகவத் ஆராதன ரூபம் தர்மம் விசார்ய இதானீம் ஆராத்யஸ்ய பகவதஹ.

0: मोक्षस्य साधनमेव अन्ततो गत्वा धर्मः सर्वोऽपि इति भवता अङ्गीकृतं स्यात्। अस्तु इष्टापत्तिः इति उच्यते, सम्यक्, विरोधो नास्ति अस्माकं। तर्हि तथा चेत् अत्रैव साधनाध्यायः इति वर्तते, तस्य तत्र निवेशापत्तिः सर्वस्य जैमिनीयशास्त्रस्य जैमिनीयशास्त्रं सर्वमपि इङ्गे साधनाध्यायं इरुक्कु इल्लैया, பலாத்தியாயத்துக்கு முன்னாடி சாதனாத்தியாயம் என்ன, மோட்சத்துக்கு சாதனமான உபாசனைகள் எல்லாம் சொல்றதாங்க. இதமபி சர்வம் தத்ர நிவேசனியம் ஸ்யாத், சமக்ரம் ஜைமினிய சாஸ்திரம் இங்க கொண்டு வரணுமே, ஏன் வரல இது பிருஷ்டுவா எனக்கு சமாதானம் உத்தம். சத்தியம் தத்ர சாதனேஷ்வபி கச்சன பேதா பவதி கலு, அந்தரங்க சாதனம் பகிரங்க சாதனம் இது பவதி, அத்த பிராதானியன உபாசனாதிக ரூபம் சாதனம் அத்த விசாரியதே साधनाध्याये। अपि च धर्मः किं भवति, केवलं मोक्षार्थमेव धर्मः विहितः इति नास्ति। जैमिनीयशास्त्रे ये धर्माः विचार्यन्ते ते संसारे अन्तर्गतानां फलानां साधनायापि सिद्ध्यर्थमपि धर्माः निरूपिताः,
1: स्वर्गप्राप्त्यर्थम्
0: एवं स्वर्गादिप्राप्त्यर्थमपि सर्वं मोक्षार्थिना एव कर्तव्याः ते इति न, ते मोक्षार्थिनापि कर्तुं शक्यन्ते ईश्वरार्पणबुद्ध्या। ईश्वरार्पणबुद्ध्या क्रियन्ते चेत् मोक्षसाधनानि भवन्ति, नो चेत् अन्यादि ऐहिक आमुष्मिक स्वर्गादिफलसाधनान्यपि भवन्ति इति, अतः कश्चित् विशेषः वर्तते। अपि च सः तत्र कर्मकाण्डोक्तानां वाक्यानां विचारस्तु भूयान् कर्तव्यः वर्तते, स्वल्पः न, महान् विचारः, द्वादश अध्यायेन कर्तव्यः विचारः सः वर्तते, एतदपेक्षया विस्तृतो विचारः सः इति कृत्वा सः पृथक् तत्र स्थापितः इति सर्वं साधनाध्याये निवेशनीयम् इति नास्ति इति पृथक् एव सः स्थापितः।
2: ॐ नमः शिवाय। यु आर् लिसनिङ्ग् टु शैवम् .org रेडियो, दि 24/7 स्पिरिचुवल् चानल् फ्रम् शैवम् .org।

0: ஓம் நம சிவாய். டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர் ரேடியோ, தி சைஸ் ஆஃப் அவர் ஆடியோ கலெக்ஷன் கண்டினியூஸ் டு க்ரோ டே பை டே. வி நவ் ஹோஸ்ட் மோர் தேன் 25,000 ஆடியோ ரெக்கார்டிங்ஸ். இன் ஆர்டர் டு மேக் தீஸ் எக்ஸ்டென்சிவ் ரிசோர்ஸஸ் மோர் ஆக்சசபிள் அண்ட் பெனிஃபிஷியல் டு அவர் ரேடியோ லிசனர்ஸ், வி ஹவ் ரீஆர்கனைஸ்ட் அவர் ப்ரோக்ராம் ஷெட்யூல். திருமுறை மியூசிக் அண்ட் திருமுறை டிஸ்கோர்சஸ் வில் பி ப்ராட்காஸ்ட் ஆன் திருநெறிய தமிழோசை. Philosophical discourses and periyapuranam lectures in Tamil will be broadcast on Shiva Tattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaiva Lahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. ஓம் நம சிவாய்.
1: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் ஷைவம் டாட் ஆர், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம், பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ ஆத்மானந்த் கிரிஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
2: यही भाव से सन्यासियों को अग्नि संस्कार नहीं करते देह छूटने के बाद, ये मान्यता है. हालांकि वो ज्ञान अग्नि से जला रहे हैं कि नहीं जला रहे हैं, उनको ज्ञान हो चुका है कि नहीं हुआ है, ये अपनी जगह पर है. लेकिन सन्यासी को अग्नि संस्कार न करने का यही विधि है, उसके पीछे यही रहस्य है कि वह ज्ञानाग्नि से अपने देह को दग्ध कर चुका हुआ है. वर्तमान शरीर तो वह जली हुई रस्सी की तरह है. रस्सी का बट होता है और जलता है. जलने के बाद वो जली हुई राख जो रस्सी का है, देखने में वो बट ऐसा यथावत दिखता है, लेकिन वह प्रयोजन के लिए नहीं होता. आकार प्रकार वैसा ही होता है राख के बट, रस्सी के बट, लेकिन वो कोई प्रयोजन का नहीं होता. इसलिए सन्यासी का जीवन किसी प्रयोजन का नहीं होता, वो जले हुए राख के निशान की तरह होता है. तब मां ने जब आज्ञा दे दी तो छोड़ दिया मगरमच्छ ने और वापस आए. आने के बाद कहा कि मां, तुमने आज्ञा दी है और उसी आज्ञा से ही मैं बच पाया हूं. अब तो प्रतिज्ञा पूरा करना पड़ेगा कि नहीं. यदि मगरमच्छ खा लेता तो कोई बात नहीं था, अब खाया नहीं, उसने छोड़ दिया वो मगरमच्छ ने, बच गया. अब क्या करोगे? संन्यास तो लेना ही पड़ेगा मां, अब क्या करोगे? अब तो जाता हूं मैं संन्यास लेने. फिर रोने लग गई. ले जी, फिर रोने लग गई. तब फिर समझाए, कतिनाम सुता न लालिता, कतिनाम वधु रभुंजी, कुनता कुचता कुवा वयम, खलु पांत संगमयी देही नाम. मां तुम विचार तो करो, या तुम्हारा मेरा संबंध यही है, यही है पहला है. कतिनाम वधु रभुंजी, कतिनाम सुता न लालिता, इससे पहले पहले के जन्मों के बारे में जरा विचार करो तो सही. इस समय जिस तरह तुमने मुझे पैदा किया और मुझे पुत्र के रूप में लालन पालन की, इससे पहले भी तू मां बनी है. कितने बार तू मां बनी है, कितने बच्चों को जन्माया और कितने बच्चों को लालन पोषण किया है, लेकिन उन पहले के बच्चों ने तुमको दिया क्या? उन बच्चों से तुम्हें मिला क्या? पहले जन्मों के बच्चों से आपको क्या मिला है, बोलो? कोई कह सकता है कि मुझे ये मिला है? उस पहले जन्म के बच्चों के द्वारा दिया गया ये घर है, ये कहो है? कोई कह सकता है कि ये घर मेरे बाप का दिया हुआ? ये तो कह सकता है. लेकिन पहले जन्म का मेरे बच्चे ने, मेरे बेटे ने दिया है, ये तुम कह पाओगे है? पहले जन्म की पत्नी का है ये, पत्नी की कृपा से ये प्राप्त हुआ है, कह पाओगे? क्या दिया उस पत्नी ने पहले जन्म की, पहले पहले पहले के जन्मों की पत्नियों ने क्या दिया? उन पत्नियों के द्वारा पैदा हुए हुए बेटा और बेटियों ने क्या दिया? पहले पहले के जन्मों के मां बाप ने क्या दिया? पहले पहले जन्मों के भाई बंधुओं ने क्या दिया? ध्यान रखना, अभी जो कुछ तुम्हारे पास है वह पहले पहले जन्मों के तुम्हारा ही है और किसी का नहीं है. तुमने शुभ किया है तो वह तुम्हारे साथ आया है, तुमने अशुभ किया है तो वही तुम्हारे साथ में आया है, और तुम्हारे बेटे ने अशुभ किया है तुम्हारे पास नहीं आएगा, तुम्हारे बेटे ने शुभ किया है तुम्हारे पास नहीं आएगा, तुम्हारे बाप ने शुभ किया है तो भी तुम्हारे पास नहीं आएगा, तुम्हारी मां ने कोई शुभ कर्म किया है तो भी तुम्हारे पास नहीं आएगा, उसी के साथ जाएगा। जिसने जो किया है वह उसी के साथ रहता है, किसी को कुछ नहीं मिलता है। कतिनाम सुता नलालिका, कतिनाम बधू रभुंजी ही, कितने बहुओं को तुमने भोगा है पहले पहले के जन्मों में, और अब तुम ये आशा कर रही हो कि मेरा बेटा शादी करेगा और बहू आएगी घर चलाएगी पांव दबाएगी। पहले के बहू ने किया तुम्हें क्या उपलब्धि हुई पहले के बहू के द्वारा तुम्हें इस जन्म में? अभी तक क्या मिला तुमको? कुछ मिला? कतिनाम सुता न लालिता, कतिनाम बधू रभुंजी ही, कहां गई थी वो सब बहुएं, कहां गए वो सब बेटे है, कहां गए वो सब मां, कहां गए वो सब पिता। मां ये सब माता पिता बेटा बहू नाती पोती ये सब तो माया भ्रामित है। आठवें श्लोक का यही सार है, माया भ्रामित, ये सपुरुषो माया परिभ्रामित, ये तो माया के द्वारा किया गया खेल है। शंकराचार्य जी कहते हैं ये सारे संबंध खलु पांथ देही नाम संबंध। तो पहले के जमाने में पनघट हुआ करता था, पहले के जमाने में पनघट होता था, गांव के बीच में एक कुआं होता था, या कहीं गांव के बीच में नजदीक में एक नदी हुआ करती थी, या पहाड़ों में कई गांव के पास में झरना हुआ करता था। आजकल की तरह किचन किचन में टॉयलेट टॉयलेट में कनेक्शन नहीं हुआ करता था, तो अभी भी गांव में ऐसा ही है, घड़ा लो और जाओ पानी लेने के लिए सार्वजनिक स्थलों में, तो सब पानी लेने के लिए सुबह के समय देखो तो सब घाट में भीड़ लग जाता है, सारे गांव के लोग वहीं आ जाते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं, कैम छो कैसे हो, सारी संबंध सब कुछ हो जाता है। और कब तक ये सारी चर्चाएं कब तक होती है? जब तक अपना घड़ा नहीं भरता है, जब तक अपने नंबर आकर घड़ा नहीं भरता है तब तक सारे कुशल क्षेम पूछना, राजी खुशी पूछना, हाल चाल पूछना, सारे संबंधों को स्थापित करना, चर्चा परिचर्चा करना, कब तक? जब तक अपना घड़ा नहीं भरता है। जब उसका पानी का घड़ा भर जाता है, फट से घड़ा उठा लेती है और जाने की तैयारी करती है, दूसरी कहती है अरे सखी अरे रुक ना, मेरा भी पानी का घड़ा भर जाएगा तो हम भी साथ ही चलेंगे। बोले तुम आना मेरे को जल्दी है, है? पता नहीं तुम्हारा नंबर कब आएगा, कब भरेगा घड़ा, हम तो जाएंगे। अरे वो तो भैंस धोना है, वो तो गाय धोना है, बच्चे को तैयार करके स्कूल भेजना है, यूं करना है त्यों करना है, रसोई करनी है, है? मोड़ो थी गयो छे जो जी, विलंब हो रहा है। अरे जब तक तुम्हारा घड़ा नहीं भरा था तब तक विलंब नहीं हुआ था, और घड़ा भर गया अब तुम विलंब होने लग गया। ये तो खलु संग पांथ ही दे ही ना, ये तो पनघट के संबंध हैं सब। ये विचार करो, प्रारब्ध जिसका खत्म हो जाता है जाता है तो हाई हाई कराते हुए जाता है, पहले बाई बाई कर दो, सबसे पहले तो आनंद में रहोगे। कस्य बन्धश्च को मोक्ष, मोक्षश्च बध्यते केन हेतुना, मायया लक्षणम किम स्यात् इत्येवं परिपृच्छतः। इस तरह ये तीन प्रश्न यहां उपस्थित हो गए हैं। पहला प्रश्न यह है कि ब्रह्म यदि एक है, उस परमात्मा के एक सत्ता के अलावा दूसरा कोई सत्ता नहीं है, तो फिर बंधन से मोक्ष पर्यंत का ये शास्त्र उपदेश किसके लिए और कौन करेगा, ये कैसे संभव होगा? और इस शास्त्र का उपदेश बंधन में पड़े हुए हैं तो फिर कौन बंधन में पड़ रहा है? ब्रह्म बंधन में पड़ रहा है कि ब्रह्म से भिन्न जीव बंधन में पड़ रहा है? और जीव बंधन में पड़ता है यदि कहते हो तो फिर ये क्यों कहते हो कि ब्रह्म सत्ता के अलावा कोई दूसरे वस्तु है ही नहीं, ये फिर क्यों कह रहे हो? तो बोले कि माया के खेल है, एक ही ब्रह्म को अनेक दिखाकर बंधन में डालने और मोक्ष प्रदान करने वाली यही माया है तुम कहते हो। तो ये माया क्या बला है, वो कैसे एक को अनेक बनाकर कैसे वो बंधन में डालती है और कैसे वो मुक्त कर देती है? एक अनेक कैसे होता है? माया लक्षणम किम स्यात्? फिर तो तुम्हें यह भी बताना होगा कि उस माया का क्या लक्षण है। इत्येवं परिपृच्छत प्रश्नस्य उत्तरं वक्तुं प्रतिपत्तुं सुखेन च उक्त्वार्थ सप्तभिः श्लोकैः पुनः संक्षिप्य कथ्यते। हालांकि सारे प्रश्नों का उत्तर जो शिष्य यहां जिज्ञासु यहां आकर पूछ रहा है तीन प्रश्नों के रूप में, हालांकि इन सारे तीनों प्रश्नों का उत्तर इससे पहले के सात सात श्लोकों की व्याख्या के अंतर्गत हो चुका है, ये नया प्रश्न का नया उत्तर देने की जरूरत नहीं है। फिर भी शिष्य ने यहां आकर पूछ लिया तो फिर भी उत्तर देना बहुत जरूरी है, तब तो फिर पुनरुक्ति माना जाएगा। पहले जो बात कही गई है उसी को फिर दोबारे कही जाती है, व्यक्ति सुनने वाला भी वही, बोलने वाला भी वही, पहले जो बात कही गई उसी बात को फिर दूसरी बार कह दो, फिर तीसरी बार कह दो, फिर चौथी बार कह दो, तो पुनरुक्ति दोष माना जाता है। तो उसके लिए निषेध करते हैं शंकराचार्य जी, पौनरुक्तेन दोषवत्र शब्देनार्थेन वा भवेत् अभ्यासेन गरीयस्त्वम् अर्थस्य प्रतिपाद्यते। विचार के प्रकरण में प्रसंग में पुनरुक्ति दोष माना नहीं जाता है। पुनरुक्ति दो प्रकार से होता है, एक शब्द पुनरुक्ति, दूसरा अर्थ पुनरुक्ति। साहित्य शास्त्रों में अन्यत्र काव्य शास्त्रों में शब्द पुनरुक्ति और अर्थ पुनरुक्ति होता है तो बहुत बड़ा दोष माना जाता है, वह साहित्यिक समाज में और काव्य समाज में वह प्रतिष्ठा का विषय नहीं होता है। न शब्द पुनरुक्ति होनी चाहिए न अर्थ पुनरुक्ति होनी चाहिए, लेकिन वेदांत दर्शन एक सा दर्शन है, ऐसी विधा है, यहां शब्द पुनरुक्ति हो तो भी दोष नहीं माना जाता, अर्थ पुनरुक्ति हो तो भी दोष नहीं माना जाता, क्योंकि वेदांत में अभ्यास का महत्व है, अन्यत्र अभ्यास का महत्व नहीं है। वेदांत में अभ्यास का मतलब है, अन्यत्र अभ्यास से फलीभूत नहीं होता है, यहां अभ्यास से फलीभूत होता है। इसीलिए वेदांत दर्शन में पुनरुक्ति को ही अभ्यास माना, अभ्यास को ही पुनरुक्ति माना, इसीलिए उद्दालक आरुणि ने एक ही वाक्य को शब्द को नौ बार कहा, एक ही अर्थ को बताने वाले नौ बार शब्द को प्रयोग कर दिया है, तत्त्वम असि, अर्थतः पुनरुक्ति और शब्दतः भी पुनरुक्ति, तत्त्वम असि, पहली बार कहे हुए जो वाक्य है उसका जो अर्थ है उसी अर्थ को भी नौ नौ बार कह रहे हैं तत्त्वमसि, पहली बार शब्द प्रयोग किया गया जो शब्द है उसी को नौ बार तक कह दिया कि तत्त्वमसि, तो शब्दतः भी पुनरुक्ति हुआ है, अर्थतः भी पुनरुक्ति होने पर भी उसको दोष नहीं माना गया, और नौ बार जब नौवें बार तत्त्वमसि का उपदेश किया, बार बार नौवीं बार तब उसको अपरोक्ष हुआ। इसलिए अर्थोपलब्धि, अर्थ का ग्रहण, दृढ़ अपरोक्ष होना ये प्राथमिकता है वेदांत दर्शन में, इसलिए पुनरुक्ति दोष नहीं माना जाता। उस बात को शिष्य ने जो पूछा था उसी बात को स्पष्ट करने के लिए आठवां श्लोक है,

ఏదత స్వప్నే జాగ్రతి వాయయే స పురుషో మాయా పరిభ్రామితః తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే. మాయా పరిభ్రామితః, మాయా కి ద్వారా భ్రమిత్ కియా హువా హువా వహ పురుష్, माया के द्वारा भ्रमित किया हुआ हुआ जो पुरुष है वह इस जगत को कार्य कारण के दृष्टि से देखता है. जगत में कार्य कारण का जो भाव है वह प्रबुद्ध विषय व्यक्ति का नहीं है, अप्रबुद्ध विषय व्यक्ति की दृष्टि में है ये. हाँ, ज्ञानी की दृष्टि में कार्य कारण भाव नहीं है, क्योंकि एक में कार्य और कारण भाव संभव नहीं है. परमार्थ में कार्य कारण भाव नहीं है. घट किससे बना? घट देखने वाला उसके कारण को खोजता है. घट किसने बना, किससे बना? बोले मिट्टी से बना. मिट्टी उपादान कारण है कि निमित्त कारण है? बोले मिट्टी उपादान कारण है. मिट्टी यदि उपादान कारण है घड़े का, तो फिर उसको बनाने वाला निमित्त कारण कौन है? बोले कुम्हार है, क्योंकि जो घड़ा देख रहा है उसके दृष्टि में उसके कारण के बारे में जिज्ञासा, कारण में उपादान कारण की जिज्ञासा, कारण में फिर निमित्त कारण की जिज्ञासा. इसी तरह जगत किससे बना है? जगत देखने वाले के लिए ये प्रश्न है. जगत सत्य रूप में देखता है ना, जो उसके मन में ये प्रश्न है, ये जगत किससे बना है? तो बोले कि माया से बना है. माया उपादान कारण है कि निमित्त कारण है? फिर पूछता है वो. तो माया उपादान कारण है. माया उपादान कारण है तो फिर निमित्त कारण कौन है? पूछता है. फिर कहना पड़ता है ईश्वर निमित्त कारण है. ईश्वर निमित्त कारण से, कारण ने माया उपादान कारण से जगत रूपी कार्य बनाया. किसके लिए बनाया? संघात परार्थत्वात्. जो बनता है वह, जो बनता है वह अपने लिए नहीं बनता है, जो बनता है दूसरे के लिए बनता है. जो बनाया जाता है वह, जो बनने वाला है उसके लिए. माला माला के लिए नहीं बना है. माला बनाया गया है कि नहीं बोलो, है कि माला बनाया गया है तो किसके लिए बनाया है? माला माला के लिए ही बनाया है कि आत्मानंद के लिए बनाया है? माला पहनने वाला इस माला से भिन्न होगा कि नहीं? माला बनाने वाला भिन्न है. माला जिस उपादान से बना है वह फूल भिन्न है, है? फूल अलग है, बनाने वाला माला बनाने वाला अलग है, सूत्र अलग है, सहकारी कारण आदि हैं. और ये बना हुआ माला माला के लिए नहीं, किसी और के लिए है. ये सिद्धांत सर्वमान्य है. संघात परार्थत्वात्. कोई भी कार्य है वह कार्य के लिए नहीं, भोक्ता कोई है तभी भोग्य वस्तु का निर्माण होता है. जगत भोग्य है कि भोक्ता है? ये विचार करना पड़ेगा, तब ये बताना पड़ेगा कि जगत भोग्य है, जगत भोक्ता नहीं है. जगत भोग्य है तो कौन भोगेगा इस जगत को? बनाने वाला ईश्वर खुद इस जगत को भोगेगा. अपने भोग के लिए बना रहा है कि कोई और भोक्ता के लिए बना रहा है? तब उत्तर जितने देने वाला यही देंगे कि ये तो जीवों के लिए बनाया ईश्वर ने. तो बोले वो क्या करेगा, नहीं भोगेगा? बोले आप्त कामस्तु का प्रिया. वो तो आत्मकाम है, आप्त काम है, इसलिए भोगने के लिए वो जगत क्या बनाएगा? आत्माराम है, आप्त काम है, आत्माराम है, फिर वो क्या जगत के भोग के लिए, भोग कर फिर आनंद के अनुभव करने के लिए बना रहा है वो जगत? किसके लिए बना है? तो बोले जो सकामी है, आप्तकामी नहीं है, आत्माराम नहीं है. यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव, आत्मन्नेव च संतुष्ट, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तस्य कार्यम न विद्यते. ये उसके लिए न कोई कार्य की आवश्यकता है, न कोई फल की आवश्यकता है, क्योंकि वो आत्मतृप्त है. किसके लिए बनाए? बोले जीव के लिए. जीव जगत से बाहर है कि जगत के अंदर है? जगत किसके लिए बनाया, किसको भोगने के लिए बनाया जगत?
जीव के लिए। जीव जगत के बाहर है कि जगत के अंदर है? जगत के अंतःपाती, जगत से भिन्न जीव नहीं है। तो किसको बना रहा है? बोले जीव भी ईश्वर ने बनाया, भोक्ता भी ईश्वर ने बनाया और भोग्य भी उसी ने बनाया। देख लो, भोक्ता भोग्य दोनों ही उसी ने बनाया। भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा उपनिषद में आया है, परमात्मा को इस तरह कहा। तो विश्वम पश्यति कार्य कारणतया, और कपास से धागा बना, धागा से कपड़ा बना, कपड़ा हम पहन रहे हैं, हम भोग रहे हैं। देख लो, मिट्टी से घड़ा बना, घड़े इसमें पानी भरा, पानी ठंडा हम पी रहे हैं। सब कुछ किसी न किसी के द्वारा भोग्य बने हुए। स्वस्वामी संबंधतः, जगत में सारा व्यवहार का यही पक्ष है। कोई किसी का मालिक बना है तो कोई किसी का नौकर बना है। स्वस्वामी संबंधतः, यहां नौकर है तो वहां मालिक है, वहां मालिक है तो यहां नौकर है। ये संबंध मालिक और नौकर का, सेव्य और सेवक का संबंध, ये सब विश्व के अंतःपाती है, अंतर्गत ही है। इस विश्व के अंतर्गत कोई न मालिक है न सेवक है। विश्वम पश्यति कार्य कारणतया स्वस्वामी संबंधतः, शिष्याचार्यतया। और को जो भोगी हैं, संसारी हैं, वे लोग कार्य कारण का विचार करते हैं और स्वामी सेवक का विचार करते हैं, मालिक और नौकर के विचार करते हैं। और कुछ लोग जिज्ञासु हैं, वो फिर गुरु और शिष्य के बारे में विचार करते हैं। गुरु शिष्य, शिष्याचार्यतया, जगत में ये सब भेद है कि नहीं? कार्य कारण का भेद, भोक्ता भोग्य का भेद और स्वामी सेवक का भेद, शिष्य और गुरु का भेद, पिता और पुत्र का भेद, पति पत्नी का भेद, बाप बेटे का भेद, मां बेटे का भेद, मां बाप का भेद, सारे के सारे भेद किससे सिद्ध हुआ, कैसे सिद्ध हुआ? एक ही में ये सारा भेद भिन्न भिन्नता कैसे संभव है? यदि ब्रह्म एक ही है तो फिर गुरु चेला कौन बनेगा? ब्रह्म एक ही है तो कार्य कारण कैसे बनेगा? ब्रह्म एक ही है तो स्वामी सेवक कैसे बनेगा? ब्रह्म एक ही है तो उपास्य उपासक कैसे बनेगा? ब्रह्म एक ही है तो जन्य जनक भाव कैसे होगा? पिता और पुत्र का संबंध कैसे बनेगा? सारा जगत में जो कुछ संबंध है इन्हीं चार संबंध के अंतर्गत आते हैं। कार्य कारण भाव संबंध, स्वामी सेवक भाव संबंध, शिष्य और आचार्य भाव संबंध, पिता पुत्र भाव संबंध, इन्हीं के अंतर्गत पति पत्नी भाव संबंध, मां बेटे भाव संबंध, जन्य जनक भाव संबंध। क्योंकि कार्य कारण भाव के अंतर्गत जन्य जनक भाव आ गया, मां बेटे सभी उसी में आ गए, बाप बेटा सब उसी में आ गए।

वेदत स्वप्ने जाग्रति वा यये स पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणा मूर्तये। एक ही पुरुषः, या पुरुष शब्द से परमात्मा को ही लिया गया, अद्वितीय सजातीय विजातीय सुखद भेद त्रय रहित अद्वितीय जो परमात्मा है, वही एक परमात्मा ही माया के माध्यम से वह अकेले बाप बेटा भी बन गया, मां बेटा भी बन गया और पति पत्नी भी बन गया, गुरु शिष्य भी वही हो गया, कार्य कारण भी वही हो गया है, सो स्वामी सेवक भी वही हुआ है। ये कैसे होगा, एक ही वस्तु में ये संबंध कैसे होगा? चलो होता है, कारक संबंध होता है एक ही में। आप लोगों ने कई बार नवग्रह के मंदिर देखे हो और नवग्रहों के मूर्ति देखी हो, तो उन नवग्रहों के मूर्तियों के बीच में दो मूर्ति ऐसे होते हैं, एक मूर्ति होता है केवल सिर, सिर ही वो पूरी मूर्ति है, किसका होता है वो सिर, राहु का, और दूसरा मूर्ति होता है धड़, धड़ किसका है, केतु का। तो दो मूर्ति रखा जाता है, राहु और केतु, सूर्य और चंद्रमा के बीच में राहु और केतु का दो मूर्ति रखा जाता है। अब पूछने वाला व्यक्ति, क्योंकि हमको अध्यास ये है कि शरीर और धड़ एक ही साथ होता है तभी मूर्ति बनता है ना, वहां मूर्ति बनाकर रखा है सिर अलग राहु का, धड़ अलग केतु का, तो पूछने वाला पूछता कि ये धड़ किसका है, क्योंकि सिर तो है ही नहीं, खाली धड़ है। पूछने वाला पूछता कि ये धड़ किसका है, तो बताने वाले बताते हैं केतु का है। अरे बाबा, धड़ ही केतु है, केतु का नहीं है, कारक संबंध वहां नहीं है, जो धड़ है वही केतु है, जो केतु है वही धड़ है। इसी प्रकार से वह सिर को देख करके कहता है ये किसका सिर है, तो कहने वाला कह देता है ये राहु का सिर है। अरे बाबा, राहु अलग और सिर अलग नहीं है, एक ही है, एक ही में भी एक कारक संबंध हुआ कि नहीं, सृष्टि कारक लग गया कि नहीं, राहु का सिर। राहु कहां है फिर ना? राहु का ये सिर है तो राहु कहां है, वही तो राहु है। केतु का ये धड़ है तो केतु कहां है, तो वही तो ये है। इसलिए एक ही होते हुए भी कार्य कारण संबंध, कारक संबंध ऐसा व्यवहार में होता है। राहो सिर सुशिखस्य, ये छिद्र किसका है, आकाश का है, आकाश का छिद्र। अरे छिद्र का नाम ही आकाश है, आकाश का नाम ही छिद्र है, है? छिद्र और आकाश दो चीज नहीं है, लेकिन कह देते हैं कि आकाश में छिद्र हो गया, आकाश में कई छिद्र होता है, फिर भी आकाश में छिद्र भेद हो रहा है कि नहीं, कार्य कारण भाव, आकाश कारण है और छिद्र कार्य है, देखो, जबकि एक ही में दो भेद हो रहा है। मम आत्मा व्यवहार में कहते हैं कि नहीं, मेरी आत्मा है, अरे जो मैं हूं वही आत्मा है, जो आत्मा वही मैं हूं, तो मेरी आत्मा, मेरी गाड़ी की तरह प्रयोग क्या कर रहा है वो, मेरी आत्मा है, जैसे मेरी गाड़ी मेरा घर शब्द तो प्रयोग कर रहा है कि नहीं, इसी तरह क्या कहता है, मम आत्मा, मेरी आत्मा, ले जी, जो आत्मा है वही मैं, जो मैं हूं वही आत्मा, एक ही में ये संबंध होता है कि नहीं, कारक संबंध होता है कि नहीं। इसी तरह प्रतिमा वपु, जो प्रतिमा है वही शरीर है, किसका शरीर है, प्रतिमा का शरीर है, अरे प्रतिमा और शरीर तो एक ही है। इत्यादि कल्पना तुल्या न पृथक वस्तु गोचरा, ये सारी कल्पना एक ही वस्तु में, अपृथक एक ही वस्तु में पृथक पृथकता की कल्पना करके ये शब्द प्रयोग किया जाता है, राहो सिरा प्रतिमा वपु मेरी आत्मा, ये देख लो। इसी तरह एक ही ब्रह्म माया के द्वारा ये सारे के सारे कार्य कारण भाव, स्वामी सेवक भाव, शिष्य आचार्य भाव और पिता पुत्र भाव, जैसे ये कई व्यक्ति बाप के दृष्टि से वह बेटा है, बेटे के दृष्टि से वह बाप है, वो व्यक्ति बाप है और कि बेटा है,
बाप अलग और बेटा अलग है क्या? एक ही व्यक्ति में दो धर्म विरुद्ध धर्म कैसे आ गया, प्रश्न कर सकता है ना कोई? एक ही व्यक्ति में वस्तु में कार्य और कारण ये दोनों एक कैसे आ गया? विरोध, कार्य अलग है कारण अलग है। एक ही वस्तु में कार्य कारण भाव कैसे संबंध होगा? बोले देख लो, एक व्यक्ति खड़ा है, वह बाप का कार्य है, बेटे का कारण है, कार्य कारण भाव एक ही व्यक्ति में है कि नहीं बोलो? है हरीश भाई, आपका बेटा है कि नहीं? आपका बेटा है, वो बाप है कि बेटा है? उसके बेटे आपका पोते का बाप नहीं है? वो बाप भी वही है, बेटा भी वही है, कार्य कारण भाव। आपके पिता के सामने आप बेटे हुए थे तो आपके बेटे के सामने आप बाप, बाप बेटे अधो है। देव जी, हरि भाई का बेटा कौन है? मैं हूं, बोलना पड़ेगा कि नहीं? और बेटे का नाम क्या है? अमीश का बाप कौन है? बोले मैं हूं। पर मैं, तुम कार्य भी हो और कारण भी हो, यही तो माया परिभ्रामित। माया की ऐसी विशेषता खूबी है कि वह कुछ को कुछ भी बना सकती है, कर्तुम अकर्तुम, अन्यथा कर्तुम समर्था है। माया भी अघटित घटना पति, ऐसी माया। स्वप्ने जागृति, जैसे स्वप्न में एक ही व्यक्ति सब कुछ होता है कि नहीं? तेजस पुरुष, बाप भी होता है, बेटा भी होता है, भोक्ता भी होता है, भोग्य भी होता है, कार्य भी होता है, कारण भी होता है, गुरु भी होता है, शिष्य भी होता है, सेवक भी होता है, स्वामी भी होता है, सब कुछ होता है कि नहीं बोलो? हैं? तेजस पुरुष अकेला है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है वहां, फिर भी सब होकर दिखाता है। स्वप्न के द्वारा सब हो सकता है, तो स्वप्न की भी मां जो माया है, सबकी मां, वो क्या नहीं कर सकेगी उस बात को? यहां स्वप्ने जागृति वा ये सब पुरुषो माया परिभ्रामिता, ये सारे के सारे भ्रांति, जब उस माया का निवारण होगा तभी जाकर ये सारे भेद खत्म हो जाएंगे। तो निवारण कौन करेगा? तो गुरुमूर्ति, दक्षिणामूर्ति, ज्ञान स्वरूप ज्ञानदाता गुरु दक्षिणामूर्ति भगवान शिव की कृपा होगी, तब ये सारा भेद समाप्त हो जाएगा। और क्या कह रहे हैं, बाकी दो श्लोक हैं और हम उसी हिसाब से चल रहे हैं, कल और परसों इस श्लोक को पूरा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।

0: ശിവായ. You're listening to Shaivam.org Radios. 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Thirunilakanta Yazhpana Nayanar Puranam. Presented by Sri Singapore Shankara Narayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. भक्तों, अभी हम जिस महान संत या शिव भक्त की कहानी सुनेंगे, उनका नाम तिरुनीलकंठ याल्पानर है। भक्ति का मार्ग वर्ण, कुल, जाति आदि के बंधन स्वीकार नहीं करता। तिरुज्ञान संबंधर के युग में चोल भूमि में तिरुएरुकत्तम पुलियर के एक हरिजन कुल में तिरुनीलकंठ याल्पानर का जन्म हुआ। वे अपने हाथ में वीणा सदृश एक वाद्य यंत्र याल लेकर मंदिर के दर्शन करने जाते थे। वे मंदिर के बाहर खड़े हो जाते और याल बजाकर भगवान की स्तुति करते थे। एक बार वे मदुरई के चौकनाथ मंदिर के सामने याल बजा रहे थे कि भगवत प्रेरणा से ब्राह्मण बाहर आकर उन्हें सादर अंदर ले गए ताकि वे प्रभु के समक्ष याल बजा सकें। भगवान भी भक्त को पूर्ण सम्मान देना चाहते थे। मंदिर के भीतर से स्वर गूंजा, आदेश हुआ कि धरती गीली है, नमी वाले स्थान पर रखने से याल की लय तान में बाधा आएगी, अतः उसके लिए एक चौकी मंगवाई जाए। विशेष चौकी की व्यवस्था हो गई। भगवान के समक्ष दंडवत प्रणाम करने के बाद वह देर तक याल बजाते रहे। यहाँ विशेष चौकी थी। यहाँ से वे तिरुवारूर पहुंचे। तिरुवारूर में ईश्वर दर्शन करने के बाद विविध तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हुए वे तिरुज्ञान संबंधर के स्थल शिवकाली पहुंचे, जहाँ तिरुज्ञान संबंधर ने अपने ज्ञान चक्षुओं से उन्हें देखते ही पहचान लिया कि भगवान का पूर्ण अनुग्रह इन पर है। उन्हें समक्ष पाते ही तिरुज्ञान संबंधर कह उठे, हे रे, हे द्विज श्रेष्ठ। उन्हें सादर अपने निकट बिठाया और उस समय से जहां जहां तिरुज्ञान संबंधर गए, याल्पानर उनके गीतों को याल पर स्वर देते रहते थे। उनकी पत्नी मदंग चूड़ामणि सदा उनके साथ रहती थी। उल्लेख्य है कि तिरुज्ञान संबंधर की भक्त मंडली में मात्र वे ही एक स्त्री थी। याल बजाने वाला गायक के साथ बैठता है 8-10 फुट की दूरी पर नहीं। ऋग्वेदी और नित्य यागनी भोत्री ब्राह्मण तिरुज्ञान संबंधर ने तिरुनीलकंठ याल्पानर और उनकी पत्नी को सदा अपने साथ एक निकट स्थान पर बिठाया था। जिन जिन मंदिरों में वे गए, पति पत्नी दोनों साथ ही रहते थे। यहाँ नंदनार की कथा का संकेत आवश्यक है। नंदनार को मंदिर प्रवेश में झिझक थी। उनकी हीन भावना भक्ति के चरम शिखर तक पहुंचने में बाधक बन रही थी, पर अस्पृश्य जाति के याल्पानर को कोई बाधा नहीं आई। याल्पानर को तिरुज्ञान संबंधर ने अपार सम्मान दिया था। जाति भेद की बात अस्वीकार किए जाने का एक और प्रसंग इन्हीं के जीवन से संबंधित है। जब संबंधर तीर्थ यात्राओं के दौरान तिरुचित्तमंगई नामक स्थल में पहुंचे, तो तिरुनीलनक्कर नामक ब्राह्मण भक्त ने के घर अपने साथियों सहित आमंत्रित थे। भक्तिपूर्ण गीतों के गायन और संगीत के स्वरों में डूबने के बाद सादर भोजन सत्कार आदि हुआ। भक्त नीलनक्कर ने उन्हें रात्रि के लिए वहीं ठहर जाने का आग्रह दिया। तिरुज्ञान संबंधर ने नीलकंठ याल्पानर के लिए रात्रि विश्राम की व्यवस्था करने को कहा। नीलनक्कर ने यज्ञ की अग्नि द्वारा पवित्र की गई घर के मध्य स्थान में याल्पानर और उनकी पत्नी के रहने की व्यवस्था की। इस कथा से स्पष्ट है कि शिव भक्त के मार्ग में जाति का भेद विलुप्त हो गया था।

0: उत्पादन से बढ़ जाती है। इन अहंकार पूर्ण वचनों की सूचना प्राप्त कर भक्त हृदय व्याकुल हो उठा और उन्होंने स्वयं तिरुज्ञान संबंधक से प्रार्थना की कि वे ऐसा पद गाएं जिस पर किसी भांति याल पर संकट दे पाना संभव न हो। तिरुज्ञान संबंधक ने ऐसा ही पद गाया। याल पर संगत दे पाने में याल पानक असफल रहे। यद्यपि अपनी ही प्रार्थना पर यह घटना हो रही थी, फिर भी अपमान और निराशा के आवेश में वे याल को शिला पर पटक कर नष्ट करने लगे। तिरुज्ञान संबंधक ने उन्हें समझा बुझा कर शांत किया। इसके बाद भी सदा याल पानक तिरुज्ञान संबंधक के साथ रहे, उनके गीतों की संगीत प्रदान करते रहे। उनका शिवलोक गमन उसी ज्योति के साथ हुआ जो तिरुज्ञान संबंधक के विवाह के अवसर पर अलौकिक रूप से प्रकट हुई थी और वे शिव कैलाश पहुंच गए। इसीलिए उन्हें उच्च कोटि का स्थान प्राप्त है और प्रिय पुराण में उनका उल्लेख है। ओम नमः शिवाय।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Na dharma chakshu ki charcha ki. Bhagwan ne ज्ञान चक्षु की चर्चा की 15वें अध्याय में, लेकिन पूरी गीता में धर्म चक्षु की भी चर्चा है। वो चर्म चक्षु की कई चर्चा नहीं है। लेव जी, गीता में चर्म चक्षु की कई चर्चा नहीं। गीता ने ये नहीं कहा कि चर्म चक्षु ठीक रखना चाहिए अर्जुन, ये नहीं कहा है। तेरे चर्म चक्षु से ही सारा गड़बड़ हो रहा है। अर्जुन ने यदि युद्ध के बीच में रथ में बैठकर चर्म चक्षु से युद्ध तैयारी के व्यक्तियों को न देखा होता तो शोक अंदर घुसता है? बोलो, अर्जुन की हृदय में शोक कब घुसा? जब चर्म चक्षु से देखा, ये तो मेरे बंधु हैं, मेरे सखा हैं, मेरे पिता हैं, मेरे गुरु हैं, सब मेरे बंधु बांधव चारों तरफ, ऐसा युद्ध करना बेकार है। तो सारा गड़बड़ किसने किया? चर्म चक्षु ने। और भगवान ने कहा क्या? ये चर्म चक्षु पर भरोसा न कर अर्जुन, तो धर्म चक्षु से देख धर्म क्या कहता है। धर्म क्या कहता है? स्वय स्वय कर्मण्यभिरत संसिद्धि लभते नर। देख लो क्या कह रहा है धर्म। स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। क्या कहता है धर्म? अर्जुन तेरा धर्म चक्षु खोल, ये चर्म चक्षु से काम न चलेगा यहां है। और केवल चर्म चक्षु से माने केवल धर्म चक्षु का उपदेश नहीं किया, धर्म चक्षु के बाद ज्ञान चक्षु भी खोल दिया। हा? क्या खोला? देही नोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र नमुयति। न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भवितावान भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये कौन सी दृष्टि है? ये ज्ञान चक्षु। भगवान ने अर्जुन के दो चक्षु खोल दी। कौन कौन सी? धर्म चक्षु और ज्ञान चक्षु। हाँ, धर्म चक्षु और ज्ञान चक्षु खुलने का परिणाम क्या हुआ? नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादान मयाच्युता स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। लेव जी, महाराज ये तो बात स्पष्ट हो गई। ये चर्म चक्षु ने तो हमको धोखे में डाल दिया। ये तो आपने बचा दिया भाई, हम तो चर्म चक्षु जो कहता है वही ठीक मानते रहे, चर्म चक्षु पर भरोसा करते रहे। लेकिन बात कुछ और है। हाँ, सारा संसार 99% व्यक्ति

0: चर्म चक्षु पर ही भरोसा करते हैं। हाँ, धर्म चक्षु और ज्ञान चक्षु की तो बात ही छोड़ दो, कभी कभी ज्ञान चक्षु की तो खाली चर्चा होती है, प्रयोग नहीं होता है। होता है हाँ? धर्म चक्षु की चर्चा भी होती है, प्रयोग भी होता है। कभी कभी एकादशी के दिन साबूदाना की खिचड़ी खा लेते हैं, प्रयोग भी होता है हाँ? धर्म चक्षु के एकादशी के दिन साबूदाने की खिचड़ी खाना ये धर्म का विषय है, ज्ञान का विषय नहीं है, ध्यान देना। ज्ञान का विषय तो क्या है, चाहे दाल भात खाओ चाहे साबूदाना की खिचड़ी खाओ, खाने वाला प्राण और इंद्रियां हैं, आत्मा तो अभोक्ता है, अकर्ता है, अभोक्ता है, असंग है। देखो इंद्रियस्य इंद्रियार्षे तु वर्तन्त इति धारयः। लेव जी क्या कहा, ज्ञान चक्षु क्या कहता है, इंद्रिया अपने विषय में विचरण करते हैं, राग द्वेष व्यवस्थित हो तयोर न समागच्छत तव यथ्य परिपंथिन। देख लो ज्ञान चक्षु के बाद तो क्या गजब की भूमिका आती है। तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा हुई, अर्जुन के तीसरा नेत्र खुल गया। तो अब अर्जुन क्या हो गया बोलो, है त्रिनयनम हो गया वो हाँ? अर्जुन अब क्या हुआ हाँ? ये त्रिनयन अब कौन हो गया, अर्जुन हाँ? केवल शिवजी नहीं, जीव भी त्रिनयन हो सकता है। कब, तुम्हारी जो तीसरा आंख है ना वो बंद पड़ी है, वो खुलने का कोशिश तो कर रहे हैं हाँ? खुल जाए तो भगवत इच्छा है। अर्जुन की कृपा हुई तो प्रसादान, भगवान के प्रसाद से कृपा से अर्जुन का तीसरा नेत्र खुल गया। और आपके भी इसी तरह भगवान का कृपा, गुरु के कृपा, शास्त्र के कृपा, आत्म कृपा, चारों कृपा एक साथ हो जाए तो आपके भी तीन नेत्र, तीसरा नेत्र खुल जाए ज्ञान चक्षु, और आप त्रिनेत्र त्रिनेत्र त्रिनयनम हाँ, आप फिर जीव भाव से सर्वथा हटकर आप क्या कहने, अभी क्या कहते हो, जीवो हम। तीसरा नेत्र खुलेगा तो क्या बोलोगे, शिवोहम है हाँ? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम कब कहोगे, ये कहना तो अभी भी कह रहे हो, कहने मात्र से कुछ नहीं होने वाला है। जो कह रहे हो वो जी रहे हो कि नहीं, शिव के रूप में जीने का अवस्था तो वो तीसरा नेत्र खुलेगा तब, क्योंकि शिव जी रहे हैं हाँ? आ शुरू किया था शिवानंद लहरी और पहुंच गए ब्रह्मानंद लहरी में हैं? कहां पहुंच गए, शुरू किया था कहां, शिवानंद लहरी और पहुंच गए कहां, ब्रह्मानंद लहरी। एक ही चीज है भैया हाँ, एक ही चीज है। ये त्रिनयनम तीन नेत्र की बात करना बहुत जरूरी था। त्रयी वेद्यम हृद्यम त्रिपुरहरमाद्यं त्रिनयनं जटाभारोदारं चलदुग्रगारं उरगहारं मृगधरं महादेवं देवं महिषदयभावं पशुपतिं चिदालंबं सांबं शिवमति विडंबम हृदि भजे। भगवान शिव की स्तुति करते हुए शंकराचार्य जी कहते हैं, त्रिनयनम हे त्रिनयनम, तीन नेत्र वाले मुझे भी तीन नेत्र वाला होना है हाँ? आप केवल तीन नेत्र वाले हो, मुझे भी तीन नेत्र वाला होना है। वो आपकी कृपा से ही होगा भाई, मेरा तीसरा नेत्र भी आपके ही कृपा से। जिसका तीसरा नेत्र खुला होगा वही दूसरे का तीसरा नेत्र खोल सकेगा, जिसका तीसरा नेत्र बंद होगा तो दूसरे का तीसरा नेत्र खोल पाएगा बोलो। जिसका चर्म चक्षु बंद होगा वह दूसरे के चर्म चक्षु का ऑपरेशन कर पाएगा बोलो। कुलीन कोठारी के अपनी आंख ठीक होगी तब ना तुम्हारे आंख ठीक करेगा है? यदि उसकी आंख बिगड़ गई, अंधा हो गया वो, तो क्या तुम्हारे आंख का ऑपरेशन करेगा फिर भी? चर्म चक्षु जिसके खुली है वो चर्म चक्षु खोलेगा, धर्म चक्षु जिसकी खुली है वही धर्म चक्षु खोलेगा, ज्ञान चक्षु जिसकी खुली हुई है वही दूसरे के ज्ञान चक्षु खोलेगा। क्योंकि शिव के ज्ञान चक्षु खुले हुए हैं इसलिए वही समर्थ हैं हमारे ज्ञान चक्षु खोलने में। हे भगवान हमारे ज्ञान चक्षु खोल दीजिए ताकि हम भी त्रिनेत्रम बन जाएं। जटाभारोदारम कहते हैं भगवान शिव पहले बहुत चंचल थे, बहुत चंचल, एक कहावत है वो, बंदर को भांग पिला दो तो क्या अवस्था होगी उसकी है, बंदर को यदि भांग पिला दो और उसको कहोगे तू कुर्सी में बैठ, बैठेगा? एक तो बिना भांग पिए ही बंदर इतना चंचल है, उसमें भी भांग पी ले वे, बोलो क्या वो स्थिर होकर बैठ पाएगा वो? कहते भगवान शिव बहुत चंचल थे क्योंकि पहले खूब भांग पीते थे वो, है ना, भांग पीते थे तो बहुत चंचल थे। सब लोग बहुत समझाए बेचारे, भगवान आप तो परमात्मा है, सारे जगत आपको मानते हैं, इतने उतावले मत बनो, इतने चंचल मत बनो, जरा गंभीर होकर बैठो। अब क्या करें वो आदत से मजबूर है, बहुत चंचल। सब लोगों ने विचार किया कि इनकी चंचलता को कैसे रोके, कहने से तो मानने वाले है ही नहीं। तो सब लोगों ने भगवान को कहा, शिव जी को, हे शिव जी आप जटा बढ़ाओ, खूब सिर में जटा बनाओ, तपस्या करो और जटा बनाओ। तब भगवान शिव ने जटा बढ़ाना शुरू किया, इतना जटा इतना बढ़ गया तो भगवान शिव की जटा का उल्लेख किया किसने, रावण ने, शिवतांडव स्तोत्र में, जटा कटाह संभ्रमम। हे शिव आपके सिर का जो जटा है ना वो कैसी है, आकाश मान लो एक कड़ाही है, हाँ? जटा कटाह संभ्रमम, आकाश कैसी है इस समय आपको, आकाश कैसा दिख रहा है, उल्टा करके रखे हुए बड़ा कड़ाही जैसा लग रहा है कि नहीं है, बड़े बड़े आश्रमों में भंडारा होता है ना, समष्टि भंडारा, वो पकाने के लिए कड़ा होते, कड़ाई क्या होता है, कड़ा होता है बड़े बड़े लोहे के कड़ाई, जहां पांच पांच दस दस हजार के लिए भोजन बनता है और खीर पकती है, है? लोहे के कड़ाई, तो मांजने के बाद उसको उल्टा करके रखते हैं। क्यों उल्टा करते हैं मांजने के बाद पता है, सीधा करके रखोगे तो पानी रहेगा तो उसमें जंग लग जाएगा, तो उल्टा कर देने से पानी नहीं रहेगा तो जंग नहीं लगेगा, मांजने के बाद चमक बनी रहेगी, इसके लिए उल्टा कर देते हैं। हाँ, इसी तरह आप ऊपर से देखोगे कैसा लगता है आकाश, है? किसी ने आकाश को, कड़ाई को उल्टा करके रख दिया। ये आकाश जो है ना, देवता लोगों को हलवा पका के खाने के लिए कड़ाई है, हाँ? और हमने देखा आश्रमों में वो बड़ा कड़ाई उल्टा करके रखा तो कड़ाई के नीचे कभी भी सफाई न करे कर्मचारी तो गंदगी रह गया कड़ाई के नीचे, क्योंकि एक आदमी तो इलाज जुला पाएगा नहीं, तो जहां गंदगी आ गई तो मच्छर बहुत हो गए और वो सारे मच्छर वो कड़ाई के अंदर ही उड़ते थे। ऐसे कभी जाके देखो, उड़ते थे कहां, कड़ाई के अंदर उड़ते थे। इसी तरह आप लोग भी देवताओं के कड़ाई के अंदर उड़ रहे हो। देवताओं के कड़ाई क्या है, आकाश, आम जीव क्या है, उस आकाश के नीचे वो कड़ाई के अंदर घूम रहे। और रावण ने क्या किया, कहा है देखो, असंभ्रमम, जैसे हम लोग हलवा बनाते हैं ना छोटी सी कड़ाई में, हलवा अच्छी तरह सिक गया और पक गया तब वो हलवा कड़ाई को छोड़ देता है, कड़ाई से चिपकता नहीं है, छोड़ देता है, और छोड़ने के बाद तुम चलाओगे तो वो कड़ाई में घूमता रहता है, पूरा हलवा पूरा एक पूरा घूमेगा वो, जितना चलाओगे घूमता ही रहेगा वो। रावण ने उस दृश्य का स्मरण किया, हे शिव आपकी जो जटा है आकाश रूपी कड़ाई के अंदर इस तरह घूम रही है जैसे कि हलवा घूमता है। संभ्रमम, हाँ, जटा कटाह संभ्रमम, तो इसीलिए जटा। और वो जटा भगवान शिव की इतनी बड़ी हो गई कि उनको संभाल संभाल के बांधे रखे, तो उसके वजन से भगवान शिव की चंचलता हट गई, तब वो गंभीर हो गए, क्योंकि चंचल करेंगे तो कहीं जटा इधर उधर बैलेंस बिगड़ जाएगा, तो सिर सीधा रखना पड़ेगा, हैं? तब फिर तब गंभीर होने लग गए भगवान शिव, तब फिर कैलाश में बैठे गंभीर, फिर उनकी चंचलता चली गई। वही कह रहे हैं यहां, जटा भारोदारम चल दुर्गहारम मृगधरम चलत उरग, चलत माने चंचल, उरग माने सर्प, सर्प का नाम है उरग, उर का मतलब होता है छाती और पेट, उर का अर्थ होता है छाती या पेट, और छाती या पेट से जो चले तो क्या हुआ, चलत उरग, चलत उरग, चलत का अर्थ हो गया अति चंचल। इसलिए साधु के भाषा में कहा गया है तीन चार सकार एक ही स्वभाव के हैं, चार सकार साधु सरिता सर्प और शेर, ये चार चीज एक जगह कभी भी बैठे नहीं रह सकते। साधु भी चरैवेति चरैवेति, इसीलिए साधु के नाम के आगे परिव्राजकाचार्य लिखते हैं, घूमने में मास्टर, आचार्य माने, आचार्य माने क्या, मास्टर, तुम लोग मास्टर कहते हो, हम लोग आचार्य कहते हैं। साधु क्या है, चलने में मास्टर, साधु जितना चलता है तुम लोग क्या चलोगे भाई, घूमता ही रहेगा घूमता ही रहेगा। परिव्राजक चारों तरफ व्रजति गच्छति इति परिव्राट, परि माने चारों तरफ, व्रजति गच्छति परिव्राट, परिव्राट में आचार्य मास्टर परिव्राजकाचार्य, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परिव्राजकाचार्य। ले जी, साधु एक जगह कभी नहीं बैठता है, हाँ। और दूसरी बात सरिता, नदी, सरिता का अर्थ होता है नदी, सरिता सतत बहती ही रहती है, स्थिर होकर नहीं रहती है, चलायमान गतिशील। और इसी प्रकार के सर्प कभी भी एक जगह नहीं बैठेगा, आज यहां देखा तो कल खोजने जाओ वहां नहीं मिलने वाला, कहां का कहां पहुंच गया वो। और शेर भी एक जगह नहीं बैठता है, इसीलिए कहा चलित चलत उरग, अति चंचल जो सर्प है वह, उसको भगवान ने क्या बनाया, हारम, चलग उरग हारम, चलत उरग हारम, उसको आगो, इसकी व्याख्या तो हमने कल कर दी थी, सर्प को भगवान शिव ने हार क्यों बनाया, ये तो हमने कल व्याख्या कर दी थी, है? सब लोगों ने तिरस्कार किया, रोने लग गए, महाराज आपके कहने से हमने पृथ्वी में गिरे हुए विष का पान किया, चाट लिया, पृथ्वी को शोधन कर दिया, अब उसका परिणाम यह है कि जो भी हमको तिरस्कार कर रहा है, डंडा मार रहा है, भगा रहा है, हम किसके आश्रय में रहें। भगवान ने कहा कि चिंतित, क्योंकि तू मेरा आज्ञाकारी है, इसलिए ले आ मेरे हृदय में बैठ, जटा में बैठ जा, ये काम आ गया ना, महिलाएं अपने केस बांधने के लिए एक रबड़ बैंड प्रयोग करती है ना, भगवान शिव का रबड़ बैंड, वाह क्या बढ़िया, जटा इतना बड़ा था, जब भी इधर उधर चले तो वो जटा नीचे गिर जाए, हैरान हो गए, अब क्यों साधारण रबड़ बैंड से बंधे वो, पकड़ लिया सर्प बांध लिया, अब तू हल हिलना नहीं, ले जी सर्प उसको बांध के बैठा है। मृगधरम, शिव का नाम है भी मृगधरम, भगवान शिव के चार हाथ, चतुर्भुज मूर्ति देखोगे, चतुर्भुज, उसमें एक हाथ में मृग है, मृग हरण हिरण रखा हुआ है, मृगों को ऐसे पकड़ रखा है, उसके दो पांव ऊपर की तरफ हैं, दो पांव दो उंगलियों से दबा रखा है भगवान शिव ने, हां ये उनकी विशेषता है। ये एक प्रतीक है। मृग असाध बहुत ही चंचल प्राणी है, जंगल में मृग अति चंचल प्राणी है और तुम्हारे अंदर मन अति चंचल है। मृग के चार पांव हैं तो तुम्हारे भी मन के भी चार पांव हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चार पांव हैं, इन्हीं चार पांव से उछलता है। ज्ञानी लोग का मन धर्म और मोक्ष दो पांव का प्रयोग करते हैं ज्यादा, अज्ञानियों का अर्थ और काम का प्रयोग होता है। तो मन के चार पांव हैं, लेकिन वो अति चंचल प्रतीक है। मन की जो चंचलता वो हिरण के साथ प्रतीक बनाकर भगवान शिव ने वो रखा है, तो हिरण को पकड़ के उसके दो पांव को, पीछे के दो पांव को पकड़ के रखा है। पीछे के दो पांव को पकड़ा का मतलब होता है मन को अर्थ और काम में प्रवृत्त होना न देना। मन के चार प्रकार के वृत्तियों में से अर्थ काम जीवात्मा के लिए सर्वथा घातक होने के कारण जीव का कल्याण तभी संभव है, सबसे पहले अर्थ और काम वृत्ति पर नियंत्रण करे और धर्म और मोक्ष वृत्ति को प्रयोग करे। ये प्रतीक है वो। इस अपरोक्ष माने शिवानंद लहरी पर श्रद्धेय हमारे गुरु महाराज ने प्रवचन किया है, चतुर्मास में दिल्ली में प्रवचन किया था, महाराज ने यही अर्थ किया है, वो प्रतीक है। इसलिए मृगधर्म, भगवान शिव का नाम तब से मृगधर हो गया। महादेवम देवम, देव शब्द का अर्थ होता है प्रकाश, देवतनाद देव, जो हमेशा प्रकाश स्वरूप है वही देव है। महादेवम, देवताओं में वो देव होने के कारण उनका नाम महादेव हुआ, और देवम प्रकाश स्वरूप है। मयि सदय भावम पशुपतिम, मयि मेरे प्रति हे भगवान सदय भाव आप में होनी चाहिए। सदय भाव, मेरे प्रति दया का भाव आपके हृदय में जरूर होनी चाहिए। यदि आप ही मेरे प्रति दया नहीं करेंगे तो और कौन दया करेगा महाराज? क्यों? आप पशुपति हैं और मैं पशु हूं। आपका नाम पशुपति क्यों हुआ? क्योंकि हम सब पशुओं की रक्षा करने वाले होने के कारण आपका नाम पशुपति हुआ है, और आपका पशुपति नाम तभी सार्थक होगा मुझ पशु के प्रति आप दया करें और मुझ पशु की आप रक्षा करें। रक्षा दो प्रकार से होता है, एक भरण पोषण से रक्षा करना होता है और दूसरा विजातीय शत्रु पक्ष से, नाशक तत्वों से रक्षा करना होता है। केवल नाशक तत्वों से रक्षा कर लिया और भरण पोषण नहीं की तो वो रक्षा का कोई मतलब नहीं। एक ने बिल्ली पाली थी तो कुत्ते के साथ उसके दुश्मनी हो गई, किसकी? बिल्ली की। कुत्ता उसको देखना ना चाहे, मौका मिले तो उसको पकड़ के खाने की चेष्टा करे, तो उसने विचार किया, बेचारा ये कुत्ता खा डालेगा इसके, इसलिए क्या करना चाहिए? तो एक टोकरी में बंद करके रख दिया, पिंजड़े में बंद कर दिया। किसको? बिल्ली को। अब रक्षा हो गई कि नहीं बिल्ली की? बंद करके चला गया, अब खाने नहीं दिया है तो बिल्ली की रक्षा हुई कि नहीं? अब कुत्ता मार पाएगा उस बिल्ली को है, क्योंकि उसको बंद कर दिया टोकरी से। कुत्ता उसको मार पाएगा? अब बिल्ली की रक्षा हो गई कि नहीं? अरे इस प्रकार के रक्षा से कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि खाना देता और खाना भी नहीं दिया तो क्या करेगा? और कह रहा कि मैंने बिल्ली की रक्षा कर दी, फिर खाने भी दिया नहीं दिया? दो दिन के बाद तो देखा बिल्ली मर गई है। सब लोगों ने कहा कि क्या हुआ? बोले बिल्ली मर गई। तूने तो कहा था बिल्ली की रक्षा कर दी कुत्ते से। बोले हाँ कुत्ते से तो रक्षा कर दी, लेकिन खाने नहीं दिया था, वो कुत्ते के रक्षा करने का प्रयोजन क्या सिद्ध हुआ? हे शिवा, ऐसा ना हो कि खाने भी दो यमराज से भी रक्षा करो, है। और यमराज से रक्षा तो करो, इधर खाने नहीं दोगे फिर यमराज से रक्षा करने का प्रयोजन क्या हुआ है। देखो सदय भावम पशुपति चिदालंबम सांबम शिवमति विडंबम हृदि भजे। शिव जी के ही सब विशेषण है, चित आलंबन चैतन्य ही उनका स्वरूप है। सांबम अंबा सहित, पार्वती के सहित, शक्ति के सहित। शिवम कल्याण स्वरूपम अति विडंबम, विडंबा विडंब का अर्थ होता है संसार, और संसार का नाम विडंब, और संसार का अतिक्रमण करके आप रहते हो इसलिए अति विडंबम। अति का अर्थ अतिक्रम, अतिक्रांतम, विडंबम संसारम, जन्म मृत्यु से भरा हुआ, राग द्वेष से भरा हुआ यह जो संसार है, इस संसार से अतिक्रम यानी निकले हुए आपका स्वरूप है। ऐसे हे शिव हृदय भजे, ऐसे भगवान शिव का मैं हमेशा हृदय में भजन करता हूं, स्मरण करता हूं, यानी मैं हमेशा उनकी सेवा करता हूं। भजन का अर्थ सेवा भी होता है, भज सेवायाम धातु से भजन बनता है। तो आगे के श्लोक कल देखेंगे भाई। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम
1: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
2: Om Namah Shivaya.

शांति शांति शांति। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भगवान की कृपा से हम सभी लोग भारत की आर्थिक राजधानी मुंबापुरी महानगरी में प्रेमपुरी आश्रम में समवस्थित होकर ज्ञान गंगा स्रोतोवत यह जो स्वाध्याय प्रवचन चल रहा है इसका लाभ उठा रहे हैं। और विशेषकर यह वर्ष स्वनाम धन्य प्रेमपुरी जी महाराज का स्वर्ण निर्माण महोत्सव है और हम लोग आज शिव महिमन पर विचार करेंगे और आज ही सौभाग्य से उसी कैलाश आश्रम के जो दसम पीठाधीश्वर स्वनाम धन्य अनंत श्री विभूषित विद्यानंद गिरी जी महाराज जिनके चरणों में बैठकर मुझे करीब 20 वर्ष से शिक्षा दीक्षा पढ़ने पढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ उनका भी आज ही निर्वाण महोत्सव है। प्रथम निर्वाण महोत्सव है मार्ग शुक्ल चतुर्थी तदनुसार 1 दिसंबर आज पड़ता है। आज के दिन उनका निर्वाण महोत्सव है और ऐसे पुण्य श्लोक का महापुरुषों को स्मरण करना चाहिए क्योंकि दसम पीठाचार्य हमेशा एक बात कहा करते थे कृतम प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातन। ये मनु महाराज का वचन है कैलाश के दसम पीठाचार्य विद्यानगरी जी महाराज कहा करते थे जिसने कुछ हमारे प्रति किया है उसके प्रति हमें कुछ उसके लिए तर्पण करना चाहिए। तो जो पंचम पीठाधीश्वर प्रेमपुरी जी महाराज उनका स्वर्ण निर्वाण महोत्सव है और दसम पीठाधीश्वर विद्यानंद गिरी जी महाराज का आज प्रथम निर्वाण महोत्सव है। जब सेंचुरी निर्वाण महोत्सव मनाएंगे तो दसम का तो स्वर्ण महोत्सव आएगा और पंचम का जो है सेंचुरी महोत्सव इसको हीरक जयंती बोलते हैं। 25 वर्ष के बाद रजत जयंती होता है 50 के बाद स्वर्ण होता है बीच में एक और कुछ आता है सेंचुरी में हीरक जयंती मनाते हैं। तो सौभाग्य जो दो महापुरुषों के निर्माण महोत्सव के कड़ी में हम लोग स्वाध्याय प्रवचन श्रवण कर रहे हैं। एक बात हमेशा उनकी याद आती है संस्थानों के विषय में कहा करते थे एक दृष्टांत देते थे हिमालय के कंदरा में दो महापुरुष साधना करते थे भगवान शंकर के कृपा से दोनों को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। दोनों में से एक जो महापुरुष थे वे तो उस ज्ञानामृत को बांटने के लिए समाज में आए ऋषिकेश पधारे ऋषिकेश के बाद में बंबई और यहां भक्तों को रास्ता बतलाया कि जाओ वहां पर ज्ञानामृत वितरित हो रहा है। और दूसरा संत वह है जो कि वहां पर जाने के बाद वापस नहीं आया मात्र वह अमृत के रसा स्वादन में डूब गया। तो दोनों में से विशेषता किसकी है यह स्वयं श्रोतालु निर्णय करके बतलाएंगे। जो संत वहां जाकर अमृत का स्वादन किए वहीं जाकर अमृत में डूब गए नीचे उतरे नहीं वह तो मात्र अपना उद्धार की परंतु जो संत वहां से अमृत का ज्ञान प्राप्त करके पुनः देश विदेश में जाकर प्रचार किया कि इस प्रकार से आत्मज्ञान रूपी अमृत की प्राप्ति होती है उसकी महानता है। स्वयं भी अमृत का स्वादन किया दूसरों को भी करा रहा। ऐसे ही हमारे पंचम पीठाचार्य प्रेमपुरी जी महाराज हुए और दसम विद्यानंद गिरी जी महाराज जिन महापुरुषों ने कठोर तपस्या करके
जीवन में आत्मा का साक्षात्कार किया। साक्षात्कार करने के बाद बंबई जैसे महानगरी में आकर के यहां के लोगों के लिए भी रास्ता प्रशस्त किया, इसलिए उनका स्मरण करना बहुत जरूरी है। अब जरा हम लोग श्री महिमन की पुस्तक भी देख लें। आज है 13वां श्लोक, 12 तक विचार हो चुका है, पहले उच्चारण कर लें। यद्रिदिं सूत्राम्लो वरद परमोचैरपिशति मदश्चक्रे बाण परिजन विधेयस्त्रिभुवन नतच्चि।

0: पुष्प दंताचार्य जी भगवान शंकर की महिमा का गान करते हुए कह रहे हैं यद्रिडिम सूत्राम्लो, ये शिव महिमन स्तोत्र है। देखो दुनिया में जो है ना बहुत स्तोत्र है, पर शिव के महिमा का स्तोत्र, ये शिव का स्तोत्र नहीं बल्कि शिव की महिमा का स्तोत्र। क्योंकि नियम है जब तक हम किसी की महिमा नहीं जानते तब तक उधर प्रवृत्ति या निवृत्ति नहीं होती है। इसलिए जो परम तत्व शिव है उसके महिमा को यहां पर बखान किया है ताकि मनुष्यों की प्रवृत्ति हो। इसी तत्व को मांडुक्य उपनिषद में मंत्र भाग में बतलाया है शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम आत्मा इति मन्यन्ते। जो शांत है, शिव है, अद्वैत है, उसी आत्मा को तुरीय भी कहते हैं। अब उसके सगुण साकार विग्रह के विषय में यहां बतला रहे हैं यद रिद्धिम सूत्राम्लो। सूत्राम्लह का अर्थ है इंद्र। पहले इसका मूल श्लोक का अर्थ कर ले हम लोग। जो इंद्र है सूत्राम्लह है, देखिए अन्वय करने का अर्थ होता है पहले संबोधन, संबोधन के बाद में विशेषण, विशेषण के बाद में क्रिया विशेषण, फिर क्रिया। ये पंक्ति लगाने की तरीका है। प्रथम संबोधन, संबोधन के बाद में विशेष्य, विशेषण, क्रिया विशेषण, फिर जाकर क्रिया, तब जाके किसी श्लोक का या संस्कृत काव्य का अर्थ लगता है। तो यहां पर वरद ये है संबोधन, बरद आया है आपको सूत्राम्लों के बाद में। बरद मल्ल की वरम ददातीति बरद, वर शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ, जो हमेशा अपने भक्तों को श्रेष्ठ चीज ही दे उसका नाम है बरद। मनुष्यों को भले पता न हो कि हमें क्या चीज अब वरण करना, वरण बोलते हैं चुनाव को, किस चीज का वरण करें, चुनाव करें, क्या श्रेष्ठ है, पर भगवान को पता है कि हमें अपने उपासक साधक को क्या देना है। छोटे बच्चे को यह पता नहीं होता है कि भगवान के मंदिर में जाने से, पूजा करने से, या स्वाध्याय से, या पठन पाठन से क्या लाभ होता है। छोटे बच्चे तो खेल कूद में या मिष्ठान के खाने में ही आनंद मानते हैं, पर माता पिता को पता है इसे क्या देना चाहिए। जो मासी होती है ना वह तो मिठाई देकर खुश रखती है, पर माँ डांटती है क्योंकि तो माँ को पता अधिक मिठाई खाएगा तो पेट खराब हो जाएगी। ऐसे भगवान को पता है कि हमारे उपासक को, भक्त को क्या श्रेष्ठ चीज देना है। एक बार बद्रीनाथ की यात्रा कराने के लिए एक अच्छे विद्वान ब्राह्मण भक्त को ले गए। यात्रा पूरी करा दी। यात्रा पूरी कराने के बाद शेठ ने कहा कि तुम्हें जो सबसे अच्छी चीज हो वह तुम मुझसे मांग लो, कुछ भी। तुमने हमारी 2 वर्ष तक अच्छी तरह से मुझे यात्रा कराया, जगह जगह घुमाया, वर्णन किया, प्रवचन सुनाया। लगभग आज से 50 वर्ष पुरानी बात है। उस गरीब विद्वान ब्राह्मण ने कहा बस समय केवल 10,000 रुपये चाहिए। उस सेठ ने कहा 10,000 रुपये क्या होता, मैं तुमको जो है एक बहुत सुंदर मकान बनवा के देता हूं जिसमें 4 कमरे होंगे और तुम्हारे नाम से 1,00,000 रुपये बैंक बैलेंस कर देता। बड़ा खुश हो गया। उसने कहा कि जिंदगी में आज तक हमें किसी ने इतना दिया ही नहीं था। तो मांगने वाला तो अपने समझ से मांगता है। गरीब ब्राह्मण देवता के लिए 10,000 बहुत पैसे थे, परंतु सेठ के लिए कुछ भी नहीं। ऐसे ही भगवान शंकर वरद हैं, हमेशा श्रेष्ठ चीज ही अपने उपासक को देते हैं। तो हे वरद, जो समस्त भोग और मोक्ष को देने वाले परिजन विधेय त्रिभुवन, इसके बाद इसका अन्वय करना जो नीचे लिखा है ना परिजन विधेय त्रिभुवन, जिसने कि अपनी उपासना से भक्ति से भगवान शंकर को प्रसन्न करके, परिजन बोलते हैं कि नौकर या सेवक दास, ये तीनों अर्थ होते हैं, पूरे संसार को त्रिभुवन को परिजन विधेय परिजन बना लिया, ऐसा है बाणासुर। आगे बाणा कन्वे करना, बरद परिजन विधेय त्रिभुवन बाण, जिस बाणासुर ने भगवान शंकर की उपासना करके त्रिभुवन को परिजन विधेय मतलब कि अपना दास बना लिया। परमोच्चैः सतिम सुत्रामण, जो सर्वोत्कृष्ट जो समृद्धि है जो कि इंद्र के सामने थी, उसको भी जिसने कि समझो कि तुच्छ कर दिया। रिद्धि मतलब ऐश्वर्यम, अपि यतः अधः चक्रे, यतः मतलब जिस बाणासुर ने भगवान शंकर से वरदान प्राप्त करके सुत्रामण इंद्र के ऐश्वर्य को भी फीका कर दिया। तत त्वच्चरणयो, वह केवल आपके चरण कमलों की वरी वशीतरी कार्थे सेवा नमस्कार आदि का प्रभाव है। तस्मिन चित्रम त्वयी, यह बड़ा ही विचित्र है, न त्वयी शिरसि शिरसः, जो कोई भी आपके चरणों में सिर झुकाता है, अवनति बोलते हैं झुकाने को, सिर झुकाते ही सब कुछ उसको मिल जाता है, जैसा कि बाणासुर को प्राप्त हुआ। त्वयि शिरसः अवनति कस्य उन्नति न भवति, आपके चरण कमलों में सिर झुकाने पर किस उन्नति के लिए वह नहीं होता है, अर्थात सभी प्रकार के भोग ऐश्वर्य को प्राप्त करा देता है। यह तो हो गया पदार्थ, इसको बोलते हैं पदार्थ। व्याख्यान के पांच लक्षण हैं, पदच्छेदो पदार्थोक्ति, विग्रहो वाक योजना और आक्षेप समाधान। किसी भी श्लोक का मंत्र का अर्थ करना हो तो पहले पदच्छेद करते हैं, बाद में पद के अर्थ को बतलाते हैं पदार्थोक्ति, इसके बाद में विग्रह, विग्रह बोलते स्वरूप का निश्चय करना, किसका क्या अर्थ होना चाहिए, व्याप्ति अति व्याप्ति असंभव दोषत्र से रहित हो उसका नाम है विग्रह। विग्रह के बाद में इसके बाद में आक्षेप समाधान और वाक्यार्थ, ये पांच मिला करके श्लोक अर्थ कहलाते हैं। तो यहां पर बाणासुर का दृष्टांत दिया कि बाणासुर ने भी भगवान शंकर की उपासना किया था, इंद्र ने भी। इंद्र ने भगवान शंकर के सोमास्कंद, एक बड़ा ही सुंदर दक्षिण भारत में मशहूर ग्रंथ है जिसका नाम है शिव भक्ति चरित्र, संस्कृत में, उसका हिंदी अनुवाद अभी तक नहीं हुआ है, तमिल भाषा में अनुवाद मिलता है। तो शिव भक्त चरित्रम में भगवान शिव की ऐसी महिमा वहां पर प्रमाण के साथ बतलाई है कि इंद्र ने भगवान शंकर की उपासना करके सोमा स्कंद प्राप्त किया था और खोई हुई ऐश्वर्य को उपलब्ध हुआ था, परंतु बाणासुर ने ऐसी उपासना किया कि इंद्र का ऐश्वर्य भी तुच्छ हो गया। दोनों के ऐश्वर्य में बड़ा भारी अंतर है। जैसे कोई सेठ, आजकल सेठ लोग कहते हैं ना कि बच्चे तो हमारी बात नहीं मानते परंतु नौकर मानते हैं। बच्चे को पता है कि पापा नाराज होंगे तो कुछ कर तो सकते नहीं, घर से निकाल नहीं सकते, बहुत ज्यादा करेंगे डांटेंगे फटकारेंगे बस, परंतु नौकर को पता है यदि मैं बार बार गलती करूंगा तो सेठ बाहर खदेड़ देगा, इसलिए नौकर जी हजूरी करता है, बार बार जो है ना आगे पीछे घूमता है। तो दोनों ही हाथ जोड़ते हैं, परंतु बच्चा जो है पिता के गुण से प्रभावित होने के बाद आदर करता है, परंतु नौकर पैसे के लोभ में या नौकरी के कारण से जी हजूरी करता है। तो इंद्र का ऐश्वर्य तो नौकर के समान है, इंद्र से लोग भयभीत होकर उसको आदर करते हैं, परंतु बाणासुर के जो भक्त अनुयायी हैं वे डर कर नहीं करते, बल्कि परिजन के समान, दास सेवक के समान आदर करते हैं। इस प्रकार के ऐश्वर्य को भगवान शंकर के चरणों के उपासना से उपलब्ध किया। न तस्मिन चित्रम, जब बाणासुर और इंद्र भी भगवान शंकर की उपासना करके इतने ऐश्वर्य को उपलब्ध हो सकते हैं, तो हम आप उपलब्ध क्यों नहीं हो सकते? बशर्ते हम लोग करते नहीं, हम लोग सोचते बहुत हैं। जैसे शेख चिल्ली की बहुत मशहूर कहानी है ना, सब कुछ जानते हैं, सुनते हैं, मनोराज्य करते हैं, परंतु अमल नहीं करते हैं। यदि बाणासुर जैसे जो कि असुर कुल में उत्पन्न हुआ, वह भी भगवान शंकर की उपासना से भावी को मिट सकता है, तो फिर जो साक्षात भगवान के भक्त हैं वे उपासना करें तो क्या चीज उपलब्ध नहीं हो सकता है? अर्थात सब कुछ उपलब्ध हो सकता है, बशर्ते हम लोग श्रद्धा से उपासना करें। इसलिए कह दिया, न तच्चित्रम तस्मिन त्वचरणयो वरीवशितरी, आपके चरण कमलों की उपासना से अलभ्य स्त्री ऐश्वर्य भी प्राप्त हो जाता है। पुष्प दंताचार्य जी कहते हैं कि भगवान विष्णु जब देवासुर संग्राम में दैत्य लोग मारे गए, कुछ दैत्य भग करके भृगु पत्नी के शरण ग्रहण की। दैत्य जब देवता से हार गए तो हारने के बाद भागते भागते महर्षि भृगु के आश्रम में गए। वहां जाकर क्या देखते हैं कि वहां पर भृगु महर्षि नहीं है, तो भृगु पत्नी के चरणों में गिर पड़े और बोले, त्राहिमाम त्राहिमाम। भृगु पत्नी ने उन्हें अपने कमरे में छिपा दिया और कहा कि तुम चिंता मत करो, यहां तुम आराम से भयमुक्त होकर के तुम लोग निवास करो। इधर भगवान विष्णु पता लगाते लगाते बहुत दिन के बाद मालूम पड़ा कि दैत्य भाग करके भृगु पत्नी के शरण में गए हैं। भगवान विष्णु भृगु पत्नी के आश्रम में आते हैं, जैसे ही आते हैं वैसे ही भृगु पत्नी ने पाद से अर्घ से पुष्प से भगवान की पूजा की, स्तुति की, प्रार्थना किया और कहा कि आप आप्त काम है, आपका दर्शन जो है किस प्रयोजन से हुआ, क्योंकि आप पक्षपात रहित देवता माने जाते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हमारे आगमन के कारण को तुम जानती हो, दैत्य तुम्हारे आश्रम में छिपे हुए हैं, तुम उन्हें जो है मेरे हवाले कर दो। भृगु पत्नी ने कहा कि शास्त्र में लिखा है कि शरणागत की रक्षा अवश्य करनी चाहिए, आपका ये बनाया हुआ संविधान है और मैं आपके अनुशासन के अनुसार ही इन शरणागत दैत्यों की रक्षा कर रही हूं और आप कृपया यहां से लौट जाइए। बहुत ज्यादा बात आगे बढ़ गई, बढ़ने के बाद भृगु पत्नी ने यहां तक कहा कि आप ही शास्त्र विधान किए हैं और आपने कहा है, बतलाया है कि शिवी ने शरणागत कबूतर की रक्षा किया था, एक कबूतर को बाज झपटा मार रहा था, वह कबूतर भागते भागते राजर्षि शिवी के पास गया, राजर्षि शिवी ने उस बाज पक्षी को अपना मांस काट कर दिया। बाज पक्षी ने कहा कि देखो मेरा भोजन कबूतर है, तुम इसकी रक्षा कर रहे, मैं भूखे मर जाऊंगा, तुम्हें पाप लगेगा। तो राजर्षि शिवी ने अपने मांस से उसको तृप्त किया। जब राजर्षि इतना कर सकते हैं तो मैं भी शरणागत की रक्षा क्यों न करूं। अंततो गत्वा भगवान विष्णु ने अपने चक्र से दैत्यों का सामने ही बध कर डाला, अविरोध करने पर भृगु पत्नी का भी चक्र से सिर अलग कर दिया। इधर जो है महर्षि भृगु आते हैं, समाचार मालूम हुआ, बहुत उन्हें क्रोध आता है। क्रोध आने के बाद भगवान विष्णु को श्राप दे डालते हैं, जाओ तुम जो स्त्री हीन हो जाओ, लक्ष्मी से तुम्हारा वियोग हो जाए और तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगे, क्योंकि तुमने ब्राह्मण पत्नी को मारा है जो गर्भिणी थी, जो शरणागत की रक्षा कर रही थी। इस प्रकार से भगवान विष्णु को जब श्राप दे दिया, श्राप देने के बाद लक्ष्मी का भगवान विष्णु से वियोग हो जाता है और भगवान विष्णु को ब्रह्म हत्या पीछे पड़ती है। इसके बाद भगवान विष्णु वैकुंठ लोक को छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद जो है वह दक्षिण में कमलालय नामक एक तीर्थ है, उस कमलालय नामक तीर्थ में जाकर के महेश्वर की उपासना करते हैं। 1000 कमलों से हर दिन वे उपासना करते थे। भगवान शिव प्रसन्न होकर के दर्शन देते हैं और ब्रह्म हत्या को नष्ट करके उन्हें सोमास्कंद नामक एक शिवलिंग भेंट करते हैं और कहते हैं कि तुम इस सोमास्कंद नामक शिवलिंग की पूजा हमेशा करते रहोगे तो कोई भी पाप ताप संताप तुम्हारे भक्तों को नहीं लगेगा। तो पुष्पदंताचार्य जी कहते हैं कि भगवान विष्णु ने भी यहां पर दो कथा थी। एक तो कथा है जो काशी में मणिकर्णिका घाट है, जिसको चक्र पुष्करणी तीर्थ कहते हैं, वहां पर ही भगवान ने किसी एक कल्प में नेत्र प्रदान करके सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। और दूसरे पुराण में किसी दूसरे कल्प की यह भी कथा है कि सोमास्कंद नामक शिवलिंग को भगवान शंकर से प्राप्त किया था।
1: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
3: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Atharvana Veda, Saunaka Shaka, Kandam 2, Sukta 28. Thank you.

0: ஓம் நம சிவாய். டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர் ரேடியோ, தி சைஸ் ஆஃப் அவர் ஆடியோ கலெக்ஷன் கண்டினியூஸ் டு க்ரோ டே பை டே. வி நவ் ஹோஸ்ட் மோர் தேன் 25,000 ஆடியோ ரெக்கார்டிங்ஸ். இன் ஆர்டர் டு மேக் தீஸ் எக்ஸ்டென்சிவ் ரிசோர்ஸஸ் மோர் ஆக்சசபிள் அண்ட் பெனிஃபிஷியல் டு அவர் ரேடியோ லிசனர்ஸ், வி ஹவ் ரீஆர்கனைஸ்ட் அவர் ப்ரோக்ராம் ஷெட்யூல். திருமுறை மியூசிக் அண்ட் திருமுறை டிஸ்கோசஸ் வில் பி ப்ராட்காஸ்ட் ஆன் திருநெறிய தமிழோசை. Philosophical discourses and Periyapuranam lectures in Tamil will be broadcast on Shiva Tattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaiva Lahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. ஓம் நம சிவாய்.
1: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் தைத்திரிய உபநிஷத், பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ ஆனந்த அந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
2: तैत्तिरीय उपनिषद को लेकर के प्रसंग चल रहा है, जिसके अंतर्गत चर्चा ये की जा रही। ऋषि जो है पहले अपने उन पूर्व ऋषियों की जो है शुभकामना धन्यवाद देते हुए आभार प्रकट करते हुए उनको नमस्कार किया। उसके पश्चात अर्वाचीन जिन ऋषियों ने उस भाष्य आदि पर टीका की, वह जो है प्रार्थना करते हुए संकेत करते हैं और अपने प्रतिज्ञा वाक्य को भी संकेत करते हैं। कहा तैत्तिरीयको सारस्य मया आचार्य प्रसादतः विस्पष्टार्थ रुचीनाम ही व्याख्येयम् संप्रदीयते। यहां चर्चा की कि जो यह तैत्तिरीय उपनिषद है और इस उपनिषद का जो सार, जिसकी ऋषियों ने भी चर्चा की, जिस सार को हमसे कहा, उस सार को समझना बड़ा कठिन है। अर्थात सार तो आगे चल करके संकेत करेंगे आठवीं आदिवल्ली में कि ब्रह्मविद आपनोति ब्रह्म। तो अब जो ब्रह्म को जानने वाला वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता, ये कहेंगे आगे। ये सार है उपनिषद का। तो ब्रह्म शब्द से हम सब लोग एक तरह से देखा जाए तो परिचित है, लेकिन वो परिचय कैसा है? वो अप्रोच है, प्रत्यक्ष है या परोच, वो चीज अलग है। लेकिन उससे परिचित तो है ही, भले ही परोक्षतया परिचित हो या प्रत्यक्षतया परिचित हो, लेकिन उससे परिचित होने पर भी वह ब्रह्म का जो प्रबोध है, वह जो सार है, वही सारे ये सारा सार बतलाते हुए कहा कि इस ब्रह्म से पृथक ब्रह्म सत्ता अतिरिक्त सत्ता कर्ताभावात्, ब्रह्म की सत्ता से कोई पृथक दूसरी सत्ता है नहीं। लेकिन यदि ऐसा है तो फिर हमारे जीवन में ये नाना प्रकार का उपद्रव क्यों? सुख दुख आना जाना, ये सब का सब जो है सोचना विचारना आदि फिर क्यों? जब एक ही सत्ता है तो वहां पे ये सब नहीं हो। इसका मतलब है कहीं न कहीं हमसे भूल है।

प्रसन्नता, माने प्रसन्नता। अब प्रसन्नता भी जहां होगी तो प्रसन्नता का मतलब क्या है? सीधा सा सभी जानते हैं कि जहां पर किसी प्रकार का उद्वेग नहीं है, उद्वेग से रहितता का नाम ही है प्रसादता, प्रसन्नता। तो उद्वेग जो है कहां होता है? तो आप जो है भागवतात में देखते हो, उद्विग्न बुद्धि रसदात्म भावात, वहां ऐसी चर्चा की। और यही क्या है? यही सारे संसार का रोग है, सारे संसार में दुख का हेतु। सबसे बड़ा रोग क्या है? तो बुद्धि की उद्विग्नता। और वो बुद्धि की उद्विग्नता क्यों है? बुद्धि में उद्विग्नता क्यों आई? तो उस उद्विग्नता का हेतु बतलाया, कारण बतलाया कि असदात्म भावात, जो असत पदार्थ हैं उसमें हमारी सत भावना बनी हुई, उसमें सत्यत्व की बुद्धि बनी। तो असत पदार्थ में सत्यत्व की बुद्धि होना यही बुद्धि की उद्विग्नता का कारण। हमारी बुद्धि की उद्विग्नता का कारण क्या है? असत पदार्थ में सत्यत्व बुद्धि होना, और उसी को लेकर के सारा झंझावात चलता रहे। अब यदि मन प्रसन्न हो जाए तो क्या होगा? तो कहा उद्विग्नता समाप्त हो जाएगी। तो क्या उसकी कसौटी? तो सत्य पदार्थ हमारे ग्रहण में आ जाएगा, असत्य पदार्थ में सत्यत्व बुद्धि फिर नहीं होगी, ये होगा। और वह सत्य जो है वही क्या है? कहा वही है सार। तो ऐसे उस सत्य रूप सार को ग्रहण करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो कहा असत की निवृत्ति हो या बुद्धि प्रसन्न हो, बुद्धि की उद्विग्नता समाप्त हो। और ये कब होगी? तो वहां भी संकेत किया, मैंने जो भगवान है उन भगवान के चरण कमलों का यदि वह बुद्धि सारा ले लेती है तो क्या होता है? तो कहने लगे उसकी उद्विग्नता समाप्त, मन ये कुतश्चित है भयमच्युतस्य, वहां ऐसा शब्द आया। मैने निर्भयता हमें कब प्राप्त होती है? जो अच्युत है, वहां अन्य शब्द नहीं दिया, अर्थात जो अपने स्वरूप से कभी भी बदलता नहीं, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसा जो परमात्मा है, ऐसे उस परमात्मा के चरण कमलों में यदि हमारी बुद्धि लग जाती है तो उसके उन चरण कमलों के प्रसाद से हमारी बुद्धि की जो उद्विग्नता है वो समाप्त हो जाती। और यहां तक कह दिया जिसकी बुद्धि में ऐसी प्रसादता आ जाती है तो कहने लगे विश्वात्मना निवर्तते भी, संपूर्ण जगत का जितना भी भय है वो उस बुद्धि से निवृत्त हो जाता, फिर कोई भय वहां रह जाता नहीं, सर्वथा वो निर्भयता की प्राप्ति कर लेता है। ये सब संकेत किया। तो ये प्रसाद की बात, मने आचार के प्रसाद से, आचार की कृपा से। और ये कब होता है, कैसे? एक छोटा सा दृष्टांत आपको दे। एक बार एक संत फक्कड़ थे, फक्कड़, और वो विचरण किया करते, आज यहां कल वहां, प्राचीन परंपरा ही ये थी। तो एक गांव में वह जाते थे, वहां पर उनके जो परिचित लोग थे सभी कुल मिलाकर के अपने जीवन निर्वाह को सुचारू रूप से करते। एक सीधा साधा सरल व्यक्ति था, उसका जीवन निर्वाह जो है सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा था। उन्होंने, संत ने उससे कहा कि भाई अमुक अनुष्ठान कर, अमुक उपासना कर, इस प्रकार से तू व्यवसाय कर तो तेरा जीवन भी सुचारू रूप से चलने लगेगा। उसने उस प्रकार से प्रयास भी किया, उनके बताए हुए कार्यों को किया, लेकिन क्या हुआ? उसकी स्थिति वही की वही बनी। एक वर्ष में वो चक्कर लगाते थे, जब एक वर्ष के बाद आए और उसकी वैसी स्थिति देखी तो फिर उन्होंने और उसको बतलाया कि अभी थोड़ी न्यूनता रह गई होगी, इसलिए तू इस और उपाय बतलाने लगे।

0: उसके अनुसार भी उसने कार्य किया, लेकिन फिर भी उसे सफलता नहीं। तब जो है उन संत ने सोचा कि अब इस पर कोई उपाय ऐसा करना चाहिए जिससे जो है इसका जीवन सुचारू रूप से चले। तो उनको कहीं पर एक मड़ी मिल गई, उस मड़ी को लाकर के उन्होंने उसको दे दिया और कहा कि इस मड़ी को तुम ले लो, इस मड़ी का प्रभाव है कि जो आप लोहे आदि का भी स्पर्श करा दोगे तो वो सुवर्ण बन जाए। इस मड़ी के प्रयोग के द्वारा तुम अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाओ, लेकिन ध्यान रखना इसका प्रयोग उतना ही करना जितनी तुम्हें आवश्यकता, आवश्यकता से हटकर के जो है इसका प्रयोग मत कर। ऐसा कहकर के संत चले गए। वह जो है उस मड़ी को ले लिया उसने, फिर जाकर के उसका एक मित्र था, जो मित्र था वो लोहार था। उस लोहार के पास पहुंचा और उससे कहा कि भाई कुछ लोहा जो है मुझे उधार दे दो, क्योंकि उसकी सामान्य स्थिति थी। था तो मित्र, उसने पूछा कि भाई लोहे का तू क्या करेगा, और उसके पूछने का कारण ये था कि ये जो सामान्य जीवन जीना इसके लिए कठिन, तो हमारा ये कर्ज कैसे चुका पाएगा, इसलिए उसके अंदर न देने की इच्छा थी। उसने कहा कि भाई तू लोहे का क्या करेगा, कम से कम हमें बतला तो। उसने जो है सरल था, उसने सब बतला दिया। उसने कहा इस प्रकार से हमें मड़ी प्राप्त हुई है और किसी संत ने दी है, और जो है उससे हम सुवर्ण बनाएंगे। अब जब ये बात कही तो उसके मन में लोभ आ गया। उसने कहा तू हमारा मित्र है, तू लोहे की याचना क्या करता, तुझे लोहा हम वैसे ही दे देंगे, लेकिन हमको इसमें संदेह लग रहा, हमको इसमें संशय लग रहा है, ये ऐसा संभव हो सकता नहीं। ऐसा कर, इसका परीक्षण करके हम देखते हैं, तू उस मड़ी को मेरे पास लिया और हम उसका प्रयोग करके देखते हैं, यदि मड़ी सही होगी तो हम तुझे लोहा दे देंगे, चिंता मत कर। लेकिन ऐसा संभव नहीं, कोई नकली ही तुझे मड़ी दे गया हो। वो सरल था, उसने लाके मड़ी उसको दे दी। जब मड़ी उसको दे दी, उसने उस मड़ी को रख लिया, कहा देख अभी दिन का समय है, अभी हमारा व्यापार चल रहा है, हम रात्रि में अच्छी तरह से बैठ करके इसका प्रयोग करेंगे, तू कल मेरे पास आना। उसने मड़ी को रख लिया, सर्राफे से जाकर के वैसी ही दूसरी मड़ी उसने बनवा ली। दूसरे दिन जब वो आया तो उसने मड़ी लोहे पर पटक पटक करके उससे कहा कि देख ये मड़ी तो जो है नकली है, मैंने तो कहा था तेरे से। और जब इस प्रकार से उसने कहा तो बेचारा चुप वापस आ गया। एक वर्ष के बाद संत पुनः आए, देखा तो उसकी वही स्थिति। जब देखा कि उसकी वही स्थिति है तो संत ने उससे पूछा कि भाई तूने मड़ी का प्रयोग नहीं किया। उसने सारी कहानी सुना दी कि इस प्रकार से हमारा मित्र था तो वो मड़ी जो है नकली निकल गई। महात्मा समझते थे, महात्मा समझ गए कि इस बेचारे के साथ उसने दुराव किया है, इसलिए महात्मा ने कहा चलो ठीक है। दूसरी बार महात्मा जी गए तो उन्हें कहीं हीरा प्राप्त हो गया और हीरा ला करके उसे दे दिया और कहा तू अब इसको बेच करके और संयमित रहना और अपना जीवन निर्वाह करना। ये जब किया तो क्या हुआ, हीरा लेकर के वो जौहरी के पास गया। जौहरी ने देखा जिसके पास सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करने की सामर्थ्य नहीं है और उसके पास ये हीरा, ये तो असंभव सा लग रहा, इसका मतलब है इसने कहीं से ये हीरा चुराया है। उसने जो है शिकायत कर दी, और जब शिकायत कर दी तो उसको बेचारे को जेल में डाल दिया गया और हीरा भी उसका ले लिया गया। अब वो जेल में पड़ा। एक वर्ष के बाद वो संत आए, उन्होंने लोगों से पूछा कि भाई वो अमुक व्यक्ति कहां, तो लोगों ने कहा महाराज वो तो जेल में है। अब जब इस प्रकार से कहा तो महात्मा जो है उसके पास जेल में पहुंचे और जब जेल में पहुंचे तो मिलाई करने के लिए जब वहां के कर्मचारियों ने कहा कि महात्मा जी मिलने आए, उसने कहा कह देना बस अब कृपा बहुत है, अब प्रसाद बहुत हो गया, अब आगे नहीं चाहिए। महात्मा जी ने कहा कि उससे कहो कि हम उसे कुछ देंगे नहीं, केवल हम मिलना चाहते हैं उससे। उसने कहा चलो इसने में तो कोई बात नहीं, मिले। महात्मा ने कहा अब हम तुझे कुछ दे नहीं रहे, लेकिन तू यहां जेल में रहेगा, तेरे लिए और कोई साधन है नहीं, इसलिए हम तुझे इसके लिए उपाय देते हैं, इसको मंत्र देते हैं, इस मंत्र को तू गुनगुनाता रहना। उसने कहा चलो इसमें क्या हर्ज है। तो महात्मा ने जो है पंचाक्षर मंत्र उसे दे दिया और वो उस जेल में उस मंत्र को गुनगुनाता रहा। कुछ काल बीतने के बाद जब जो है उसकी पेशी हुई, पेशी होने पर उससे पूछा गया कि तुमने चोरी क्यों की, कैसे की, ये सारे प्रश्न किए गए। जब सारे प्रश्न किए गए तो अब जो है उसने बतलाया कि भाई चोरी तो मैंने की है, लेकिन ये हीरे की चोरी ही नहीं की, हमने इससे पहले भी चोरी की। जैसे चोर फिर सब बतलाने लगते, उसने भी बतलाया, कहा वो किसकी चोरी, कहा कि मड़ी की चोरी की। कहां है वो मड़ी, कहा वो मेरे मित्र के पास है, हमने दोनों ने उसकी चोरी की है, वो मित्र के पास है, तुम जाओ और उस मड़ी को और उस मित्र को ले आओ, फिर हम हीरे की चोरी बतलाएं। कर्मचारी गए उसके यहां छापा मारा तो मड़ी मिल गई, मड़ी को लेकर के और उसको लेकर के आ गए। फिर कहा बतलाओ हीरे की चोरी कैसे। उसने कहा कि भाई हीरे की चोरी के विषय में पूछते हो तो इससे पहले आप ये करो, आप अपने वही खातों को देखो और वही खातों को देखो कि चोरी जब नहीं हुई थी तब आपके खजाने में कितने हीरे थे, उनकी संख्या कितनी थी, चोरी हो जाने पर उसमें कितनी न्यूनता आई, कितनी कमी आई, और चोरी का हीरा वापस आ गया तो उसमें वृद्धि हुई कि पूर्णता हुई, क्या हुआ, ये जो है आप अपना लेखा जोखा पहले देख करके और मुझे बतलाओ, फिर हम सत्य सत्य बतलाएंगे। कहा ठीक। कर्मचारियों को ऑर्डर दिया गया, उन्होंने सारे वही खाते देखे, अब वहां कोई चोरी तो हुई नहीं थी, चोरी हुई होती तो देखा तो जितने हीरे पहले थे, चोरी होने की जो कल्पना की गई थी तब भी उतने ही हीरे, और जब हीरा एक आ गया तो क्या हुआ, तो कहे वृद्धि हुई, वो एक बढ़ती ही हुआ। अब उनको सबको आश्चर्य हुआ, आश्चर्य हुआ, कहा ये क्या राज है। तो उसने कहा इस राज को यदि जानना चाहते हो तो सुनो, राज ये है कि हमारे ऊपर एक संत का प्रसाद हुआ, संत की कृपा हुई, आचार्य की कृपा हुई, और आचार्य की कृपा हुई तो आचार्य ने मुझे मणि प्रदान की। मणि का मैं प्रयोग करना चाहता था, लेकिन ये जो मेरा मित्र है, इस मित्र ने ही क्या किया, कहा हमारे साथ कपट किया, तो वो तो ये मणि है। हीरे की बात है, दोबारा जो उन्होंने प्रसाद स्वरूप हमें हीरा दिया, वो हीरा हम जब जौहरी के पास ले गए तो उसने आपको शिकायत कर दी, आपने मुझे जेल में डाल दिया, और जब ये कहा तो क्या किया, सत्यता को समझ लिया, और जब सत्यता को समझ लिया तो मणि भी उसको दे दी, हीरा भी उसे दे दिया, उस जौहरी और उस लोहार दोनों को का जेल में डाल दिया और उसे पुरस्कृत भी कर दिया। ये तो है दृष्टांत। इस दृष्टांत का तात्पर्य क्या, तो एक तो तात्पर्य अभी 61 में भी आप सुन रहे थे, नाम की क्या महिमा होती, जपास सिद्धिर जपास सिद्धिर जपास सिद्धिर भवत्येव, क्या होता है, जप से सिद्धि, जप से सिद्धि, जप से सिद्धि होती ही और भगवान कृष्ण गीता में क्या कहते, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। यज्ञों में जो जप नाम का यज्ञ है वो मैं हूं। ये संकेत किया। अब ये जब संकेत किया तो इसका क्या तात्पर्य निकला? इसका तात्पर्य ये निकला कि यह जो जीव है, और जीव जो है इसकी पूर्ति कभी होती नहीं। इस जीव की पूर्ति कभी क्यों नहीं पूर्ति होती? क्योंकि जिस अक्षुण सुख को ये चाहता है वो अक्षुण सुख से मिल पाता नहीं। क्यों नहीं मिल पाता है? तो संकेत किया, क्योंकि जिससे वह सुख चाहता है वो पदार्थ सुख देने में समर्थ नहीं। माने अन्यथा उसने सुख को समझ रखा है, ये असत्ता है, असत को ग्रहण करना। अब क्या करता है कि जब उस पर कृपा होती है, उसे प्रसाद मिलता है, और प्रसाद मिलता है तो उसे क्या दिया जाता? कहा मणि दी जाती। और मणि क्या है? तो यही तो सारे शास्त्र युक्ति उसे क्या बतलाते हैं, आत्मा जो है वो क्या है? कहा सत्य है। ब्रह्म जो है वो सत्य है, और तत्त्वमसि तुम भी वही हो, ये कहा तो जाता। और इसको कभी कभी हम ग्रहण भी कर लेते हैं, लेकिन वहीं पर जब इसे हम ग्रहण करते हैं तो उस बुद्धि के साथ में ही मन भी बैठा, और वहीं पर संशय आदि हो जाता है। मन का स्वभाव है चंचल्य, और वो तो जो है अपने संकल्प विकल्प सृष्टि करने में लगा। तो लोहार भी क्या करता है? लोहार का भी यही काम। तो इसलिए जो है मन लोहार की तरह से उस बुद्धि को क्या कर देता, उस बुद्धि में आया हुआ जो निर्णय युक्त पूर्वक उसने ग्रहण किया है उसको वो स्वयं ग्रहण कर लेता, स्वयं छिपा लेता। और जब छिपा लेता है तो उसके द्वारा बुद्धि फिर वैसी की वैसी, फिर असद की स्थिति रहती, फिर वह दुखों को उठाती रहती। अब जो है फिर कृपा होती है तो उसे हीरा दे दिया जाता। अब हीरा दे दिया जाता है, लेकिन हीरे को लेकर के भी वह क्या करता, जौहरी के पास जाता है तो जौहरी भी उसको है? और फिर वो पुनः जो है बेचारा जेल में ही पड़ जाता है। इसका मतलब क्या? इसलिए एक थोड़ा सा श्लोक भर्तरी ने लिखा, स्थाल्याम वैदूर मैयाम पचत च लसुनम ही ननैश्चंदनोत्थई सौ वर्णई लांगलाग्रैर बिलखति वसुधाम अर्कमूलस्य हेतो चित्वा कर्पूर खंडान वृत्तिमीह कुरते को द्रवाणम समन्तात् प्राप्यमाम कर्म भूमिम न चरति मनुजः यस्तपो मंद भाग्या। ये संकेत किया, स्थाल्याम वैदूर्यमय्या का कवहू की कर करुणा नर देही। क्या है? कभी उस करुणा के कारण परमात्मा की प्रसन्नता के कारण उसकी कृपा होती है तो क्या देता? स्थाल्याम, स्थाली दे दी। और कैसी स्थाली दे दी? कहा वैदूर्यमय्या, हीरे जवाहर से निर्मित कहना, जैसे हीरे जवाहर की कीमत है ऐसी कीमती वस्तु से निर्मित उसे जो है ऐसी स्थाली दे दी। स्थाली का मतलब पात्र है। और स्थाली में क्या करते हो? तो संस्कृत में स्थाली कहते, हम लोग उसे बटलोई कहते थे पहले, हैं बटुआ कहते, भगोना कहते। जो भोजन पकाने का साधन है उसको हम क्या कहते हैं? स्थाली। और जो भोजन पकाते हो तो भोजन ग्रहण करते हो, उस भोजन का ग्रहण करने से क्या होता? पुष्टि मिलती, आप पुष्ट होते। यहां पर संकेत किया, स्थाल्याम वैदूर्यमय्याम, स्थाली दी उसने कृपा करके। क्या दे दी? कहा हीरे जवाहर से निर्मित है ऐसी कीमती थाली हमें प्रदान कर दी। किस लिए प्रदान की? कहने लगे जैसे हम बढ़िया सुपाच्य है पौष्टिक रसपूर्ण सात्विक उसमें भोजन पकाएं और अपने स्वास्थ्य को बढ़िया बनाएं, इसके लिए। लेकिन थाली तो मिल गई और हम उसका प्रयोग भी कर रहे, लेकिन प्रयोग कैसा हो रहा? तो भर्तहरि ने बड़ी सुंदर बात लिखी, स्थाल्याम वैदुर्यमयम पचत च लसुनम। थाली तो मिली है बढ़िया खीर पनीर की सब्जी बनाने के लिए, उसमें बनाए, लेकिन हम पका क्या रहे? कहा लहसुन पका रहे। जो सुंदर पात्र मिला उस सुंदर पात्र के अंतर्गत हमें बढ़िया जो है सुंदर वस्तु परफा करते हुए और अपने को पुष्ट करना चाहिए, लेकिन हम क्या पका रहे हैं उसमें? तो कहने लगे लहसुनम पचत इस लहसुनम। लेकिन पकाने के समय क्या करते हो? पकेगा ऐसे ही नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ता? अग्नि प्रज्वलित करनी पड़ती, और अग्नि प्रज्वलित करने के लिए क्या चाहिए? ईंधन चाहिए। बगैर ईंधन के, बगैर साधन के कभी अग्नि प्रज्वलित नहीं होती, तो उसके लिए कोई ना कोई साधन चाहिए। अब जो ईंधन है वो क्या है, कौन सा ईंधन उसमें प्रयोग कर रहे हो? तो क्या कहा? कहने लगे हींदनैश चंदनोत्थई। हम अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं, लहसुन पका रहे हैं, वैदुर्य की थाली में पका रहे हैं, और उसमें जो है जब पका रहे हैं तो उसमें अग्नि जो प्रज्वलित कर रहे हैं, तो अग्नि प्रज्वलित करने में कौन से साधन का प्रयोग कर रहे, कौन सा ईंधन लगा रहे? कहा चंदनोत्थई। सुंदर जो चंदन की लकड़ी, उसको हम उसके पकाने में लगा रहे। जिसको घिस करके मस्तिष्क में लगा लो तो सारी गर्मी शांत हो जाती, लेकिन उसे हम किस में कर रहे हैं प्रयोग? कहा लहसुन पकाने में उसे प्रयोग कर रहे हैं। उस चंदन का प्रयोग भी हम कहां कर रहे हैं अग्नि प्रज्वलित करके? कहा लहसुन को पकाने। और आगे संकेत किया
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू shivam.org रेडियोस 24/7 spiritual channels from shivam.org. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of shivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Umeshanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: श्वेताश्वतर उपनिषद के दूसरा अध्याय का सातवां मंत्र देखना।

तत्र योनिम् कृणवसि नहि ते पूर्तमक्षिपात्। ये मंत्र का अर्थ समझ में आए ना? सवित्रा प्रसवेन, सवित्रा परमात्मा अथवा सूर्य समझ लेना, प्रसव करने वाला को यानी प्रसवेन सविता माँ है अथवा सविता परमात्मा है, सवित्रा के द्वारा सारे संसार में अन्न उत्पन्न होता है, याद रखना। हाँ, सम्यक प्रस्ताहुति आदित्यम उपतिष्ठति, आदित्य जायते मेघ ततो वृष्टि ततो अन्नम ततो प्रजा। आदित्य में अग्नि में जो आहुतियां डाली जाती है ना, ये आहुतियां सीधा आदित्य में पहुंचता है, आदित्य से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होते हैं, इसीलिए आदित्य को क्या बोला? सवित्रा। सवित्रा तो सवित्रा देवता जो है ना, सविता देवता, सूर्य देवता, अथवा दूसरा अर्थ में इसमें परमात्मा लेना, सवित्रा देवता द्वारा हनी बात, जब हम उनको अनुज्ञा देते हैं ना, प्रार्थना करते हो, पहले मंत्र में आया, तो सवित्रा देवता से अनुज्ञात हो करके हमको क्या करना चाहिए? ब्रह्म पूर्वम पूर्वियम ब्रह्म सेव जुषेत सेवित, सनातन जो ब्रह्म है, चिरंतन जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म की सेवन करना चाहिए, सेवा करे। तत्र जोने किणवसे है, तत्र तत्र उस ब्रह्म में निष्ठा, जोने माने निष्ठा, जोने माने समाधि, हाँ तो वहां निष्ठा करनी चाहिए। अब वहां निष्ठा नहीं करे तो क्या होगा? ये विचार हुआ, पूछे आपने कहा तत्र योनि किणवसि, हाँ वहां जाने कुरुस्व, ये समझना किणवस माने कुरुस्व, ये विधि व्याख्या है, वहां क्या करना चाहिए? निष्ठा करना चाहिए। कहा? सनातन ब्रह्म में, जिस ब्रह्म को सेवन करने के लिए बोला है ना, उस ब्रह्म में निष्ठा करना चाहिए। अगर निष्ठा ना करने से तो क्या होगा? तो आगे बोलते हैं, नहीं ते पूर्तम अक्षिपत, पूर्तम अक्षिपत नहीं ते, यदि नहीं करोगे तो पूर्त कर्म तुमको विक्षिप्त करेगा, संसार के भोग में लगाएगा। मतलब कि आप ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, कर्मनिष्ठ नहीं होना चाहिए। तो दो प्रकार के कर्म बताया था, ख्याल है कि नहीं? एक पूर्त कर्म और इष्ट कर्म। यह पूर्त शब्द से इष्ट का समझ लेना, उपलक्षण समझ लेना, इष्ट विचार, स्रोत कर्म और स्मार्त कर्म, यानी बात स्रोत कर्म कहो, स्मार्त कर्म कहो, इष्ट कर्म कहो, पूर्त कर्म कहो। इष्टा पूर्ता मन्यमाना वरिष्ठम, वो उपनिषद में ना, मंडक उपनिषद में भी आया, हाँ इष्टा पूर्ता मन्यमाना वरिष्ठम, केवल इष्ट और कर्म को मानते हो तो तुम्हारा संसार से छुटकारा नहीं मिलने वाले। हाँ इष्टा पूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम, कुछ लोग इष्टा पूर्ता को मानते हैं, कौन? कर्मकांडी लोग, पूर्व मीमांसक, बस कर्म ही सब कुछ है, कर्म के पीछे कोई है नहीं, ब्रह्म ईश्वर को नहीं मानते हैं ना, ईश्वर को। हाँ तो पूर्तम अक्षिपत, पूर्त कर्म क्या करेगा? तुमको विक्षिप्त बनाएगा, अर्थात कर्म संसार में लगाएगा। पूर्त कर्म क्या समझते है ना? हाँ पूर्ति करने के लिए जो कर्म किया जाए, अभाव के पूर्ति करने के लिए जो कर्म किया जाए, या तालाब बनाओ, बगीचा बनाओ, अन्य नाना नानी के पार्क बनाओ, मंदिर बनाओ, तालाब खोदो, सड़क बनाओ, अन्न क्षेत्र खोलो, गौशाला खोलो, ये सब जो कर्म होते हैं ना सामाजिक, हाँ उसका नाम पूर्त कर्म। हाँ
विश्वकर्मा स्वर्ग कामो जजेता तुमको स्वर्ग जाना है तो जजन करो, ये विधि व्याख्या है। किम जजेत स्वर्ग कामो जजेत, किम जजेत अश्वमेधी न जजेत, अश्वमेध यज्ञ करो, सोम यज्ञ करो, भारत यज्ञ करो, है विश्वकर्म कूर्त कर्म वो इष्टकर्म राजा राजस्व ये न जजेत और समय देना जजेत। राजा लोग बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, कौन सा अश्वमेध यज्ञ आनी बात राजस्वीय यज्ञ सोम यज्ञ न श्याम यज्ञ नहीं, श्याम यज्ञ शत्रु मारने के लिए किया जाता है। हाँ, जो शत्रु होते हैं ना, शत्रु को मारने के लिए श्याम यज्ञ करो। ब्राह्मणा बृहस्पति सभी न जजेत, ब्राह्मणों को बृहस्पति जाग करना चाहिए, राजा को राजा से जाग करना चाहिए, अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए, हाँ सोम यज्ञ करना चाहिए, ऐसे अलग अलग है। तो राजा लोग करते बड़े बड़े यज्ञ, जैसे राम ने अश्व छोड़ा था कि नहीं, अश्व यज्ञ किया, फिर इसी प्रकार पांडवों ने छोड़ा था कि नहीं। हाँ, पहले पहले राजा लोग अश्व को छोड़ते थे, अश्व घूम करके आते तब यज्ञ करते थे, इससे पहले नहीं करते। इसी प्रकार राजा सगर जो है ना, राजा सगर ने छोड़ा था कि नहीं अश्व, जिसके पीछे 60,000 टिड्डी दल चला था, राजा सगर के 60,000 संतान थे वो। अभी कहते दो संतान, हम दो हमारे दो, ये क्या करेगा ये, काल दोनों मर गया तो रोना पड़ेगा कि नहीं रोना पड़ेगा। हाँ, अभी हमारे यहाँ अभी भी 16-16, 17-17 पुत्र को पालन पोषण करता है, तू एक के डर जाती है। हमारे यहाँ अभी दर्जन पुत्र पैदा करने वाला गांव में जाकर देखो जमींदारों को, तो जमींदार वगैरह तुम क्यों नहीं कर सकते हो, तो तुम नहीं कर सकते, तुम मत करो, जो करता है उसको करने दो ना। मैं तो कहता जिसको करना है करने दो ना, तुम क्यों रोकोगे, हाँ जिसको समर्थ है करेगा, क्यों नहीं। अब 8-8, 10-10 संतान तो अभी भी है, तो फिर वो नौकराई बात दूसरी है, नौकरी कौन देगा, अभी नौकरशाही में प्रवेश कर गया, पहले नौकरी नहीं करते थे, समझे क्या नहीं। आपने जमीन अभी क्यों बेच दिया सब, क्यों आ गए, खेती बाड़ी क्यों छोड़ दिया, आपने कमजोरी नहीं देखते हो तो दूसरा को कमजोरी आपने में आरोपित करते, सामर्थ्य होना चाहिए ना। अभी मुसलमान चला सकता है 10-10, 12-12, 5-5 बीवी, 100-100 बीवी, अब हिंदू क्यों नहीं करता है, हिंदू क्यों नहीं चला सकता, मुसलमान कैसे चलाता है अभी भी, उसका को 8-10 संतान होता है एक एक परिवार का। हमारे हिंदुस्तान में पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब हुआ 5 करोड़ मुसलमान थे, अभी 25 करोड़ कैसे हो गया, कैसे हो गया, क्या चार बीवी हो 50 बीवी होते ना। अभी भी अरब देश में एक एक मुसलमान का कोई जो है ना वो सौदागर मुसलमान 100-100 बीवियां रखते हैं। हाँ चलिए, तो कहने का मतलब समझे कि नहीं, कर्म जो है ना, कर्म बंधन का हेतु कौन सा, पूर्त कर्म। पूर्त कर्म क्या है, जो अभाव को पूर्ति करने के लिए, सामाजिक अभाव को पूर्ति करने के लिए जो किया जाता है,
अन्न सत्र खोलता है, धर्मशाला बनाता है, मंदिर बनाता है, सड़क बनाता है, कुआं बनाता है, प्याव बनाता है, ये सब बनाने वाला का कर्म का नाम पूर्त कर्म होता है। इष्ट माने बड़े बड़े यज्ञ है, राधा राधा सूर्य नजित अश्वमेध नजित जजन करना चाहिए। आई बात तो क्यों आप कौन सा कर्म कर रहे हैं? पुराणिक कर्म भी होते हैं ना, विष्णु यज्ञ, रुद्र यज्ञ, फलाना यज्ञ, ये भी तो यज्ञ है ना, ये भी कर्म करते हो। उसमें पीछे कामना क्या है आपकी? आप क्यों कर रहे हैं यज्ञ? आप क्यों कर यज्ञ कर रहे हैं? कोई ना कोई लक्ष्य होगा ना। हाँ, बिना लक्ष्य से कोई कर्म होता नहीं। बात लक्ष्य के बिना हाँ आजो कर्म करता क्या? शास्त्र में लिखता है ना, फलम अनुद्देश्य मंदो बिना प्रवर्तते। फल के उद्देश्य के बिना मंद बुद्धि वाला मनुष्य भी किसी कर्म के लिए प्रवृत्त नहीं होता है। आप यहाँ जा रहे, रास्ते में किसी बोला कहाँ जा रहे हो? बोले नहीं कहीं नहीं। तो जाता रहे हो, कहीं नहीं गया? नहीं, इसे थोड़ा काम है तो बोलना पड़ेगा कि नहीं? कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? मुझे जाना है। कहाँ जाना है? मंदिर जाना है। क्यों मंदिर जाना है? दर्शन करने के लिए जाना है। तो लक्ष्य बतलाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिना लक्ष्य से कुछ होता नहीं। तो यहाँ कहते हैं जो दोनों कर्म है, दृग दर्शन शक्ति और एकात्मता एवं अस्मिता। दृग का दर्शन, दृग कहते ज्ञान को, दर्शन कहते दृश्य को। आनी बात, ये दोनों के जो एकात्मता होती है उसको अस्मिता कहते हैं। जब तक अस्मिता नहीं होती है ना, तो कर्म नहीं होता है। याद रखना, अहम भाव पहले अपने में आरोपित करना पड़ता है। अहम करोमि, मैं करता हूं, ये आप हमने कहा तो आपने हमसे पूछा क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कब कर रहे हो, कई प्रश्न एक साथ आता है तो बतलाना पड़ता है। किं करोमि, कथम करोमि, कस्मात करोमि, किम उद्देश्य करोमि, ये सब बातें आती है। आनी बात, ये सब बातें आती हैं। तो इसीलिए अस्मिता के बिना, अहम के आरोप के बिना कोई कर्म कोई करता नहीं। क्यों? जागृत अवस्था में रहता है अस्मिता, स्वप्न अवस्था में भी रहती है अस्मिता। स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म अस्मिता है, जागृत में स्थूल अस्मिता है, और सुसुप्ति में अस्मिता नहीं रहती है। उस समय निर्लीन हो जाता है। उस अवस्था में तुम रहती हो कि नहीं रहती हो? रहते हो। तो उस अवस्था में तुम कोई कर्म करते हो, मैं इस कर्म का करता हूँ, ऐसे कर्मणा करता हूँ अस्मि, ऐसे कर्मणा फलम में स्यात, तो नहीं है। तो इसीलिए जब दृग दृश्य दोनों एक हो जाता है, सुसुप्ति अवस्था में दृश्य अलग हो जाता है और दृष्टा अलग हो जाता है, इसीलिए उस समय अहम भाव नहीं रहता। इसमें तो उस समय कोई भी कर्म, चाहे मानसिक कर्म हो, चाहे सांकल्पिक कर्म हो, आनी बात कोई कर्म नहीं होता है। तो देखो इसी के भाष्य चला था, कहां से? नहीं, आगे पहले श्लोक देखो। सभी जैसे ज्ञान अग्नि ना। हाँ, इसी का चला, नहीं ते पूर्त स्मार्त। देखो यहाँ से, नहीं ते पूर्त स्मार्त, पूर्त माने स्मार्त कर्म, इष्टम श्रोत्रम स, इष्ट कर्म श्रोत कर्म। हाँ, ये आक्षेपन न पुनर्भोग हेतु बदनाती, पुनर्भोग के लिए तुमको संसार में
बंधेगा नहीं, आज नहीं तो तुमको बंधेगा। क्यों? अहम भाव जब करोगे कोई भी कर्म के प्रति तो बंधन का हेतु होगा। कर्म में कर्तृत्व का अभिमान किए बिना कर्म नहीं होता, याद रखना। संकल्प करते हो कि नहीं, शून्य वंदना करते हो कि नहीं, शून्य वंदना में भी संकल्प होता है ना, अहम ऐसा करूंगा। ओ अद्वैतस्य ब्रह्मण द्वितीय परार्धे श्वेतवराह कल्पे, ब्रह्मण द्वितीय पर श्वेतवराह कल्पे भविष्यत् मन्वंतरे अष्टविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भारतवर्षे भरतखंडे जम्बू द्वितीय आर्यवर्त एक देशांतरगते प्रातः संध्या वंदनम करिष्ये अथवा अमुक स्मार्त कर्मम करिष्ये, मैं करता हूं ये संकल्प करते हो तो अहम के आरोप के बिना संकल्प होता नहीं, कोई कर्म नहीं होता। यानी वैसा श्रुत कर्म हो या स्मार्त कर्म हो, कर्तृत्व का आरोप करना पड़ेगा। यानी बात तो कर्तृत्व का जहां आरोप करोगे कर्म में तो कर्म बंधन का हेतु होगा। बिना संकल्प पे कर्म होता केवल निष्काम कर्म। यानी बात संकल्प नहीं किया जाए, कर्तृत्व अभिमान नहीं किया जाए। हाँ, तो जैसे श्री कृष्णाय परमात्मा ने आये काल पाठ किया कि नहीं, श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय दाय नमो नमः। परंतु यहाँ भी संकल्प है, हाँ नमस्कार, क्लेश को नाश करो। क्यों कर, क्यों नमस्कार कर रहे हो? हमारा क्लेश को नाश कर दीजिए। तो भगवान को क्लेश नाश के कर्ता बनाया कि नहीं बनाया? हाँ, तो क्लेश नाश करने के लिए बोलते हो कि नहीं बोलते हो? तो फिर हो गया और क्या। जब भगवान को बुलाया, हम आपको नमस्कार करते हैं, तो नमस्कार के बदले में क्या चाहते हो? हमारा दुखों का नाश करो, क्लेश का नाश करो। तो भगवान को क्या बनाया? भगवान को तो बनाया, हमारा काम कर दो। देखो तीन प्रकार के कर्ता होते हैं, एक सात्विक, एक राजसिक, एक तामसिक कर्ता। सात्विक कर्ता जो होते ना, कर्म करता है, यानी उसमें कर्तृत्व अभिमान नहीं करता। हमारा कर्तव्य है कर्म करना, फल देना ना देना मालिक क्या मर्जी है। तो कर्म करना हमारा कर्तव्य है, फल का उद्देश्य हमारा नहीं है। कर्म करते चलो, कर्म करते चलो। आने बात फल मिले सा ना मिले, फल के उद्देश्य से हम कर्म नहीं करते। आनी बात जैसे गीता में बतलाया ना, अठारहवां अध्याय में सात्विक कर्ता, राजसिक कर्ता, तामसिक कर्ता, तीन प्रकार के है। सात्विक कर्ता को मांगता नहीं, राजसिक कर्ता कहते हैं राजगुण प्रधान जो कर्ता होते हैं, वो कहते हैं फल हमको फल चाहिए। क्या फल लिए बिना हम कर्म करेंगे नहीं, फल छोड़ेंगे नहीं। कर्म करेंगे फल छोड़ेंगे नहीं, फल तो चाहिए, फल देना पड़ेगा। तुम हमारा क्लेश नाश करना तुमको पड़ेगा, हमारा दुख नाश करना पड़ेगा, हमारा हमको एक बेटा देना पड़ेगा। हम तुम्हारे जप करते इतना दिन से, पुत्र से यज्ञ करते करते करते करते पुत्रम दे पुत्रम दे पुत्रम दे करते करते मुंह सूख गया है, हमको पुत्र देना पड़ेगा। समझ गए नहीं? हमारा अमुक रोग विनाश करना पड़ेगा, हमारे अमुक बीमारी को दूर करना पड़ेगा। महाराज करते करते इतना दिन हो गया, पहले रोग में कोई बीमारी में कोई फर्क नहीं पड़ा है, जब करते करते अंगुली में कड़ा पड़ गया परंतु कुछ हुआ नहीं, तो क्या करेंगे? तो राजसिक जप करने वाला भक्त, राजसिक कर्म करने वाला कर्ता, ये जो फल बिना फल चाहिए उनको, फल लेना पड़ा।
तामस से करता करता पहले फल मिलेगा तब कर्म करूंगा, पहले दो मेरे को, देखूंगा तुम है कि नहीं, तुम कितना दे सकते हो। फल दो फिर भजन करेंगे, फल दो पहले, करते हो कि नहीं करते हो? तो ये तामसिक करता है, फल लिए बिना तुम्हारा सेवा हम नहीं करेंगे, हमारे घर में इतना 1000 रुपया भेज दो, हमारा घर बनाएगा, हम तुम्हारे यहाँ कर्म करेंगे। तो कहने का मतलब संसार में कर्म करते हैं, कर्म करने का सबका उद्देश्य, सबका लक्ष्य, सबका तरीका अलग अलग है, एक सा नहीं होते हैं। अगली बात, ऐसे पूर्त कर्म करते हैं, एक आदमी करते रहे, हाँ धर्मशाला बनाया, ईंट लगाया, पत्थर लगाया, ऐसे लगे ना पत्थर लगाते कि नहीं, हरिद्वार में जाओ आश्रम में कितने पत्थर लगाया, कितना हर रूम में पत्थर है, हर रूम में पत्थर है। आने बात, कोई एक जो है ना सज्जन जो है ना खूब रूम बनाया, पत्थर बनाया, ईंट लगाया, मंदिर बनाया, सब कुछ किया, हाँ तो महात्मा के आदेश से बनाया, तो सज्जन मर गया, तो सज्जन मरने के बाद में महात्मा भी मर गया थोड़ा दिन बाद में, क्यों, सबका वेश अलग अलग है, समझना, सबका जन्म का भी वेश अलग अलग है और मरने का भी वेश अलग अलग है, एक वेश आया दूसरा वेश गया, एक वेश गया दूसरा वेश आया, कहते ना हमारे घर में बाबा आया, बेबी आया, फलाना आया, तुम्हारे जाने की तैयारी करना पड़ेगा, जगह खाली कौन करेगा, तुम जाओगे तब ना जगह खाली होगा उसके रहने का है? तो महात्मा कालांतर में महात्मा भी मिल गया, मर गया, तो महात्मा को ले गया स्वर्ग की तरफ है? तो महात्मा ने कहा मैं जाऊंगा, पहले हमारा एक जजमान मरा है, बड़ा दाता था, बड़ा पुण्यात्मा था, बड़ा फलाना था, बहुत बावड़ी बनाया, फलाना बनाया, ईंट लगाया, पत्थर लगाया, धर्मशाला बनाया, उसको मेरा देख कर लो चलो स्वर्ग में। बोले नाम क्या है उसका? बोले फलाना। प्लीज नाम का तो यहाँ स्वर्ग में कोई आया नहीं, क्या कहते हो, इतना दान करने वाला यहाँ नहीं आया, तो कहाँ गया, देखेंगे पता नहीं, जाओ नरक में देखो। तो नरक में गया देखने के लिए, तो वहां देखता पूछता है ये अमुक व्यक्ति आया? बोले हाँ आया तो है। कहाँ है? नरक के अमुक नाम के नरक में जाए। वो कैसे आया यहाँ, इतना दान करने वाला यहाँ आया, इतना परोपकार करने वाला यहाँ आया? बड़ा आश्चर्य में पड़ गया, धर्मराज से पूछा, चित्रगुप्त से पूछा, बोले सब कुछ किया है, बोले उसने हर एक ईंट के साथ अहम को जोड़ रखा है, हर एक ईंट जो है ना, ये ईंट लगा रहा हूं, पत्थर लगा रहा हूं, ईंट लगा रहा हूं, पत्थर लगा रहा हूं, ये मेरा है, ये मेरा है, इसीलिए उसको जो है ना वो दान किसी काम का, इसीलिए जहां भी सत्कर्म होते हैं सत्क्रिया होती है, अहम भाव को जोड़ो नहीं कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ऐसा शास्त्रकारों का कथन है। तो पूर्त कर्म में हमेशा अहम भाव जोड़ा रहता है, इष्ट कर्म में तो है, पर इष्ट कर्म करने वाला जो स्वर्ग में जाता है, स्वर्ग कामो जजे तो वो तो स्वर्ग जाने है तो जजन करेगा, स्वर्ग जाने का है वो जानता है, स्वर्ग जाने वाला समझ गए नहीं, स्वर्ग जाने वाला जो होते है ना, इस मर्तव्य में इस शरीर में इसकी आसक्ति नहीं होती है, तो स्वर्ग जाने के लिए कर्म करते है ना, इसकी आसक्ति नहीं होती, वो जानता मरने के बाद ही हमको स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग कब मिलेगा, मरने के बाद मिलेगा, है नहीं बात, इसीलिए देहात्म भाव उसको नहीं रहता है, उसको रहता है जीवात्म भाव, मैं जीव हूं, करता हूं, भोगता हूं, स्वर्ग नरक आदि में आने जाने वाला जीवात्मा है,
तो स्वर्ग में जाने के लिए जो कर्म करेगा वो देह में अहम भाव जोड़ेगा नहीं, तो देह में अहम भाव जोड़ करके कर्म करेगा नहीं, तो किस में करेगा अहम भाव? जीव भाव में। जीव भाव में क्यों? जीव ही जाएगा स्वर्ग में, नरक में, स्वर्ग में कौन जाता है? जाता तो है, फिर वो देहात्म भाव वाला कहाँ जाएगा? देह में तो आत्मभाव किया, उसको तो मुक्ति हुई ना। देव हम, देव हम, देव हम, देव हम, पूर्त कर्म ज्यादा करेगा। देव हम, देव हम, मैं कर रहा हूं, यही कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं का। इसीलिए गीता के 16वां अध्याय में शायद भगवान या भगवान ने कहा, देखो आसुरी संपत् इदमद्य मया लब्धम इदम प्राप्से मनोरथम इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम असो मया हत शत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरहम अहम भोगी यद्वम बलवान सुखी अद्य वजन अद्य अभिजनवानोस्मि कोई नस्ते सदृश मया। यह अहंकार है, जक्षे दक्षे मनुष्ये सब मैं कर रहा हूं। इत्यज्ञानाभिमहिता एताम दृष्टिम अवश्य नष्ट आत्मन अल्प बुद्ध है। ये दृष्टि को लेकर के नष्ट हो गया, समझे गए नहीं? ऐसा हाँ चलिए। नहीं इति नहीं ते पूर्त स्मार्त कर्म इष्ट श्रोत्रम स कर्म अक्षिफन न पुनर्भोग हेतुर्बद्धाति। उसको नहीं बांधता है कौन? किसको नहीं बांधता है? पूर्व्याम ब्रह्म निष्ठाम, ब्रह्म में जो निष्ठा है उसको नहीं बांधेगा, याद रखना। तत्र जोनेम कृणवा से, तत्र उस ब्रह्म में जिसने निष्ठा किया है, समाधि लगाया, ध्यान लगाया, उसको ये बांधेगा नहीं। पुनर्भोग हेतु और बदना दे ज्ञान अग्नि न सविशेष दग्धत्वात्। क्यों नहीं बंधेगा? क्या हेतु दे रहा है? याद रखना, कारण क्या है? कहते ज्ञान अग्नि न, ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुति अर्जुन। ज्ञान रूपी अग्नि जो है ना, इसके सब कर्म को, अभी यहाँ सब कर्म से इष्ट कर्म, अश्रोत कर्म, स्मार्त कर्म, पूर्त कर्म, इष्ट कर्म दोनों समझना। यूं नहीं समझना कि एक कर्म को जला दिया, पूर्त कर्म को जला दिया, इष्ट कर्म रहेगी, ऐसा नहीं समझना। पूरा इनका अग्नि का काम जलाना है। जैसे हवी अग्नि में, अग्नि जलाते कि ना, हवी डालने के लिए, तो तुमने अग्नि जलाया, तो अग्नि में तुम उसे कच्चा लकड़ी डालो, पक्का लकड़ी डालो, आहुति डालो, अज्ञ डालो, कुछ भी डालो, अग्नि का काम है दग्ध करना, स्वाहा करना। अग्नि स्वाहा कर डालते हो तो डाला, तो अग्नि का काम जलाना। ये नहीं कच्चा है, ये नहीं पक्का है, ये नहीं देखेगा। ठीक इसी प्रकार कहते हैं ज्ञान रूपी जो अग्नि है, तो ज्ञान रूपी अग्नि क्या करेगा? सर्वकर्माणि, ऐसा नहीं समझना। सर्वकर्माणि का मतलब होता है तुम्हारा संचित कर्म, क्रियमान कर्म, प्रारब्ध कर्म, आगामी कर्म, सब कर्म को नाश करेगा। ये नहीं कि अभी प्रारब्ध कर्म तो भोग से नाश हो जाएगा, तो तुम सोचते होंगे कि प्रारब्ध कर्म जब भोग से नाश होगा तो हमारी मुक्ति हो जानी चाहिए ना, कर्म नाश हो जाएगा, हमने भोग के समाप्त कर दिया कर्म, फिर मुक्ति हो जानी चाहिए ना। तो तुम्हारे इस कर्म का नहीं, अनंत जन्मों का संचित कर्म पड़ा हुआ है, एक जन्म का नहीं, याद रखना, अनंत जन्मों का। क्यों? जब से सृष्टि कब से है, अभी अभी वो उसमें आते हैं ना, 5 करोड़ 10 करोड़ पहले का जीविका चिन्ह मिलता है अभी हिस्टोरिकल चैनल में, कब 10 करोड़ पहले का ये चिन्ह है,
तो इन लोगों का तो खोज कर रहा है कि नहीं हो रहा है। हम लोग तो कहे 5000 बरस हुआ महाभारत हुआ, परंतु तो द्वापर हुआ कि नहीं हुआ, द्वापर फिर त्रेता गया कि नहीं, सत्य गया कि नहीं, फिर युग का पुनरावृत्ति हुआ कि नहीं हुआ। तो जब होगा तो वैज्ञानिक लोग जो खोज कर रहा है इन लोगों को सब पता चल जाता है, अवशेष देख करके, ये 5 करोड़ वर्ष पहले का प्राणी है, 10 करोड़ वर्ष पहले का पानी, हम तो 5000 की बात नहीं करते। वैज्ञानिक लोग तो खोजते हैं ना, देख लेना कभी कभी आप वो चैनल हिस्टोरिकल, और एक है दूसरा है डिस्कवरी, हाँ देख लेना, इससे बहुत ज्ञान बढ़ता है हमारे सृष्टि के क्रम में, सृष्टि के लिए बहुत कम बढ़ता है। अब उस समय वो महाभारत के समय क्या जो है ना, वो या पांडव लोग जो है ना वो गया था ना अश्वमेध यज्ञ के समय में दिग्विजय करने के लिए, तो मणिपुर गया था, मणिपुर में मणिपुर राजा के कन्या के साथ अर्जुन की शादी हुई थी ना, उर्वशी, हाँ वहां जो कन्या जो है ना उसके प्रेम करते थे ना अर्जुन से, तो शादी किया। वो मणिपुर के राजा के उसमें ये संग्रहालय में कहते वो बब्रू वाहन का तलवार आई हुई है, इतना लंबा थोड़ा करे, 4-5 हाथ लंबा था थोड़ा, और उसका शरीर कितना रहा, सत्य युग के आदमी 21 हाथ लंबा होते थे, त्रेता युग के 14 हाथ हो गया, द्वापर में 7 हाथ हो गया, कली युग में 3.5 हाथ हो गया, धीरे धीरे आगे और भी कम हो जाएगा, 1 बीटा तक आएगा, देखिए ना 52 अवतार तो ठीक है, 52 अवतार भी हमसे बड़ा था, 52 अवतार भी आपसे और हमारे जैसे थे गया, क्या फिर उसके हाथ के हिसाब से है ना 52 अवतार, आपके हाथ से आप 3.5 हाथ किए है, हमारे हाथ से हम 3.5 हाथ किए है, उनके हाथ से 3.5 हाथ किए, आप एक पंजाबी है, काबुली है, अफगानिस्तानी है, मुसलमान है, इतना लंबा चौड़ा है, उनको तुम 3.5 हाथ से मारो है, तुम्हारे हाथ भोड़ेगा भूसा, उनके हाथ से वो 3.5 हाथ है अपने हाथ से, हमारे हाथ से देखेगा तो उठा कर। एक बार मैं जलंधर में रहा, स्टेशन में खड़ा रहा, गाड़ी पकड़ने के लिए आया, अभी वो 2-4 भैया जो है ना गाड़ी में चढ़ गया, उसमें एक आया पंजाबी जाट, ऐसे उठा करके फेंक दिया ऐसे फुटबॉल के जैसे, सारे मैंने कहा देखा इसके सामने क्या, दरवाजा खाली कर दिया उसने सबको फेंक करके, मुझे दृश्य अभी तक याद है, समझे कि नहीं, वो जाट आदमी इतना तगड़ा होते हैं वहां के पंजाबी जाट, सीख देखे ना सीखना से सरदार कितने सारे, उसका तुम 3.5 हाथ से माफ हो गए, 52 अवतार है आप लोग सब। हाँ चलिए, हाँ चलो आज तो देर से चालू किया है, ज्ञान अग्नि सविशिष्य दग्धत्वा, सविश माने बीज के साथ, बीज का कर्म का बीज क्या है, कर्म बीज वासना, समझे कि नहीं, कर्म बीज वासना, वासना के साथ, अविद्या के साथ, अज्ञान के साथ, हाँ सब कर्म को धारा करके भस्म कर देता, उत्तम स काल करना।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: ओम शिवाय नमः। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल म्यूजिक। In this, you are about to listen Shiva Stotiram. The title is Shiva Ayukta Namavali, presented by Kanu Ramaswamy. Thank you. Om Namah Shivaya.

रधारयत। प्रजापातिष्ट्वा सादयतु पृष्ठे पृथिव्या ज्योतिष्मती विश्वस्मै प्राणाय आपानाय व्यानाय विश्वं ज्योतिर्यच्छ अग्निष्टे।

ృంధ్రాసౌమే చాయుర్నిర్జిషేర్ నిర్జిషైనం వర్ణ

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।

ఏకమేవాదేవ్యమచ్చాకపాలపతి అగ్నిమేవాదేకమంతర్గస్ చే

0: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Brahmasutra Srikanda Bhashyam, presented by K.S. Mageshwaran Nambudiri.
1: ओम नमो अहम पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने
2: अतः केवल अध्ययनानन्तरं ब्रह्मविचारः इति चेत् भवतु नाम तादृशम् अध्ययनं तदनन्तरं तु धर्मविचारः तस्य तदसिद्धौ सिद्ध्यभावः
3: अथ इत्यस्य आनन्तर्यमर्थः कस्मादनन्तरम् इत्युक्ते अध्ययनानन्तरं वेदाध्ययनानन्तरम् इति भवतु वा इत्युक्ते भवतु वेदाध्ययनं तु अपेक्षते शाङ्करभाष्ये किमस्ति वेदाध्ययनानन्तर्यं तु समानम् इत्युक्तं समानम् इत्युक्ते तत्तु अपेक्षते साधारणकारणमिति असाधारणं कारणं किम् इति वक्तव्यं तत्तु वेदाध्ययनं न वेदाध्ययनं तु अपेक्षते नापेक्षते इति न परन्तु तावन्मात्रेण न पर्याप्तम् इति उक्तम्
2: आचार्यैः प्रतिपादितम् अथा तु धर्मजिज्ञासा इति तथा च आचार्यैः प्रतिपादितम् अथा तु धर्मजिज्ञासा इति प्रथमतः उपाध्यायात् अध्ययनानन्तरं धर्मविचारप्राप्तिरिति विचारः उच्यते
3: तत्र तदनन्तरं किमुक्तं भवतु नाम तादृशम् अध्ययनं तादृशं यादृशम् अध्ययनम् उक्तं तद् भवतु नाम तदनन्तरं तु धर्मविचारः वेदाध्ययनानन्तरं साक्षात् किं भवति इत्युक्ते धर्मविचारः भवति धर्मविचारो नाम पूर्वमीमांसा अध्ययनमित्येव तस्य तदसिद्धौ सिद्ध्यभावात् तस्य धर्मविचारस्य तदसिद्धौ वेदाध्ययन असिद्धौ वेदाध्ययनं विना सिद्धिरेव न भवति तत्र जैमिनिना तथैव उक्तम् अथातो धर्मजिज्ञासा इत्यत्र अथशब्दः वेदाध्ययनानन्तर्यं वदति अथशब्दस्तु वेदाध्ययनानन्तरम् इत्यर्थे तादृशीं किं धर्मजिज्ञासां पुरस्कृत्य अथशब्दं प्रयुक्तवान् आचार्यः या वेदाध्ययनमन्तरा न भवति इति भाष्यं तत्र शाबरभाष्यं तस्य तद् असिद्धौ सिद्ध्यभावात् इत्युक्ते तद् असाधारणकारणं तत्र इति ज्ञायते तथा आचार्यैः तत्र जैमिनिना प्रतिपादितम् इति प्रथमतः इति अन्यस्मिन् वाक्ये प्रथमतः उपाध्यायात् उपाध्यायस्य सकाशात् अध्ययनं कृत्वा धर्मविचारः प्राप्तः साक्षात् कर्तव्यत्वेन स एव प्राप्तः किमनन्तरम् अस्य आरम्भः अस्य ब्रह्मविचारस्य किमनन्तरम् आरम्भः तदुच्यताम् धर्मविचारानन्तरम् आरम्भः कथम्
2: न वयम् धर्मब्रह्मविचाररूपयोः शास्त्रयोः अत्यन्तभेदवादिनः एकत्ववादिनः
3: तदेव इदानीम् अपेक्षते न वयम् धर्मब्रह्मविचाररूपयोः शास्त्रयोः अत्यन्तभेदवादिनो न अद्वैतिनस्तु भेदवादिनः धर्मविचारशास्त्रम् अन्यत् ब्रह्मविचारशास्त्रमन्यत् शास्त्रैक्यं न अङ्गीक्रियते अद्वैतिभिः नाङ्गीक्रियते रामानुजैरपि अङ्गीक्रियते शास्त्रैक्यम् अङ्गीक्रियते एतैरपि अङ्गीक्रियते धर्मब्रह्मविचाररूपयोः शास्त्रयोः अत्यन्तभेदवादिनः वयं न किन्तु एकत्ववादिनः अत्र किञ्चित् व्याख्यानं पठामि ननु धर्मब्रह्मविचारयोः ब्रह्मैकपर्यवसायित्वेन ऐकशास्त्र्यं मध्ये तदा अग्रे सः अन्यः विषयः ततः पूर्वम् उत्तरमाह धर्मविचारानन्तरम् इति ननु धर्मविचारानन्तरं ब्रह्मविचारः इत्युक्तं धर्मब्रह्मविचारयोः पौर्वापर्यहेतुं हेतुसम्बन्धाभावादिति पृच्छति कथम् इति धर्मब्रह्मविचारयोर्वेदरूप एकग्रन्थव्याख्यानत्वेन एकशास्त्रत्वा व्याख्येये वेदे धर्मब्रह्मभागयोः पौर्वापर्यमेव तत्पौर्वापर्यहेतुसम्बन्धः अभिप्रेत्य उत्तरमाह न वयमिति अर्थः अवगतो वा किमवगतम् इत्युक्ते अस्य प्रश्नस्य उत्तरम् अनेन लब्धव्यं धर्मविचारानन्तरमेव ब्रह्मविचारः इत्युक्तम् आचार्यैः तत्र किं कारणं कुतः इति पृष्टे न वयं द्वयोशास्त्रयोः भेदवादिनः किन्तु अभेदवादिनः इति समाधानम् अनेन किं समाधानम् आगतम् इत्युक्ते इदमेव वदन्ति पौर्वापर्येको हेतुः धर्मविचार अनन्तरं ब्रह्मविचारः इत्यस्मिन् पौर्वापर्येको हेतुः इत्युक्ते एकस्यैव ग्रन्थस्य इदं भागद्वयं यदा एकस्य ग्रन्थस्य भागद्वयं भवति तदा पूर्वभागं पठित्वा उत्तरभागः पठ्यते इति तु स्वाभाविकं तत्र विचारस्य अवकाशः एव नास्ति क्लेशः एव नास्ति इति कुतः एकग्रन्थत्वम् इत्युक्ते व्याख्येयस्तु वेदः एकः वेदस्य भागद्वयं धर्मविचारात् धर्मविधिवाक्यानि अनन्तरं ब्रह्मस्वरूपनिरूपणपराणि वाक्यानि इत्येवं वेदस्य भागद्वयं वर्तते तदेव उक्तम् अत्र व्याख्याने ननु पुनः पठामि पश्यन्तु ननु धर्मविचार अनन्तरं ब्रह्मविचारः इत्युक्तं धर्मब्रह्मविचारयोः पौर्वापर्यहेतुसम्बन्धाभावादिति पृच्छति कथमुक्तम् एवं धर्मब्रह्मविचारयोः पौर्वापर्ये कोऽपि हेतुर्नास्ति इति पृच्छति कथम् इति कथम् इति प्रश्नस्य आशयः समाधानं किम् धर्मब्रह्मविचारयोर्वेदरूप एकग्रन्थव्याख्यानत्वेन एकशास्त्रत्वात् एकशास्त्रत्वे इदमेव हेतुः अयमेव हेतुः एकस्य ग्रन्थस्य व्याख्यानं चेदेकः एकं शास्त्रं वेदस्तु एकः तर्हि वेदरूप एकग्रन्थव्याख्यानत्वेन एकशास्त्रत्वात् व्याख्येये वेदे धर्मब्रह्मभागयोः पौर्वापर्यं व्याख्येये वेदे पौर्वापर्यमस्ति प्रथमतः धर्मविचारः अनन्तरं ब्रह्मविचारः तर्हि व्याख्यानेऽपि तथैव इति लभ्यते एवञ्च पूर्वमीमांसा जैमिनिना कृता उत्तरमीमांसा बादरायणेन कृता इति कृत्वा ग्रन्थभेदः इति न शङ्कनीयं तत्र व्याख्येयं तु एकं व्याख्यानं द्वाभ्यां ऋषिभ्यां कृतं तावदेव तावता ग्रन्थभेदः इति नास्ति नाम पृथक् अस्माभिः वेरवेर प्रिण्टिङ्ग् पण्णि इर्केन्द्रनल ग्रन्थभेदं सुलकूडाद् इप गादाधरी इर्कल्या गदाधर भट्टाचार्य पण्ण व्याख्यानं अद् इप परीक्षासौकर्यार्थं பஞ்சலக்ஷணி சொல்றது இல்லையா பஞ்சலக்ஷணி சதுர்தசலக்ஷணி சித்தாந்த லட்சணம் அவயவா பக்ஷத அப்படி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இது தனித்தனி கிரந்தம் இல்லை இது தத்துவசிந்தாமணேஹே அனுமான கண்டஸ்ய வியாக்கியானம் தீதிதி தஸ்ய வியாக்கியானம் இதம் வியாக்கியம் ஏகமேவ அதத்திர பரீட்சாயாம் கந்திர சாத்திராணாம் சௌகரியார்த்தம் தனித்தனி முத்திரணம் பண்ணியிருக்கார் அதனால வேற கிரந்தம் ஆயிடுமா அந்த மாதிரி அவ்வளவுதான்
2: तत्र पूर्वपक्षिणः आक्षिप्यते पौर्वापर्ये किं मानम् इति तर्हि तस्य अभिप्रायः कः मानं नास्ति इति
3: एवं
2: तत् कया युक्त्या सः तं साधयति
3: तद् बहु वक्तव्यं शास्त्रभेदवादिनः शास्त्रभेदवादिनः ये भवन्ति तेषां शास्त्रभेदसाधनाय याः युक्तयः ताः सर्वा तत्र पूर्वपक्षत्वेन स्थापयितुं शक्यन्ते यदि वाक्यार्थः वक्तव्यः तर्हि अद् अपरं पातुकलां पूर्वपक्षत्व वरु வாக்கியார்த்தம் பண்ணணும்னா அது அதெல்லாம் கொண்டு வந்து வாக்கியார்த்தம் பண்ணலாம் சாஸ்திரபேதே கிம் பிரமாணம் சாஸ்திரபேதவாதினாம் ஆசயக்கா தத் தஸ்ய கண்டனம் பரஸ்பர விமர்சாதிகம் பவதி அவசியம் பவதி அதுக்கு ஒரு இடம் கொடுத்துருக்காரு அவ்வளோதான் விசாரம் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு சரி வியாக்கியேயே வேதே பிரம்ம தர்ம பிரம்ம பாகையோ பௌர்வாபரியமேவ தத் பௌர்வாபரிய ஹேது சம்பந்தா இத்தியபிப்ரேத்தியாக நவயமிதி விசாரசாஸ்திரையோர் தர்ம தர்ம விசாரசாஸ்திரே पूर्वापर किमस्ति पूर्वापर ष अक्षरं न दृश्यते अस्तु अग्रे पठतु किन्तु एकत्ववादिनः धर्मब्रह्मणोः अग्रे
2: तर्हि किमनन्तरमस्य आरम्भः धर्मविचारानन्तरं नव धर्मब्रह्मणोः आराधन आराध्यभूतयोः प्रतिपादकम् अथा तु धर्मजिज्ञासः इत्यारभ्य अनावृत्तिशब्दात् इत्येतावत्पर्यन्तम् एकं शास्त्रम्
3: एकमेव शास्त्रं धर्मब्रह्मणोः आराधन आराध्यभूतयोः प्रतिपादकम् इन्नोर् युक्ति शुल्रार् शास्त्रैक्ये धर्मप्रतिपादकं जैमिनीयं शास्त्रं ब्रह्मप्रतिपादकं बादरायणीयं शास्त्रम् अस्तु अनयोः कः सम्बन्धः प्रतिपाद्यविषययोः सम्बन्धः अस्ति वा इत्युक्ते तदप्यस्ति कः सम्बन्धः आराधन आराध्यभावः अस्ति धर्मस्तु भगवदाराधनात्मकः ईश्वर आराधनमेव धर्मः इति यदा यदा स्वीक्रियते तर्हि धर्मेण आराध्यः वर्तते ईश्वरः तस्य स्वरूपं प्रतिपाद्यते उत्तरमीमांसायाम् उत्तरभागे इति स्थिते धर्मः यदा धर्मशास्त्रं धर्मशास्त्रं नाम धर्मशास्त्रम् इति धर्मविधिवाक्यम् अन्यत्र भवति धर्मविचारात्मकं शास्त्रं पूर्वमीमांसाशास्त्रं यदा कश्चित् पठति तदानीं ओ एतेन धर्मः विचारितः धर्मे विचारिते धर्मः सर्वोऽपि भगवद् आराधनरूपः ईश्वराराधनरूपः इति यदा ज्ञायते तर्हि तदानीं जिज्ञासा भवति एतैः धर्मैः आराध्यस्य ईश्वरस्य किं स्वरूपं तस्य किं लक्षणं के महिमानः इत्येवं जिज्ञासा भवति तस्यां जिज्ञासायाम् उत्तरमीमांसाशास्त्रम् आरभ्यते इति वक्तुं शक्यते इदानीं पौर्वापर्यं लभ्यते तदेव उक्तं पश्यन्तु धर्मब्रह्मणोः
2: आराधना आराध्यभूतयोः प्रतिपादकम् अथातो धर्मजिज्ञासा
3: इत्यारभ्य इत्यारभ्य अथातो धर्मजिज्ञासा इत्यारभ्य अनावृत्तिशब्दादिति कुत्र अस्ति उत्तरमीमांसायाम् अन्तिमं सूत्रं तावत्पर्यन्तम् एकं शास्त्रम् इति वर्तते अथातो धर्मजिज्ञासा इत्यारभ्य अनावृत्तिशब्दादित्येतावत्पर्यन्तम् एकमेव शास्त्रम् अद् नडुविल् इन्नोन्नु इरुक्कु तेरियुमा सङ्कर्षकाण्डम् इरुक्कु सङ்கர்ஷகாண்டம் இருக்கு சங்கர்ஷகாண்டம் வந்து பூர்வமீமாம்சையோடு சேர்ந்ததுதான் சங்கர்ஷகாண்டத்தில் ஒன்றும் இல்லை இப்போ நம்ம பூர்வமீமாம்சையில் அதிகரணங்கள் பாதங்கள் அத்தியாயங்கள் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதில் ஒரு கிரமமாக இருக்கும் ஒவ்வொரு அத்தியாயத்தில் விஷய நியமம் இருக்கு இந்த சங்கர்ஷகாண்டம் எப்படி இருக்குன்னா அதில் அங்கங்கே சொல்ல வேண்டிய விஷயம் விட்டு போச்சுன்னா அதெல்லாம் எடுத்துட்டு ஒரு இடத்துல போட்ட மாதிரி இருக்கு சங்கர்ஷகாண்டம் ஜைமினியான்யேவ சூத்ராணித்தேவ பிரசித்தி சங்கர்ஷகாண்டம்னு இருக்கு அது ஒரு பூர்வமீமாம்சையுடைய ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் மாதிரி இருக்கு அது ஊர்மீமாம்சதா ஊர்மீமாம்சாயாக விஷய இவ கிஞ்சித் தத்ர தத்ர கிமபி வக்தும் தியக்தமிவ பஷ்சாத் யோஜிதமிவ வர்த்ததே சத்வாரஹ அத்யாயாஹ விஷகலித விசாராஹ வர்த்தந்தே விஷகலித விசாராஹ யாக விஷய இவ ததைவ இதி சங்கர்ஷகாண்டம் இதி அஸ்தி ததபி யோஜ்யதா விம்சதி லக்ஷணீ மீமாம்சா இதி விம்சதி லக்ஷணம் நாம அத்யாயாஹ த்வாதஶ லக்ஷணீ ஜைமினிய மீமாம்சா இது சங்கர்ஷகாண்டம் நாலு அத்தியாயம் இது நாலு அத்தியாயம் எல்லாமே சேர்த்து வேதார்த்த விசாரம்னா 20 அத்தியாயம் வேதார்த்த விசாரம் தர்ம விசாரம் பிரம்ம விசாரம்
2: தத்ர அதாத சேஷ லக்ஷணம் இத்யாதிவத் அவாந்தர பரிச்சேதஹ பரிச்சேதார்த்தஹ அயம் அதாதோ பிரம்ம ஜிஜ்ஞாஸா இத்யாரம்பஹ
3: இப்ப அதாதோ பிரம்ம ஜிஜ்ஞாஸா இத்யாரம்பஹ இது ஆரம்பஹ அது அந்த ஆரம்பம் எப்படி இருக்குன்னா பரிசிஷ்டம் அங்க சொல்ல சொல்ல மறந்தது இல்ல அவர் ஜைமினி அது அது பண்ணி முடிச்சிருக்கார் தர்ம விசாரம் எவ்வளவு பண்ண வேண்டியதுக்கோ அவ்வளவு முடிச்சு பண்ணி பண்ணி பண்ணி முடிச்சிருக்கார் அதுக்கப்புறம் இதை ஆரம்பிக்கிறார் அது எப்படி அதாத சேஷ லக்ஷணம் மாதிரி இருக்கு அதாத சேஷ லக்ஷணம் இது குற்ற அஸ்தி திருத்தீயாத்தியாய ஆத்தியம் சூத்திரம் ஜைமினியே அதாத்தோ தர்ம ஜிஜ்ஞாசா இது அர்த்தம் கலு இதம் கிமர்த்தம் புனரம்பா இது பிரஷ்னோ பதி தரி ஏகமேவ சாஸ்திரம் சேத் அதா இது புனரம்பவத் கிமர்த்தம் இப்ப வந்து பாரு பசியந்தோ மங்களாச்சரணத்துக்கு கேள்வியே இல்லை இப்போ இது நடுவில் இருக்கு மத்திய மங்களம் தது அஸ்து மங்களாச்சரணம் குதா ந கிருதம் இது கோலாஹலாக ந கர்த்தும் சக்கியதே கிரியதே சேத் அஸ்து அத்தஹ த்வனி மாத்திரேண மங்களம் பவதி இத்யுக்தம் ந கிருதம் சேதுபி கேட்க முடியாதுன்னு கேட்குறேன் சொல்கிறேன் ஏன்னா நடுவில் தானே இருக்கு நமக்கு ஒரு தனி கிரந்தமாக தோன்றது அவ்வளோதான் இப்போ கௌமுதி நாலு பார்ட்டாக போட்டிருக்கார் இல்லையா ஏன்னா நாலு புஸ்தகமா அது நாலு கிரந்தமா ஒரு கிரந்தம் தானே ஆரம்பத்திலும் கடைசி வரைக்கும் ஒரே விசாரம் ஒரே விசாரமா அப்படின்னு கேட்டால் ஒரே விசாரம் இல்லை பல பிரகரணங்கள் பல விஷயங்கள் ஒன்று ஒன்று முடிச்சு இன்னொன்று ஆரம்பிக்கிறார் இல்லையா தத்வதேவ திரஷ்டவியம் இது வதந்தி தத்வதேவ திரஷ்டவியம் தரி அதாத சேஷ லக்ஷணம் இது யதா திருத்தீயாத்தியாய ஜைமினிய சாஸ்திரே ஏவ ஆரம்பியதே ஜைமினிய சாஸ்திரம் அதாதோ தர்ம ஜிஜ்ஞாசா இது ஆரம்பம் பிரமாணாத்தியாய ஆரம்பே வர்த்தது அனந்தரம் கர்மபேதா நிரூபிதா த்விதீயாத்தியாயே அனந்தரம் அங்கத்வம் அங்கத்துவம் அங்காங்கி பாவ நிரூபணார்த்தம் திருத்தியாத்தியாயம் ஆரம்பியதே அத இது அஸ்தி தத்ர தாவதா தத் அன்யத் சாஸ்திரம் இது உச்சதே வா கேனாபி அத இதானீம் கர்மபேதம் நிரூபிய அனந்தரம் இதம் நிரூபியதே அங்காங்கி பாவோ நிரூபியதே இது கலு வக்தவியம் தத்வதேவ இதானீம் பகவத் ஆராதன ரூபம் தர்மம் விசாரிய இதானீம் ஆராத்யஸ்ய பகவதஹ ஸ்வரூபம் விசாரயிதும் இதம் ஆரம்பியதே இத்யுக்தே சாஸ்திராந்தரம் பவதி வா ந பவதி இதி அதாத சேஷ லக்ஷணம்
2: ஆந்தர பரிச்சேதார்த்தஹ அயம்
3: இவர் இன்னொரு சுவாரஸ்யமான ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கார் எதி ஏவம் தர்மஸ்ய ஈஸ்வராராதன ரூபத்துவம் ஸ்வீகிருத்ய தத் தஸ்ய பூர்வம் விசாரஹ இது எதி உச்சதே தரி கிம் ஜாதம் தர்ம சர்வோபி ஈஸ்வராராதன ரூபஹ இது பவதாம் அபிமதம் தரி முமுக்ஷுணா ஏவ முமுக்ஷோஹ சாதனமேவ தத் பவதி ஈஸ்வராராதனேன கிம் பவதி முக்திர் பவதி இது வக்தவ்யம் பவதா तरी ईश्वराराधन मुक्तिर्भवती चेत चेत मोक्षस्य साधनमेव अंत गत धर्मस्वरोपी अंगीकृत सैत् अस्तु इष्टापत्ति उच्यते सम्यक् विरोधो नास्ति अस्माकं तर्हि तथा चेत् अत्रैव साधनाध्यायः इति वर्तते तस्य तत्र निवेशापत्ति निवेशापत्तिः जय सर्वस्य जैमिनीयशास्त्रस्य जैमिनीयशास्त्रं सर्वमपि இங்கேயே சாதனாத்தியாயம் இருக்கு இல்லையா பலாத்தியாயத்துக்கு முன்னாடி சாதனாத்தியாயம் என்ன மோட்சத்துக்கு சாதனமான உபாசனைகள் எல்லாம் சொல்றதாங்க இதமபி சர்வம் தத்ர நிவேசனியம் சியாத் சமக்ரம் ஜைமினிய சாஸ்திரம் இங்க கொண்டு கொண்டு வரணுமே ஏன் வரல இது பிருஷ்டுவா சமாதானம் உத்தம் சத்தியம் தத்ர சாதனேஷ்வபி கச்சன பேதா பவதி கலு அந்தரங்க சாதனம் பகிரங்க சாதனம் இது பவதி अत्र प्राधान्येन उपासनादिकरूपं साधनम् अत्र विचार्यते साधनाध्याये अपि च धर्मः किं भवति केवलं मोक्षार्थमेव धर्मः विहितः इति नास्ति जैमिनीयशास्त्रे ये धर्माः विचार्यन्ते ते संसारे अन्तर्गतानां फलानां साधनायापि सिद्ध्यर्थमपि धर्माः निरूपिताः एवं स्वर्गादिप्राप्त्यर्थमपि सर्वं मोक्षार्थिना एव कर्तव्याः ते इति न ते मोक्षार्थिनापि कर्तुं शक्यन्ते ईश्वरार्पणबुद्ध्या ईश्वरार्पणबुद्ध्या क्रियन्ते चेत् मोक्षसाधनानि भवन्ति नो चेत् अन्यादि ऐहिक आमुष्मिक स्वर्गादिफलसाधनान्यपि भवन्ति इति अतः कश्चित् विशेषः वर्तते अपि च सः तत्र कर्मकाण्डोक्तानां वाक्यानां विचारस्तु भूयान् कर्तव्यः वर्तते स्वल्पः न महान् विचारः द्वादश अध्यायेन कर्तव्यः विचारः सः वर्तते एतदपेक्षया विस्तृतो विचारः सः इति कृत्वा सः पृथक् तत्र स्थापितः इति सर्वं साधनाध्याये निवेशनीयम् इति नास्ति इति पृथक् एव सः स्थापितः
4: ॐ नमः शिवाय यू आर् लिस्निङ्ग् टु शैवम् डाट् आर्ग् रेडियो दि 24/7 स्पिरिचुवल् चानल् फ्रम् शैवम् डाट् आर्ग्

0: जनाधावो
1: जनाधावो जनाधावो जनाधावो जनाधावो जनाधावो जनाधावो जनाधावो।

0: ஓம் நம சிவாய். டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர் ரேடியோ, தி சைஸ் ஆஃப் அவர் ஆடியோ கலெக்ஷன் கண்டினியூஸ் டு க்ரோ டே பை டே. வி நவ் ஹோஸ்ட் மோர் தேன் 25,000 ஆடியோ ரெக்கார்டிங்ஸ். இன் ஆர்டர் டு மேக் தீஸ் எக்ஸ்டென்சிவ் ரிசோர்ஸஸ் மோர் ஆக்சசபிள் அண்ட் பெனிஃபிஷியல் டு அவர் ரேடியோ லிசனர்ஸ், வி ஹவ் ரீஆர்கனைஸ்ட் அவர் ப்ரோக்ராம் ஷெட்யூல். திருமுறை மியூசிக் அண்ட் திருமுறை டிஸ்கோசஸ் வில் பி ப்ராட்காஸ்ட் ஆன் திருநெறிய தமிழோசை. Philosophical discourses and Periyapuranam lectures in Tamil will be broadcast on Shiva Tattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaiva Lahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. ஓம் நம சிவாய்.
1: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் ஷைவம் டாட் ஆர், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம், பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ ஆத்மானந்த் கிரிஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
2: यही भाव से सन्यासियों को अग्नि संस्कार नहीं करते देह छूटने के बाद, ये मान्यता है. हालांकि वो ज्ञान अग्नि से जला रहे हैं कि नहीं जला रहे हैं, उनको ज्ञान हो चुका है कि नहीं हुआ है, ये अपनी जगह पर है. लेकिन सन्यासी को अग्नि संस्कार न करने का यही विधि है, उसके पीछे यही रहस्य है कि वह ज्ञानाग्नि से अपने देह को दग्ध कर चुका हुआ है. वर्तमान शरीर तो वह जली हुई रस्सी की तरह है. रस्सी का बट होता है और जलता है. जलने के बाद वो जली हुई राख जो रस्सी का है, देखने में वो बट ऐसा यथावत दिखता है, लेकिन वह प्रयोजन के लिए नहीं होता. आकार प्रकार वैसा ही होता है, राख के बट, रस्सी के बट, लेकिन वो कोई प्रयोजन का नहीं होता. इसलिए सन्यासी का जीवन किसी प्रयोजन का नहीं होता, वो जले हुए राख के निशान की तरह होता है. तब मां ने जब आज्ञा दे दी तो छोड़ दिया मगरमच्छ ने और वापस आए. आने के बाद कहा कि मां, तुमने आज्ञा दी है और उसी आज्ञा से ही मैं बच पाया हूं. अब तो प्रतिज्ञा पूरा करना पड़ेगा कि नहीं. यदि मगरमच्छ खा लेता तो कोई बात नहीं था, अब खाया नहीं, उसने छोड़ दिया वो मगरमच्छ ने, बच गया. अब क्या करोगे? संन्यास तो लेना ही पड़ेगा मां, अब क्या करोगे? अब तो जाता हूं मैं संन्यास लेने. फिर रोने लग गई. ले जी, फिर रोने लग गई. तब फिर समझाए, कतिनाम सुता न लालिता, कतिनाम बधू रभुंजी, कुनता कुचता कुवा वयम, खलु पांत संगमयी देही नाम. मां तुम विचार तो करो, या तुम्हारा मेरा संबंध यही है? यही है, पहला है. कतिनाम बधू रभुंजी, कतिनाम सुता न लालिता, इससे पहले पहले के जन्मों के बारे में जरा विचार करो तो सही. इस समय जिस तरह तुमने मुझे पैदा किया और मुझे पुत्र के रूप में लालन पालन की, इससे पहले भी तू मां बनी है. कितने बार तू मां बनी है, कितने बच्चों को जन्माया और कितने बच्चों को लालन पोषण किया है, लेकिन उन पहले के बच्चों ने तुमको दिया क्या? उन बच्चों से तुम्हें मिला क्या? पहले जन्मों के बच्चों से आपको क्या मिला है, बोलो? कोई कह सकता है कि मुझे ये मिला है? उस पहले जन्म के बच्चों के द्वारा दिया गया ये घर है, ये कहो है? कोई कह सकता है कि ये घर मेरे बाप का दिया हुआ? ये तो कह सकता है. लेकिन पहले जन्म का मेरे बच्चे ने, मेरे बेटे ने दिया है, ये तुम कह पाओगे है? पहले जन्म की पत्नी का है, ये पत्नी की कृपा से ये प्राप्त हुआ है, कह पाओगे? क्या दिया उस पत्नी ने पहले जन्म की, पहले पहले पहले के जन्मों की पत्नियों ने क्या दिया? उन पत्नियों के द्वारा पैदा हुए हुए बेटा और बेटियों ने क्या दिया? पहले पहले के जन्मों के मां बाप ने क्या दिया? पहले पहले जन्मों के भाई बंधुओं ने क्या दिया? ध्यान रखना, अभी जो कुछ तुम्हारे पास है वह पहले पहले जन्मों के तुम्हारा ही है और किसी का नहीं है. तुमने शुभ किया है तो वह तुम्हारे साथ आया है, तुमने अशुभ किया है तो वही तुम्हारे साथ में आया है, और तुम्हारे बेटे ने अशुभ किया है तुम्हारे पास नहीं आएगा, तुम्हारे बेटे ने शुभ किया है तुम्हारे पास नहीं आएगा, तुम्हारे बाप ने शुभ किया है तो भी तुम्हारे पास नहीं आएगा, तुम्हारी मां ने कोई शुभ कर्म किया है तो भी तुम्हारे पास नहीं आएगा, उसी के साथ जाएगा। जिसने जो किया है वह उसी के साथ रहता है, किसी को कुछ नहीं मिलता है। कति नाम सुता नलालिका, कति नाम बधू रभुंजी ही। कितने बहुओं को तुमने भोगा है पहले पहले के जन्मों में, और अब तुम ये आशा कर रही हो कि मेरा बेटा शादी करेगा और बहू आएगी, घर चलाएगी, पांव दबाएगी। पहले के बहू ने किया तुम्हें क्या? उपलब्धि हुई पहले के बहू के द्वारा तुम्हें इस जन्म में? अभी तक क्या मिला तुमको? कुछ मिला? कतिनाम सुता न लालिता, कतिनाम बधू रभुंजी ही। कहां गई थी वो सब बहुएं, कहां गए वो सब बेटे है, कहां गए वो सब मां, कहां गए वो सब पिता? मां ये सब माता पिता बेटा बहू नाती पोती ये सब तो माया भ्रामित है। आठवें श्लोक का यही सार है, माया भ्रामित, एष पुरुषो माया परिभ्रामित। ये तो माया के द्वारा किया गया खेल है। शंकराचार्य जी कहते हैं ये सारे संबंध खलु पांथ देही नाम संबंध। तो पहले के जमाने में पनघट हुआ करता था, पहले के जमाने में पनघट होता था, गांव के बीच में एक कुआं होता था, या कहीं गांव के बीच में नजदीक में एक नदी हुआ करती थी, या पहाड़ों में कहीं गांव के पास में झरना हुआ करता था। आजकल की तरह किचन किचन में टॉयलेट टॉयलेट में कनेक्शन नहीं हुआ करता था। तो अभी भी गांव में ऐसा ही है, घड़ा लो और जाओ पानी लेने के लिए सार्वजनिक स्थलों में, तो सब पानी लेने के लिए सुबह के समय देखो तो सब घाट में भीड़ लग जाता है, सारे गांव के लोग वहीं आ जाते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं, कैम छो कैसे हो, सारी संबंध सब कुछ हो जाता है। और कब तक ये सारी चर्चाएं कब तक होती है? जब तक अपना घड़ा नहीं भरता है, जब तक अपने नंबर आकर घड़ा नहीं भरता है, तब तक सारे कुशल क्षेम पूछना, राजी खुशी पूछना, हाल चाल पूछना, सारे संबंधों को स्थापित करना, चर्चा परिचर्चा करना, कब तक? जब तक अपना घड़ा नहीं भरता है। जब उसका पानी का घड़ा भर जाता है, फट से घड़ा उठा लेती है और जाने की तैयारी करती है, दूसरी कहती है अरे सखी, अरे रुक ना, मेरा भी पानी का घड़ा भर जाएगा तो हम भी साथ ही चलेंगे। बोले तुम आना, मेरे को जल्दी है, है? पता नहीं तुम्हारा नंबर कब आएगा, कब भरेगा घड़ा, हम तो जाएंगे। अरे वो तो भैंस धोना है, वो तो गाय धोना है, बच्चे को तैयार करके स्कूल भेजना है, यूं करना है त्यों करना है, रसोई करनी है, है? मोड़ो थी गयो छे जो जी, विलंब हो रहा है। अरे जब तक तुम्हारा घड़ा नहीं भरा था तब तक विलंब नहीं हुआ था, और घड़ा भर गया और तुम विलंब होने लग गया। ये तो खलु संग पांथो ही दे ही ना, ये तो पनघट के संबंध हैं सब। ये विचार करो, प्रारब्ध जिसका खत्म हो जाता है, जाता है तो हाई हाई कराते हुए जाता है, पहले बाई बाई कर दो, सबसे पहले तो आनंद में रहोगे। कस्य बन्धश्च को मोक्ष, मोक्षश्च बध्यते केन हेतुना, मायया लक्षणम किम स्यात् इत्येवं परिपृच्छतः। इस तरह ये तीन प्रश्न यहां उपस्थित हो गए हैं। पहला प्रश्न यह है कि ब्रह्म यदि एक है, उस परमात्मा के एक सत्ता के अलावा दूसरा कोई सत्ता नहीं है, तो फिर बंधन से मोक्ष पर्यंत का ये शास्त्र उपदेश किसके लिए और कौन करेगा, ये कैसे संभव होगा? और इस शास्त्र का उपदेश बंधन में पड़े हुए हैं तो फिर कौन बंधन में पड़ रहा है? ब्रह्म बंधन में पड़ रहा है कि ब्रह्म से भिन्न जीव बंधन में पड़ रहा है? और जीव बंधन में पड़ता है यदि कहते हो तो फिर ये क्यों कहते हो कि ब्रह्म सत्ता के अलावा कोई दूसरे वस्तु है ही नहीं, ये फिर क्यों कह रहे हो? तो बोले कि माया के खेल है, एक ही ब्रह्म को अनेक दिखाकर बंधन में डालने और मोक्ष प्रदान करने वाली यही माया है तुम कहते हो। तो ये माया क्या बला है, वो कैसे एक को अनेक बनाकर कैसे वो बंधन में डालती है और कैसे वो मुक्त कर देती है? एक अनेक कैसे होता है? माया लक्षणम किम स्यात्? फिर तो तुम्हें यह भी बताना होगा कि उस माया का क्या लक्षण है। इत्येवं परिपृच्छत प्रश्नस्य उत्तरं वक्तुं प्रतिपत्तुं सुखेन च उक्त्वार्थ सप्तभिः श्लोकैः पुनः संक्षिप्य कथ्यते। हालांकि सारे प्रश्नों का उत्तर जो शिष्य यहां जिज्ञासु यहां आकर पूछ रहा है तीन प्रश्नों के रूप में, हालांकि इन सारे तीनों प्रश्नों का उत्तर इससे पहले के सात सात श्लोकों की व्याख्या के अंतर्गत हो चुका है, ये नया प्रश्न का नया उत्तर देने की जरूरत नहीं है। फिर भी शिष्य ने यहां आकर पूछ लिया तो फिर भी उत्तर देना बहुत जरूरी है, तब तो फिर पुनरुक्ति माना जाएगा। पहले जो बात कही गई है उसी को फिर दोबारे कही जाती है, व्यक्ति सुनने वाला भी वही, बोलने वाला भी वही, पहले जो बात कही गई उसी बात को फिर दूसरी बार कह दो, फिर तीसरी बार कह दो, फिर चौथी बार कह दो, तो पुनरुक्ति दोष माना जाता है। तो उसके लिए निषेध करते हैं शंकराचार्य जी, पौनरुक्ति न दोषवत्र शब्दे नार्थे न वा भवेत् अभ्यासे न गरीयस्त्वम् अर्थस्य प्रतिपाद्यते। विचार के प्रकरण में प्रसंग में पुनरुक्ति दोष माना नहीं जाता है। पुनरुक्ति दो प्रकार से होता है, एक शब्द पुनरुक्ति, दूसरा अर्थ पुनरुक्ति। साहित्य शास्त्रों में अन्यत्र काव्य शास्त्रों में शब्द पुनरुक्ति और अर्थ पुनरुक्ति होता है तो बहुत बड़ा दोष माना जाता है, वह साहित्यिक समाज में और काव्य समाज में वह प्रतिष्ठा का विषय नहीं होता है। न शब्द पुनरुक्ति होनी चाहिए न अर्थ पुनरुक्ति होनी चाहिए, लेकिन वेदांत दर्शन एक सा दर्शन है, ऐसी विधा है। यहां शब्द पुनरुक्ति हो तो भी दोष नहीं माना जाता, अर्थ पुनरुक्ति हो तो भी दोष नहीं माना जाता, क्योंकि वेदांत में अभ्यास का महत्व है, अन्यत्र अभ्यास का महत्व नहीं है। वेदांत में अभ्यास का मतलब है, अन्यत्र अभ्यास से फलीभूत नहीं होता है, यहां अभ्यास से फलीभूत होता है। इसीलिए वेदांत दर्शन में पुनरुक्ति को ही अभ्यास माना, अभ्यास को ही पुनरुक्ति माना। इसीलिए उद्दालक आरुणि ने एक ही वाक्य को, शब्द को 9 बार कहा, एक ही अर्थ को बताने वाले 9 बार शब्द को प्रयोग कर दिया है, तत्त्वम असि, अर्थतः पुनरुक्ति और शब्दतः भी पुनरुक्ति, तत्त्वम असि। पहली बार कहे हुए जो वाक्य है उसका जो अर्थ है उसी अर्थ को भी 9 बार कह रहे हैं तत्त्वम असि। पहली बार शब्द प्रयोग किया गया जो शब्द है उसी को 9 बार तक कह दिया कि तत्त्वम असि, तो शब्दतः भी पुनरुक्ति हुआ है, अर्थतः भी पुनरुक्ति होने पर भी उसको दोष नहीं माना गया। और 9 बार जब 9वें बार तत्त्वमसि का उपदेश किया, बार बार 9वें बार तब उसको अपरोक्ष हुआ। इसलिए अर्थोपलब्धि, अर्थ का ग्रहण, दृढ़ अपरोक्ष होना ये प्राथमिकता है वेदांत दर्शन में, इसलिए पुनरुक्ति दोष नहीं माना जाता। उस बात को शिष्य ने जो पूछा था उसी बात को स्पष्ट करने के लिए 8वां श्लोक है, विश्वं पश्यति कार्य कारणतया स्वस्वामी संबंधतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदत स्वप्ने जाग्रति वा ययेष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। माया परिभ्रामितः, माया के द्वारा भ्रमित किया हुआ वह पुरुष, माया के द्वारा भ्रमित किया हुआ जो पुरुष है वह इस जगत को कार्य कारण के दृष्टि से देखता है। जगत में कार्य कारण का जो भाव है वह प्रबुद्ध विषय व्यक्ति का नहीं है, अप्रबुद्ध विषय व्यक्ति की दृष्टि में है ये। हाँ, ज्ञानी की दृष्टि में कार्य कारण भाव नहीं है, क्योंकि एक में कार्य और कारण भाव संभव नहीं है। परमार्थ में कार्य कारण भाव नहीं है। घट किससे बना? घट देखने वाला उसके कारण को खोजता है। घट किसने बना, किससे बना? बोले मिट्टी से बना। मिट्टी उपादान कारण है कि निमित्त कारण है? बोले मिट्टी उपादान कारण है। मिट्टी यदि उपादान कारण है घड़े का, तो फिर उसको बनाने वाला निमित्त कारण कौन है? बोले कुम्हार है, क्योंकि जो घड़ा देख रहा है उसके दृष्टि में उसके कारण के बारे में जिज्ञासा, कारण में उपादान कारण की जिज्ञासा, कारण में फिर निमित्त कारण की जिज्ञासा। इसी तरह जगत किससे बना है? जगत देखने वाले के लिए ये प्रश्न है। जगत सत्य रूप में देखता है ना, जो उसके मन में ये प्रश्न है, ये जगत किससे बना है? तो बोले कि माया से बना है। माया उपादान कारण है कि निमित्त कारण है, फिर पूछता है वो। तो माया उपादान कारण है। माया उपादान कारण है तो फिर निमित्त कारण कौन है? पूछता है। फिर कहना पड़ता है ईश्वर निमित्त कारण है। ईश्वर निमित्त कारण से, कारण ने माया उपादान कारण से जगत रूपी कार्य बनाया। किसके लिए बनाया? संघात परार्थत्वाद। जो बनता है वह, जो बनता है वह अपने लिए नहीं बनता है, जो बनता है दूसरे के लिए बनता है। जो बनाया जाता है वह, जो बनने वाला है उसके लिए, माला माला के लिए नहीं बना है। माला बनाया गया है कि नहीं बोलो, है कि माला बनाया गया है तो किसके लिए बनाया है? माला माला के लिए ही बनाया है कि आत्मानंद के लिए बनाया है? माला पहनने वाला इस माला से भिन्न होगा कि नहीं? माला बनाने वाला भिन्न है। माला जिस उपादान से बना है वह फूल भिन्न है, है? फूल अलग है, बनाने वाला माला बनाने वाला अलग है, सूत्र अलग है, सहकारी कारण आदि हैं, और ये बना हुआ माला माला के लिए नहीं, किसी और के लिए है। ये सिद्धांत सर्वमान्य है। संघात परार्थत्वात्, कोई भी कार्य है वह कार्य के लिए नहीं, भोक्ता कोई है तभी भोग्य वस्तु का निर्माण होता है। जगत भोग्य है कि भोक्ता है, ये विचार करना पड़ेगा, तब ये बताना पड़ेगा कि जगत भोग्य है, जगत भोक्ता नहीं है। जगत भोग्य है तो कौन भोगेगा इस जगत को? बनाने वाला ईश्वर खुद इस जगत को भोगेगा, अपने भोग के लिए बना रहा है कि कोई और भोक्ता के लिए बना रहा है? तब उत्तर जितने देने वाला यही देंगे कि ये तो जीवों के लिए बनाया ईश्वर ने। तो बोले वो क्या करेगा, नहीं भोगेगा? बोले आप्त कामस्तु का प्रियाहा, वो तो आत्मकाम है, आप्त काम है, इसलिए भोगने के लिए वो जगत क्या बनाएगा? आत्मा राम है, आप्त काम है, आत्मा राम है, फिर वो क्या जगत के भोग के लिए, भोग कर फिर आनंद के अनुभव करने के लिए बना रहा है वो जगत? किसके लिए बना है? तो बोले जो सकामी है, आप्तकामी नहीं है, आत्मा राम नहीं है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव, आत्मन्नेव च संतुष्ट तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्य कार्यम न विद्यते। ये उसके लिए न कोई कार्य की आवश्यकता है, न कोई फल की आवश्यकता, क्योंकि वो आत्मतृप्त है। किसके लिए बनाए? बोले जीव के लिए। जीव जगत से बाहर है कि जगत के अंदर है? जगत किसके लिए बनाया, किसको भोगने के लिए बनाया जगत? जीव के लिए। जीव जगत के बाहर है कि जगत के अंदर है? जगत के अंतःपाती, जगत से भिन्न जीव नहीं है। तो किसको बना रहा है? बोले जीव भी ईश्वर ने बनाया, भोक्ता भी ईश्वर ने बनाया और भोग्य भी उसी ने बनाया। देख लो, भोक्ता भोग्य दोनों ही उसी ने बनाया। भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा उपनिषद में आया है, परमात्मा को इस तरह कहा। तो विश्वम पश्यति कार्य कारणतया, और कपास से धागा बना, धागा से कपड़ा बना, कपड़ा हम पहन रहे हैं, हम भोग रहे हैं। देख लो, मिट्टी से घड़ा बना, घड़े इसमें पानी भरा, पानी ठंडा हम पी रहे हैं। सब कुछ किसी न किसी के द्वारा भोग्य बने हुए हैं। स्वस्वामी संबंधतः जगत में सारा व्यवहार का यही पक्ष है, कोई किसी का मालिक बना है तो कोई किसी का नौकर बना है। स्वस्वामी संबंधतः, यहां नौकर है तो वहां मालिक है, वहां मालिक है तो यहां नौकर है। ये संबंध मालिक और नौकर का, सेव्य और सेवक का संबंध, ये सब विश्व के अंतःपाती है, अंतर्गत ही है। इस विश्व के अंतर्गत कोई न मालिक है न सेवक है। विश्वम पश्यति कार्य कारणतया स्वस्वामी संबंधतः, शिष्याचार्यतया, और को जो भोगी हैं, संसारी हैं, वे लोग कार्य कारण का विचार करते हैं और स्वामी सेवक का विचार करते हैं, मालिक और नौकर के विचार करते हैं, और कुछ लोग जिज्ञासु हैं, वो फिर गुरु और शिष्य के बारे में विचार करते हैं। गुरु शिष्य, शिष्य आचार्यतया, जगत में ये सब भेद है कि नहीं? कार्य कारण का भेद, भोक्ता भोग्य का भेद और स्वामी सेवक का भेद, शिष्य और गुरु का भेद, पिता और पुत्र का भेद, पति पत्नी का भेद, बाप बेटे का भेद, मां बेटे का भेद, मां बाप का भेद, सारे के सारे भेद किससे सिद्ध हुआ, कैसे सिद्ध हुआ? एक ही में ये सारा भेद भिन्न भिन्नता कैसे संभव है? यदि ब्रह्म एक ही है तो फिर गुरु चेला कौन बनेगा? ब्रह्म एक ही है तो कार्य कारण कैसे बनेगा? ब्रह्म एक ही है तो स्वामी सेवक कैसे बनेगा? ब्रह्म एक ही है तो उपास्य उपासक कैसे बनेगा? ब्रह्म एक ही है तो जन्य जनक भाव कैसे होगा? पिता और पुत्र का संबंध कैसे बनेगा? सारा जगत में जो कुछ संबंध है इन्हीं चार संबंध के अंतर्गत आते हैं। कार्य कारण भाव संबंध, स्वामी सेवक भाव संबंध, शिष्य और आचार्य भाव संबंध, पिता पुत्र भाव संबंध, इन्हीं के अंतर्गत पति पत्नी भाव संबंध, मां बेटे भाव संबंध, जन्य जनक भाव संबंध, क्योंकि कार्य कारण भाव के अंतर्गत जन्य जनक भाव आ गया, मां बेटे सभी उसी में आ गए, बाप बेटा सब उसी में आ गए।

वेदत स्वप्ने जाग्रति वा यये स पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणा मूर्तये। एक ही पुरुषः, या पुरुष शब्द से परमात्मा को ही लिया गया, अद्वितीय सजातीय विजातीय सुखद भेद त्रय रहित अद्वितीय जो परमात्मा है, वही एक परमात्मा ही माया के माध्यम से वो अकेले बाप बेटा भी बन गया, मां बेटा भी बन गया और पति पत्नी भी बन गया, गुरु शिष्य भी वही हो गया, कार्य कारण भी वही हो गया है, सो स्वामी सेवक भी वही हुआ है। हाँ, ये कैसे होगा, एक ही वस्तु में ये संबंध कैसे होगा? चलो होता है, कारक संबंध होता है एक ही में। आप लोगों ने कई बार नवग्रह के मंदिर देखे हो और नवग्रहों के मूर्ति देखी हो, तो उन नवग्रहों के मूर्तियों के बीच में दो मूर्ति ऐसे होते हैं, एक मूर्ति होता है केवल सिर, सिर ही वो पूरी मूर्ति है, किसका होता है वो सिर, राहु का, और दूसरा मूर्ति होता है धड़, धड़ किसका है, केतु का। तो दो मूर्ति रखा जाता है, राहु और केतु, सूर्य और चंद्रमा के बीच में राहु और केतु का दो मूर्ति रखा जाता है। अब पूछने वाला व्यक्ति, क्योंकि हमको अध्यास ये है कि शरीर और धड़ एक ही साथ होता है तभी मूर्ति बनता है ना, वहां मूर्ति बनाकर रखा है सिर अलग राहु का, धड़ अलग केतु का, तो पूछने वाला पूछता कि ये धड़ किसका है, क्योंकि सिर तो है ही नहीं, खाली धड़ है। पूछने वाला पूछता कि ये धड़ किसका है, तो बताने वाले बताते हैं केतु का है। अरे बाबा, धड़ ही केतु है, केतु का नहीं है, कारक संबंध वहां नहीं है, जो धड़ है वही केतु है, जो केतु है वही धड़ है। इसी प्रकार से वह सिर को देखकर कहता ये किसका सिर है, तो कहने वाला कह देता है ये राहु का सिर है। अरे बाबा, राहु अलग और सिर अलग नहीं है, एक ही है, एक ही में भी एक कारक संबंध हुआ कि नहीं, सृष्टि कारक लग गया कि नहीं, राहु का सिर। राहु कहां है फिर ना? राहु का ये सिर है तो राहु कहां है, वही तो राहु है। केतु का ये धड़ है तो केतु कहां है, तो वही तो ये है। इसलिए एक ही होते हुए भी कार्य कारण संबंध, कारक संबंध ऐसा व्यवहार में होता है। राहो सिर सुशिखस्य, ये छिद्र किसका है, आकाश का है, आकाश का छिद्र। अरे छिद्र का नाम ही आकाश है, आकाश का नाम ही छिद्र है, है? छिद्र और आकाश दो चीज नहीं है, लेकिन कह देते हैं कि आकाश में छिद्र हो गया, आकाश में कई छिद्र होता है, फिर भी आकाश में छिद्र भेद हो रहा है कि नहीं, कार्य कारण भाव, आकाश कारण है और छिद्र कार्य है, देखो, जबकि एक ही में दो भेद हो रहा है। ममा आत्मा व्यवहार में कहते हैं कि नहीं, मेरी आत्मा है, अरे जो मैं हूं वही आत्मा है, जो आत्मा वही मैं हूं, तो मेरी आत्मा, मेरी गाड़ी की तरह प्रयोग क्या कर रहा है वो, मेरी आत्मा है, जैसे मेरी गाड़ी मेरा घर शब्द तो प्रयोग कर रहा है कि नहीं, इसी तरह क्या कहता है, ममा आत्मा, मेरी आत्मा, ले जी, जो आत्मा है वही मैं, जो मैं हूं वही आत्मा, एक ही में ये संबंध होता है कि नहीं, कारक संबंध होता है कि नहीं। इसी तरह प्रतिमा वपुहु, जो प्रतिमा है वही शरीर है, किसका शरीर है, प्रतिमा का शरीर है, अरे प्रतिमा और शरीर तो एक ही है। इत्यादि कल्पना तुल्या न पृथक वस्तु गोचरा, ये सारी कल्पना एक ही वस्तु में, अपृथक एक ही वस्तु में पृथक पृथकता की कल्पना करके ये शब्द प्रयोग किया जाता है, राहो सिराह, प्रतिमा वपु, मेरी आत्मा, ये देख लो। इसी तरह एक ही ब्रह्म, माया के द्वारा ये सारे के सारे कार्य कारण भाव, स्वामी सेवक भाव, शिष्य आचार्य भाव और पिता पुत्र भाव, जैसे ये कई व्यक्ति बाप के दृष्टि से वह बेटा है, बेटे के दृष्टि से वह बाप है, वो व्यक्ति बाप है और कि बेटा है,
बाप अलग और बेटा अलग है क्या? एक ही व्यक्ति में दो धर्म विरुद्ध धर्म कैसे आ गया, प्रश्न कर सकता है ना कोई? एक ही व्यक्ति में वस्तु में कार्य और कारण, ये दोनों एक कैसे आ गया? विरोध, कार्य अलग है कारण अलग है। एक ही वस्तु में कार्य कारण भाव कैसे संबंध होगा? बोले देख लो, एक व्यक्ति खड़ा है, वह बाप का कार्य है, बेटे का कारण है, कार्य कारण भाव एक ही व्यक्ति में है कि नहीं बोलो? है हरीश भाई, आपका बेटा है कि नहीं? आपका बेटा है, वो बाप है कि बेटा है? उसके बेटे आपका पोते का बाप नहीं है? वो बाप भी वही है, बेटा भी वही है, कार्य कारण भाव। आपके पिता के सामने आप बेटे हुए थे तो आपके बेटे के सामने आप बाप, बाप बेटे आदो है। देव जी, हरि भाई का बेटा कौन है? मैं हूं, बोलना पड़ेगा कि नहीं? और बेटे का नाम क्या है? अमीश का बाप कौन है? बोले मैं हूं। पर मैं, तुम कार्य भी हो और कारण भी हो, यही तो माया परिभ्रामित। माया की ऐसी विशेषता खूबी है कि वह कुछ को कुछ भी बना सकती है, कर्तुम अकर्तुम, अन्यथा कर्तुम समर्था है। माया भी अघटित घटना पति ऐसी माया। स्वप्न जागृति, जैसे स्वप्न में एक ही व्यक्ति सब कुछ होता है कि नहीं? तेजस पुरुष, बाप भी होता है, बेटा भी होता है, भोक्ता भी होता है, भोग्य भी होता है, कार्य भी होता है, कारण भी होता है, गुरु भी होता है, शिष्य भी होता है, सेवक भी होता है, स्वामी भी होता है, सब कुछ होता है कि नहीं बोलो? है तेजस पुरुष अकेला है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है वहां, फिर भी सब होकर दिखाता है। स्वप्न के द्वारा सब हो सकता है, तो स्वप्न की भी मां जो माया है, सबकी मां, वो क्या नहीं कर सकेगी? उस बात को यहां स्वप्ने जागृति वा ये सब पुरुषो माया परिभ्रामिता, ये सारे के सारे भ्रांति, जब उस माया का निवारण होगा तभी जाकर ये सारे भेद खत्म हो जाएंगे। तो निवारण कौन करेगा? तो गुरु मूर्ति, दक्षिणा मूर्ति, ज्ञान स्वरूप ज्ञानदाता गुरु दक्षिणा मूर्ति भगवान शिव की कृपा होगी, तब ये सारा भेद समाप्त तो हो जाएगा। और क्या कह रहे हैं, बाकी दो श्लोक हैं और हम उसी हिसाब से चल रहे हैं, कल और परसों इस श्लोक को पूरा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।

0: நமஹ சிவாய. யூஆர் லிஸ்னிங் டு சைவம்.org ரேடியோஸ் 24/7 ஸ்பிரிச்சுவல் சேனல்ஸ் ஃப்ரம் சைவம்.org. ஓம் நம சிவாய.
1: ஓம் நம சிவாய். டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம்.org, தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஹிந்தி ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் நாயன்மார் புராணம். தி டைட்டில் இஸ் திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாண நாயனார் புராணம், பிரசன்டட் பை ஸ்ரீ சிங்கப்பூர் சங்கர நாராயணன். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
2: ஓம் நம சிவாய். பக்தோ, அபி ஹம் ஜிஸ் மகான் சந்த் யா சிவபக்த் கி கஹானி சுனேங்கே. உன்கா நாம் திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாணர் ஹே. பக்தி கா மார்க் வர்ண, குல், ஜாதி ஆதி கே பந்தன் ஸ்வீகார் நஹி கர்தா. திருஜான சம்பந்தர் கே யுக் மே சோல் பூமி மே திரு ஏருக்கத்தம் புலியர் கே ஏக் ஹரிஜன் குல் மே திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாணர் கா ஜன்ம ஹுவா. ஏ அப்னே ஹாத் மே வீணா சதிருஷ் ஏக் வாத்யயந்திர யால் லேகர் மந்திர் கே தர்ஷன் கர்னே ஜாதே தே. வே மந்திர் கே பாஹர் கடே ஹோ ஜாதே ஔர் யால் பஜாகர் பகவான் கி ஸ்துதி கர்தே தே. एक बार वे मदुरई के चोक्कनाथ मंदिर के सामने याल बजा रहे थे कि भगवत प्रेरणा से ब्राह्मण बाहर आकर उन्हें सादर अंदर ले गए ताकि वे प्रभु के समक्ष याल बजा सकें। भगवान भी भक्त को पूर्ण सम्मान देना चाहते थे। मंदिर के भीतर से स्वर गूंजा, आदेश हुआ कि धरती गीली है, नमी वाले स्थान पर रखने से याल की लय स्थान में बाधा आएगी, अतः उसके लिए एक चौकी मंगवाई जाए। विशेष चौकी की व्यवस्था हो गई। भगवान के समक्ष दंडवत प्रणाम करने के बाद वह देर तक याल बजाते रहे। यहाँ विशेष चौकी थी। यहाँ से वे तिरुवारूर पहुंचे। तिरुवारूर में ईश्वर दर्शन करने के बाद विविध तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हुए वे तिरुज्ञान संबंदर के स्थल शिवकाली पहुंचे, जहाँ तिरुज्ञान संबंदर ने अपने ज्ञान चक्षुओं से उन्हें देखते ही पहचान लिया कि भगवान का पूर्ण अनुग्रह इन पर है। उन्हें समक्ष पाते ही तिरुज्ञान संबंधर कह उठे, हे रे, हे द्विज श्रेष्ठ। उन्हें सादर अपने निकट बिठाया और उस समय से जहां जहां तिरुज्ञान संबंधर गए, येल पानर उनके गीतों को याल पर स्वर देते रहते थे। उनकी पत्नी मदंग चूड़ामणि सदा उनके साथ रहती थी। उल्लेख्य है कि तिरुज्ञान संबंधर की भक्त मंडली में मात्र वे ही एक स्त्री थी। याल बजाने वाला गायक के साथ बैठता है 8-10 फुट की दूरी पर नहीं। ऋग्वेदी और नित्य यागनी भोत्री ब्राह्मण तिरुज्ञान संबंधर ने तिरुनीलकंठ यालपाणर और उनकी पत्नी को सदा अपने साथ एक निकट स्थान पर बिठाया था। जिन जिन मंदिरों में वे गए, पति पत्नी दोनों साथ ही रहते थे। यहाँ नंदनार की कथा का संकेत आवश्यक है। नंदनार को मंदिर प्रवेश में झिझक थी। उनकी हीन भावना भक्ति के चरम शिखर तक पहुंचने में बाधक बन रही थी, पर अस्पृश्य जाति के यालपानर को कोई बाधा नहीं आई। यालपानर को तिरुज्ञान संबंधर ने अपार सम्मान दिया था। जाति भेद की बात अस्वीकार किए जाने का एक और प्रसंग इन्हीं के जीवन से संबंधित है। जब संबंधर तीर्थ यात्राओं के दौरान तिरुचित्तमंगई नामक स्थल में पहुंचे, तो तिरुनीलनक्कर नामक ब्राह्मण भक्त ने के घर अपने साथियों सहित आमंत्रित थे। भक्तिपूर्ण गीतों के गायन और संगीत के स्वरों में डूबने के बाद सादर भोजन सत्कार आदि हुआ। भक्त नीलनक्कर ने उन्हें रात्रि के लिए वहीं ठहर जाने का आग्रह दिया। तिरुज्ञान संबंधर ने नीलकंठ यालपाणर के लिए रात्रि विश्राम की व्यवस्था करने को कहा। नीलनक्कर ने यज्ञ की अग्नि द्वारा पवित्र की गई घर के मध्य स्थान में यालपाणर और उनकी पत्नी के रहने की व्यवस्था की। इस कथी से स्पष्ट है कि शिव भक्त के मार्ग में जाति का भेद विलुप्त हो गया था। एक अन्य घटना का संबंध तिरुनीलकंठ यालपाणर के साथ जुड़ा हुआ है। तीर्थ स्थलों की यात्रा करते जब धर्मपुरम पहुंचे तो यालपाणर ने सूचना दी कि यह स्थल उनकी माता का जन्म स्थल है। तिरुज्ञान संबंधर एक दो दिन के लिए वहां रुक गए। वे यालपाणर को सम्मान देना चाहते थे। नीलकंठ यालपाणर के संबंधियों ने गर्व से कहा कि तिरुज्ञान संबंधर के गीतों की गुणवत्ता तिरुनीलकंठ यालपाणर के यालवादन से बढ़ जाती है। इन अहंकारपूर्ण वचनों की सूचना प्राप्त कर भक्त हृदय व्याकुल हो उठा और उन्होंने स्वयं तिरुज्ञान संबंधर से प्रार्थना की कि वे ऐसा पद गाएं जिस पर किसी भारतीय याल पर संगत दे पाना संभव न हो। फिर ज्ञान संबंधन ने ऐसा ही पद गाया, याल पर संगत दे पाने में याल पानक असफल रहे। यद्यपि अपनी ही प्रार्थना पर यह घटना हो रही थी, फिर भी अपमान और निराशा के आवेश में वे याल को शिला पर पटक कर नष्ट करने लगे। फिर ज्ञान संबंधन ने उन्हें समझा बुझा कर शांत किया। इसके बाद भी सदा याल पानक फिर ज्ञान संबंधन के साथ रहे, उनके गीतों की संगीत प्रदान करते रहे। उनका शिवलोक गमन उसी ज्योति के साथ हुआ जो त्रिज्ञान समुंदर के विवाह के अवसर पर अलौकिक रूप से प्रकट हुई थी, और वे शिव कैलाश पहुंच गए। इसीलिए उन्हें उच्च कोटि का स्थान प्राप्त है और प्रिय पुराण में उनका उल्लेख है। ओम नमः शिवाय।
0: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radios, 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi. Presented by Maha Mandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Na dharma chakshu ki charcha ki. Bhagwan ne jnana chakshu ki charcha ki. 15th adhyay mein. Lekin puri Gita mein dharma chakshu ki bhi charcha hai wo. Charma chakshu ki kai charcha nahi hai. Leo ji. गीता में चर्म चक्षु की कहीं चर्चा नहीं। गीता ने यह नहीं कहा कि चर्म चक्षु ठीक रखना चाहिए अर्जुन, ये नहीं कहा है। तेरे चर्म चक्षु से ही सारा गड़बड़ हो रहा है। अर्जुन ने यदि युद्ध के बीच में रथ में बैठकर चर्म चक्षु से युद्ध तैयारी के व्यक्तियों को न देखा होता तो शोक अंदर घुसता है। बोलो, अर्जुन की हृदय में शोक कब घुसा? जब चर्म चक्षु से देखा, ये तो मेरे बंधु हैं, मेरे सखा हैं, मेरे पिता हैं, मेरे गुरु हैं, सब मेरे बंधु बांधव चारों तरफ, ऐसा युद्ध करना बेकार है। तो सारा गड़बड़ किसने किया? चर्म चक्षु ने। और भगवान ने कहा क्या? ये चर्म चक्षु पर भरोसा न कर अर्जुन, तो धर्म चक्षु से देख धर्म क्या कहता है। धर्म क्या कहता है? स्वस्वे कर्मण्य विरत संसिद्धि लभते नरा। देख लो क्या कह रहा है धर्म। स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। क्या कहता है धर्म? अर्जुन तेरा धर्म चक्षु खोल, ये चर्म चक्षु से काम न चलेगा यहां है। और केवल चर्म चक्षु से माने केवल धर्म चक्षु का उपदेश नहीं किया, धर्म चक्षु के बाद ज्ञान चक्षु भी खोल दिया। हाँ, क्या खोला? देही नोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र नमुयति। न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भवितावान भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये कौन सी दृष्टि है? ये ज्ञान चक्षु। भगवान ने अर्जुन के दो चक्षु खोल दी। कौन कौन सी? धर्म चक्षु और ज्ञान चक्षु। हाँ, धर्म चक्षु और ज्ञान चक्षु खोलने का परिणाम क्या हुआ? नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादान मयाच्युता स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। लेव जी महाराज, ये तो बात स्पष्ट हो गई। ये चर्म चक्षु ने तो हमको धोखे में डाल दिया। ये तो आपने बचा दिया भाई, हम तो चर्म चक्षु जो कहता है वही ठीक मानते रहे, चर्म चक्षु पर भरोसा करते रहे। लेकिन बात कुछ और है। हाँ, सारा संसार 99% व्यक्ति चर्म चक्षु पर ही भरोसा करते हैं। हाँ, धर्म चक्षु और ज्ञान चक्षु की तो बात ही छोड़ दो। कभी कभी ज्ञान चक्षु की तो खाली चर्चा होती है, प्रयोग नहीं होता है। होता है हा? धर्म चक्षु की चर्चा भी होती है, प्रयोग भी होता है, कभी कभी एकादशी के दिन साबूदाना की खिचड़ी खा लेते हैं, प्रयोग भी होता है हैं, धर्म चक्षु के एकादशी के दिन साबूदाने की खिचड़ी खाना ये धर्म का विषय है, ज्ञान का विषय नहीं है, ध्यान देना। ज्ञान का विषय तो क्या है, चाहे दाल भात खाओ चाहे साबूदाना की खिचड़ी खाओ, खाने वाला प्राण और इंद्रियां हैं, आत्मा तो अभोक्ता है, अकर्ता है, अभोक्ता है, असंग है। देखो इंद्रियस्य इंद्रियार्षे तु वर्तन्त इति धारयः। लेव जी क्या कहा, ज्ञान चक्षु क्या कहता है, इंद्रिया अपने विषय में विचरण करते हैं, राग द्वेषो व्यवस्थित हो तयोर न वसमागच्छत तव यथ्य परिपंतिनो। देख लो ज्ञान चक्षु के बाद तो क्या गजब की भूमिका आती है। तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा हुई, अर्जुन के तीसरा नेत्र खुल गया। तो अब अर्जुन क्या हो गया बोलो, है त्रिनायनम हो गया वो हाँ? अर्जुन अब क्या हुआ हाँ? ये त्रिनायन अब कौन हो गया अर्जुन हाँ? केवल शिवजी नहीं जीव भी त्रिनयन हो सकता है। कब? तुम्हारी जो तीसरा आंख है ना वो बंद पड़ी है, वो खुलने का कोशिश तो कर रहे हैं हाँ? खुल जाए तो भगवत इच्छा है। अर्जुन की कृपा हुई तो प्रसादान, भगवान के प्रसाद से कृपा से अर्जुन का तीसरा नेत्र खुल गया। और आपके भी इसी तरह भगवान का कृपा, गुरु के कृपा, शास्त्र के कृपा, आत्म कृपा, चारों कृपा एक साथ हो जाए तो आपके भी तीन नेत्र, तीसरा नेत्र खुल जाए ज्ञान चक्षु, और आप त्रिनेत्र त्रिनेत्र त्रिनयनम हाँ, आप फिर जीव भाव से सर्वथा हटकर आप क्या कहने, अभी क्या कहते हो जीवो हम, तीसरा नेत्र खुलेगा तो क्या बोलोगे शिवोहम है हाँ? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम कब कहोगे, ये कहना तो अभी भी कह रहे हो, कहने मात्र से कुछ नहीं होने वाला है। जो कह रहे हो वो जी रहे हो कि नहीं, शिव के रूप में जीने का अवस्था तो वो तीसरा नेत्र खुलेगा तब, क्योंकि शिव जी रहे हैं हाँ? आ शुरू किया था शिवानंद लहरी और पहुंच गए ब्रह्मानंद लहरी में हैं? कहां पहुंच गए, शुरू किया था कहां शिवानंद लहरी और पहुंच गए कहां ब्रह्मानंद लहरी, एक ही चीज है भैया हाँ, एक ही चीज है। ये त्रिनयनम तीन नेत्र की बात करना बहुत जरूरी था। त्रयी वेद्यम हृद्यम त्रिपुरहरमाद्यं त्रिनयनं जटाभारोदारं चलदुग्रगारं

दूसरे का तीसरा नेत्र खोल सकेगा। जिसका तीसरा नेत्र बंद होगा तो दूसरे का तीसरा नेत्र खोल पाएगा? बोलो। जिसका चर्म चक्षु बंद होगा वह दूसरे के चर्म चक्षु का ऑपरेशन कर पाएगा? बोलो। कुलीन कोठारी के अपनी आंख ठीक होगी तब ना तुम्हारी आंख ठीक करेगा, है? यदि उसकी आंख बिगड़ गई, अंधा हो गया वो, तो क्या तुम्हारी आंख का ऑपरेशन करेगा? फिर भी चर्म चक्षु जिसके खुली है वो चर्म चक्षु खोलेगा, धर्म चक्षु जिसकी खुली है वही धर्म चक्षु खोलेगा, ज्ञान चक्षु जिसकी खुली हुई है वही दूसरे के ज्ञान चक्षु खोलेगा। क्योंकि शिव के ज्ञान चक्षु खुले हुए हैं इसलिए वही समर्थ हैं हमारे ज्ञान चक्षु खोलने में। हे भगवान, हमारे ज्ञान चक्षु खोल दीजिए ताकि हम भी त्रिनेत्रम बन जाएं। जटाभारोदारम कहते हैं भगवान शिव पहले बहुत चंचल थे, बहुत चंचल। एक कहावत है, वो बंदर को भांग पिला दो तो क्या अवस्था होगी उसकी, है? बंदर को यदि भांग पिला दो और उसको कहो कि तू कुर्सी में बैठ, बैठेगा? एक तो बिना भांग पिए ही बंदर इतना चंचल है, उसमें भी भांग पी ले वे, बोलो क्या वो स्थिर होकर बैठ पाएगा? वो कहते भगवान शिव बहुत चंचल थे क्योंकि पहले खूब भांग पीते थे वो, है ना? भांग पीते थे तो बहुत चंचल थे। सब लोग बहुत समझाए बेचारे, भगवान आप तो परमात्मा है, सारे जगत आपको मानते हैं, इतने उतावले मत बनो, इतने चंचल मत बनो, जरा गंभीर होकर बैठो। अब क्या करें, वो आदत से मजबूर है, बहुत चंचल। सब लोगों ने विचार किया कि इनकी चंचलता को कैसे रोके, कहने से तो मानने वाले है ही नहीं। तो सब लोगों ने भगवान को कहा, शिव जी को, हे शिव जी आप जटा बढ़ाओ, खूब सिर में जटा बनाओ, तपस्या करो और जटा बनाओ। तब भगवान शिव ने जटा बढ़ाना शुरू किया, इतना जटा इतना बढ़ गया। तो भगवान शिव की जटा का उल्लेख किया किसने? रावण ने, शिवतांडव स्तोत्र में। जटा कटाह संभ्रमम, हे शिव आपके सिर का जो जटा है ना वो कैसी है? आकाश मान लो एक कड़ाही है, हाँ? जटा कटाह संभ्रमम, आकाश कैसी है? इस समय आपको आकाश कैसा दिख रहा है? उल्टा करके रखे हुए बड़ा कड़ाही जैसा लग रहा है कि नहीं, हाँ? बड़े बड़े आश्रमों में भंडारा होता है ना, समष्टि भंडारा, वो पकाने के लिए कड़ा होते, कड़ाई क्या होता है? कड़ा होता है, बड़े बड़े लोहे के कड़ाई, जहां पांच पांच दस दस हजार के लिए भोजन बनता है और खीर पकती है, है? लोहे के कड़ाई। तो मांजने के बाद उसको उल्टा करके रखते हैं, क्यों उल्टा करते हैं मांजने के बाद पता है? सीधा करके रखोगे तो पानी रहेगा तो उसमें जंग लग जाएगा, तो उल्टा कर देने से पानी नहीं रहेगा तो जंग नहीं लगेगा, मांजने के बाद चमक बनी रहेगी, इसके लिए उल्टा कर देते हैं, हाँ। इसी तरह आप ऊपर से देखोगे कैसा लगता है आकाश, है? किसी ने आकाश को, कड़ाई को उल्टा करके रख दिया। ये आकाश जो है ना, देवता लोगों को हलवा पका के खाने के लिए कड़ाई है, हाँ। और हमने देखा आश्रमों में वो बड़ा कड़ाई उल्टा करके रखा, तो कड़ाई के नीचे कभी भी सफाई न करे कर्मचारी तो गंदगी रह गया कड़ाई के नीचे, क्योंकि एक आदमी तो इलाज जुला पाएगा नहीं, तो जहां गंदगी आ गई तो मच्छर बहुत हो गए और वो सारे मच्छर वो कड़ाई के अंदर ही उड़ते थे। ऐसे कभी जाके देखो, उड़ते थे कहां? कड़ाई के अंदर उड़ते थे। इसी तरह आप लोग भी देवताओं की कड़ाई के अंदर उड़ रहे हो। देवताओं की कड़ाई क्या है? आकाश। आम जीव क्या है? उस आकाश के नीचे वो कड़ाई के अंदर घूम रहे। और रावण ने क्या कहा है देखो, असंभव।

0: भ्रमम। जैसे हम लोग हलवा बनाते हैं ना छोटी सी कढ़ाई में, हलवा अच्छी तरह सिक गया और पक गया तब वो हलवा कढ़ाई को छोड़ देता है, कढ़ाई से चिपकता नहीं है, छोड़ देता है। और छोड़ने के बाद तुम चलाओगे तो वो कढ़ाई में घूमता रहता है, पूरा हलवा पूरा एक पूरा घूमेगा वो, जितना चलाओगे घूमता ही रहेगा वो। रावण ने उस दृश्य का स्मरण किया, हे शिव आपकी जो जटा है आकाश रूपी कढ़ाई के अंदर इस तरह घूम रही है जैसे कि हलवा घूमता है। संभ्रमम, हाँ, जटा कटाह संभ्रमम, तो इसीलिए जटा। और वो जटा भगवान शिव की इतनी बड़ी हो गई कि उनको संभाल संभाल के बांधे रखे, हाँ, तो उसके वजन से भगवान शिव की चंचलता हट गई, तब वो गंभीर हो गए, क्योंकि चंचल करेंगे तो कहीं जटा इधर उधर बैलेंस बिगड़ जाएगा, तो सिर सीधा रखना पड़ेगा, हैं? तब फिर तब गंभीर होने लग गए भगवान शिव, तब फिर कैलाश में बैठे गंभीर, फिर उनकी चंचलता चली गई। वही कह रहे हैं यहां जटा भारोदारम चल दुर्गहारम मृगधरम चलत उरग, चलत माने चंचल, उरग माने सर्प, सर्प का नाम है उरग, उर का मतलब होता है छाती और पेट, उर का अर्थ होता है छाती या पेट, और छाती या पेट से जो चले तो क्या हुआ चलत उरग, चलत उरग, चलत का अर्थ हो गया अति चंचल। इसलिए साधु के भाषा में कहा गया है तीन चार सकार एक ही स्वभाव के हैं, चार सकार साधु सरिता सर्प और शेर, ये चार चीज एक जगह कभी भी बैठे नहीं रह सकते। साधु भी चरैवेति चरैवेति, इसीलिए साधु के नाम के आगे परिव्राजकाचार्य लिखते हैं, घूमने में मास्टर, आचार्य माने, आचार्य माने क्या मास्टर, तुम लोग मास्टर कहते हो हम लोग आचार्य कहते हैं, साधु क्या है चलने में मास्टर, साधु जितना चलता है तुम लोग क्या चलोगे भाई, घूमता ही रहेगा घूमता ही रहेगा। परिव्राजक चारों तरफ ब्रजति गच्छति इति परिव्राट, परि माने चारों तरफ, ब्रजति गच्छति परिव्राट, परिव्राट में आचार्य मास्टर परिव्राजकाचार्य, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परिव्राजकाचार्य। लेव जी साधु एक जगह कभी नहीं बैठता है, हाँ। और दूसरी बात सरिता नदी, सरिता का अर्थ होता है नदी, सरिता सतत बहती ही रहती है, स्थिर होकर नहीं रहती है, चलायमान गतिशील। और इसी प्रकार के सर्प कभी भी एक जगह नहीं बैठेगा, आज यहां देखा तो कल खोजने जाओ वहां नहीं मिलने वाला, कहां का कहां पहुंच गया वो। और शेर भी एक जगह नहीं बैठता है, इसलिए कहा चलित चलत उरग, अति चंचल जो सर्प है वह, उसको भगवान ने क्या बनाया हारम, चलग उरग हारम, चलत उरग हारम, उसको आगो, इसकी व्याख्या तो हमने कल कर दी थी, सर्प को भगवान शिव ने हार क्यों बनाया ये तो हमने कल व्याख्या कर दी थी, है? सब लोगों ने तिरस्कार किया, रोने लग गए, महाराज आपके कहने से हमने पृथ्वी में गिरे हुए विष का पान किया, चाट लिया, पृथ्वी को शोधन कर दिया, अब उसका परिणाम यह कि जो भी हमको तिरस्कार कर रहा है डंडा मार रहा है भगा रहा है हम किसके आश्रय में रहें। भगवान ने कहा कि चिंता, क्योंकि तू मेरा आज्ञाकारी है इसलिए ले आ मेरे हृदय में बैठ, जटा में बैठ जा, ये काम आ गया ना, महिलाएं अपने केस बांधने के लिए एक रबड़ बैंड प्रयोग करती है ना, भगवान शिव का रबड़ बैंड, वाह क्या बढ़िया, जटा इतना बड़ा था जब भी इधर उधर चले तो वो जटा नीचे गिर जाए, हैरान हो गए, अब क्यों साधारण रबड़ बैंड से बंधे वो, पकड़ लिया सर पर बांध लिया, अब तू हिलना नहीं, लेव जी। सर्प उसको बांध के बैठा है। मृगधरम शिव का नाम है ये भी, मृगधरम। भगवान शिव के चार हाथ चतुर्भुज मूर्ति देखोगे, चतुर्भुज, उसमें एक हाथ में मृग है, मृग हरण हिरण रखा हुआ है, मृगों को ऐसे पकड़ रखा है। उसके दो पांव ऊपर की तरफ हैं, दो पांव दो उंगलियों से दबा रखा है भगवान शिव ने। हां ये उनकी विशेषता है। ये एक प्रतीक है। मृग असाद बहुत ही चंचल प्राणी है, जंगल में मृग अति चंचल प्राणी है, और तुम्हारे अंदर मन अति चंचल है। मृग के चार पांव हैं तो तुम्हारे भी मन के भी चार पांव हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार पांव हैं, इन्हीं चार पांव से उछलता है। ज्ञानी लोग का मन धर्म और मोक्ष दो पांव का प्रयोग करते हैं ज्यादा, अज्ञानियों का अर्थ और काम का प्रयोग होता है। तो मन के चार पांव हैं, लेकिन वो अति चंचल प्रतीक, मन की जो चंचलता वो हिरण के साथ प्रतीक बनाकर भगवान शिव ने वो रखा है। तो हिरण को पकड़ के उसके दो पांव को, पीछे के दो पांव को पकड़ के रखा है। पीछे के दो पांव को पकड़ा का मतलब होता है मन को अर्थ और काम में प्रवृत्त होना न देना। मन के चार प्रकार के वृत्तियों में से अर्थ काम जीवात्मा के लिए सर्वथा घातक होने के कारण जीव का कल्याण तभी संभव है, सबसे पहले अर्थ और काम वृत्ति पर नियंत्रण करे और धर्म और मोक्ष वृत्ति को प्रयोग करे। ये प्रतीक है। इस अपरोक्ष माने शिवानंद लहरी पर श्रद्धे हमारे गुरु महाराज ने प्रवचन किया है, चतुर्मास में दिल्ली में प्रवचन किया था, महाराज ने यही अर्थ किया है, वो प्रतीक है। इसलिए मृगधरम, भगवान शिव का नाम तब से मृगधर हो गया। महादेवम देवम, देव शब्द का अर्थ होता है प्रकाश, देवतना देव, जो हमेशा प्रकाश स्वरूप है वही देव है। महादेवम, देवताओं में वो देव होने के कारण उनका नाम महादेव हुआ, और देवम प्रकाश स्वरूप है। मयि सदय भावम पशुपतिम, मयि मेरे प्रति, हे भगवान सदय भाव आप में होनी चाहिए, सदय भाव मेरे प्रति दया का भाव आपके हृदय में जरूर होनी चाहिए। यदि आप ही मेरे प्रति दया नहीं करेंगे तो और कौन दया करेगा महाराज? क्यों? आप पशुपति हैं और मैं पशु हूं। आपका नाम पशुपति क्यों हुआ? क्योंकि हम सब पशुओं की रक्षा करने वाले होने के कारण आपका नाम पशुपति हुआ है, और आपका पशुपति नाम तभी सार्थक होगा मुझ पशु के प्रति आप दया करें और मुझ पशु की आप रक्षा करें। रक्षा दो प्रकार से होता है, एक भरण पोषण से रक्षा करना होता है और दूसरा विजातीय शत्रु पक्ष से, नाशक तत्वों से रक्षा करना होता है। केवल नाशक तत्वों से रक्षा कर लिया और भरण पोषण नहीं की तो वो रक्षा का कोई मतलब नहीं। एक ने बिल्ली पाली थी तो कुत्ते के साथ उसके दुश्मनी हो गई, किसकी? बिल्ली की। कुत्ता उसको देखना ना चाहे, मौका मिले तो उसको पकड़ के खाने की चेष्टा करे, तो उसने विचार किया, बेचारा ये कुत्ता खा डालेगा इसके, इसलिए क्या करना चाहिए? तो एक टोकरी में बंद करके रख दिया, पिंजड़े में बंद कर दिया। किसको? बिल्ली को। अब रक्षा हो गई कि नहीं बिल्ली की? बंद करके चला गया, अब खाने नहीं दिया है, तो बिल्ली की रक्षा हुई कि नहीं? अब कुत्ता मार पाएगा उस बिल्ली को है, क्योंकि उसको बंद कर दिया टोकरी से, कुत्ता उसको मार पाएगा? अब बिल्ली की रक्षा हो गई कि नहीं? अरे इस प्रकार के रक्षा से कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि खाना देता और खाना भी नहीं दिया तो क्या करेगा, और कह रहा कि मैंने बिल्ली की रक्षा कर दी, फिर खाने भी दिया नहीं दिया, दो दिन के बाद तो देखा बिल्ली मर गई है। सब लोगों ने कहा कि क्या हुआ, बोले बिल्ली मर गई, तूने तो कहा था बिल्ली की रक्षा कर दी कुत्ते से, बोले हाँ कुत्ते से तो रक्षा कर दी लेकिन खाने नहीं दिया था, वो कुत्ते के रक्षा करने का प्रयोजन क्या सिद्ध हुआ। हे शिवा, ऐसा ना हो कि खाने भी दो यमराज से भी रक्षा करो है, और यमराज से रक्षा तो करो, इधर खाने नहीं दोगे फिर यमराज से रक्षा करने का प्रयोजन क्या हुआ है। देखो सदय भावम पशुपति चिदालंबम सांबम शिवमति विडंबम हृदि भजे, शिव जी के ही सब विशेषण है, चित आलंबन चैतन्य ही उनका स्वरूप है, सांबम अंबा सहित पार्वती के सहित शक्ति के सहित, शिवम कल्याण स्वरूपम अति विडंबम, विडंबा विडंब का अर्थ होता है संसार, और संसार का नाम विडंब, और संसार का अतिक्रमण करके आप रहते हो इसलिए अति विडंबम, अति का अर्थ अतिक्रम अतिक्रांतम, विडंबम संसारम जन्म मृत्यु से भरा हुआ राग द्वेष से भरा हुआ यह जो संसार है, इस संसार से अतिक्रम यानी निकले हुए आपका स्वरूप है, ऐसे हे शिव हृदय भजे, ऐसे भगवान शिव का मैं हमेशा हृदय में भजन करता हूं, स्मरण करता हूं, यानी मैं हमेशा उनकी सेवा करता हूं, भजन का अर्थ सेवा भी होता है, भज सेवायाम धातु से भजन बनता है। तो आगे के श्लोक कल देखेंगे भाई। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम
1: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
2: Om Namah Shivaya.

शांति शांति शांति। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भगवान की कृपा से हम सभी लोग भारत की आर्थिक राजधानी मुंबापुरी महानगरी में प्रेमपुरी आश्रम में समवस्थित होकर ज्ञान गंगा स्रोतोवत यह जो स्वाध्याय प्रवचन चल रहा है इसका लाभ उठा रहे हैं। और विशेषकर यह वर्ष स्वनाम धन्य प्रेमपुरी जी महाराज का स्वर्ण निर्माण महोत्सव है और हम लोग आज शिव महिमन पर विचार करेंगे और आज ही सौभाग्य से उसी कैलाश आश्रम के जो दशम पीठाधीश्वर स्वनाम धन्य अनंत श्री विभूषित विद्यानंद गिरी जी महाराज जिनके चरणों में बैठकर मुझे करीब 20 वर्ष से शिक्षा दीक्षा पढ़ने पढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ उनका भी आज ही निर्माण महोत्सव है। प्रथम निर्माण महोत्सव है मार्ग शुक्ल चतुर्थी तदनुसार 1 दिसंबर आज पड़ता है। आज के दिन उनका निर्माण महोत्सव है और ऐसे पुण्य श्लोक का महापुरुषों को स्मरण करना चाहिए क्योंकि दशम पीठाचार्य हमेशा एक बात कहा करते थे कृतम प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातन। ये मनु महाराज का वचन है कैलाश के दशम पीठाचार्य विद्यान गिरिज महाराज कहा करते थे जिसने कुछ हमारे प्रति किया है उसके प्रति हमें कुछ उसके लिए तर्पण करना चाहिए। तो जो पंचम पीठाधीश्वर प्रेमपुरी जी महाराज उनका स्वर्ण निर्वाण महोत्सव है और दशम पीठाधीश्वर विद्यानंद गिरी जी महाराज का आज प्रथम निर्वाण महोत्सव है। जब सेंचुरी निर्वाण महोत्सव मनाएंगे तो दशम का तो स्वर्ण महोत्सव आएगा और पंचम का जो है सेंचुरी महोत्सव इसको हीरक जयंती बोलते हैं। 25 वर्ष के बाद रजत जयंती होता है 50 के बाद स्वर्ण होता है बीच में एक और कुछ आता है सेंचुरी में हीरक जयंती मनाते हैं। तो सौभाग्य जो दो महापुरुषों के निर्माण महोत्सव के कड़ी में हम लोग स्वाध्याय प्रवचन श्रवण कर रहे हैं। एक बात हमेशा उनकी याद आती है संस्थानों के विषय में कहा करते थे एक दृष्टांत देते थे हिमालय के कंदरा में दो महापुरुष साधना करते थे भगवान शंकर की कृपा से दोनों को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। दोनों में से एक जो महापुरुष थे वे तो उस ज्ञानामृत को बांटने के लिए समाज में आए ऋषिकेश पधारे ऋषिकेश के बाद में बंबई और यहां भक्तों को रास्ता बतलाया कि जाओ वहां पर ज्ञानामृत वितरित हो रहा है। और दूसरा संत वह है जो कि वहां पर जाने के बाद वापस नहीं आया मात्र वह अमृत के रसा स्वादन में डूब गया। तो दोनों में से विशेषता किसकी है यह स्वयं श्रोतालु निर्णय करके बतलाएंगे। जो संत वहां जाकर अमृत का स्वादन किए वहीं जाकर अमृत में डूब गए नीचे उतरे नहीं वह तो मात्र अपना उद्धार किए परंतु जो संत वहां से अमृत का ज्ञान प्राप्त करके पुनः देश विदेश में जाकर प्रचार किया कि इस प्रकार से आत्मज्ञान रूपी अमृत की प्राप्ति होती है उसकी महानता है। स्वयं भी अमृत का स्वादन किया दूसरों को भी करा रहा। ऐसे ही हमारे पंचम पीठाचार्य प्रेमपुरी जी महाराज हुए और दशम विद्यानंद गिरी जी महाराज जिन महापुरुषों ने कठोर तपस्या करके
जीवन में आत्मा का साक्षात्कार किया। साक्षात्कार करने के बाद बंबई जैसे महानगरी में आकर के यहां के लोगों के लिए भी रास्ता प्रशस्त किया, इसलिए उनका स्मरण करना बहुत जरूरी है। अब जरा हम लोग शिव महिमन की पुस्तक भी देख लें। आज है 13वां श्लोक, 12 तक विचार हो चुका है, पहले उच्चारण कर लें। यद्रिदिं सूत्राम्लो वरद परमोचैरपिशति मदश्चक्रे बाण परिजन विधेयस्त्रिभुवन नतचि।

0: पुष्प दंताचार्य जी भगवान शंकर की महिमा का गान करते हुए कह रहे हैं, यद्रिधिम सुत्राम्लो। ये शिव महिम स्तोत्र है। देखो दुनिया में जो है ना बहुत स्तोत्र है, पर शिव के महिमा का स्तोत्र, ये शिव का स्तोत्र नहीं बल्कि शिव के महिमा का स्तोत्र। क्योंकि नियम है, जब तक हम किसी की महिमा नहीं जानते तब तक उधर प्रवृत्ति या निवृत्ति नहीं होती है। इसलिए जो परम तत्व शिव है उसके महिमा को यहां पर बखान किया है ताकि मनुष्यों की प्रवृत्ति हो। इसी तत्व को मांडुक्य उपनिषद में मंत्र भाग में बतलाया है, शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम आत्मा इति मन्यन्ते। जो शांत है, शिव है, अद्वैत है, उसी आत्मा को तुरीय भी कहते हैं। अब उसके सगुण साकार विग्रह के विषय में यहां बतला रहे हैं, यद रिद्धिम सुत्राम्लो। सुत्राम्ला का अर्थ है इंद्र। पहले इसका मूल श्लोक का अर्थ कर ले हम लोग। जो इंद्र है सुत्राम्ला है, देखिए अन्वय करने का अर्थ होता है पहले संबोधन, संबोधन के बाद में विशेषण, विशेषण के बाद में क्रिया विशेषण, फिर क्रिया। ये पंक्ति लगाने की तरीका है। प्रथम संबोधन, संबोधन के बाद में विशेष्य, विशेषण, क्रिया विशेषण, फिर जाकर क्रिया, तब जाके किसी श्लोक का या संस्कृत काव्य का अर्थ लगता है। तो यहां पर वरद यह है संबोधन। वरद आया है आपको सुत्राम्लों के बाद में। वरद मतलब कि वरम ददातीति वरद। वर शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ, जो हमेशा अपने भक्तों को श्रेष्ठ चीज ही दे उसका नाम है वरद। मनुष्यों को भले पता न हो कि हमें क्या चीज वरण करना, वरण बोलते हैं चुनाव को, किस चीज का वरण करें, चुनाव करें, क्या श्रेष्ठ है, पर भगवान को पता है कि हमें अपने उपासक साधक को क्या देना है। छोटे बच्चे को यह पता नहीं होता है कि भगवान के मंदिर में जाने से, पूजा करने से, या स्वाध्याय से, या पठन पाठन से क्या लाभ होता है। छोटे बच्चे तो खेल कूद में या मिष्ठान के खाने में ही आनंद मानते हैं, पर माता पिता को पता है इसे क्या देना चाहिए। जो मासी होती है ना, वह तो मिठाई देकर खुश रखती है, पर माँ डांटती है, क्योंकि माँ को पता अधिक मिठाई खाएगा तो पेट खराब हो जाएगी। ऐसे भगवान को पता है कि हमारे उपासक को, भक्त को क्या श्रेष्ठ चीज देना है। एक बार बद्रीनाथ की यात्रा कराने के लिए एक अच्छे विद्वान ब्राह्मण भक्त को ले गए। यात्रा पूरी करा दी। यात्रा पूरी कराने के बाद सेठ ने कहा कि तुम्हें जो सबसे अच्छी चीज हो वह तुम मुझसे मांग लो, कुछ भी। तुमने हमारी 2 वर्ष तक अच्छी तरह से मुझे यात्रा कराया, जगह जगह घुमाया, वर्णन किया, प्रवचन सुनाया। लगभग आज से 50 वर्ष पुरानी बात है। उस गरीब विद्वान ब्राह्मण ने कहा बस समय केवल 10,000 रुपये चाहिए। उस सेठ ने कहा 10,000 रुपये क्या होता, मैं तुमको जो है एक बहुत सुंदर मकान बनवा के देता हूं जिसमें 4 कमरे होंगे, और तुम्हारे नाम से 1,00,000 रुपये बैंक बैलेंस कर देता। बड़ा खुश हो गया। उसने कहा कि जिंदगी में आज तक हमें किसी ने इतना दिया ही नहीं था। तो मांगने वाला तो अपने समझ से मांगता है। गरीब ब्राह्मण देवता के लिए 10,000 बहुत पैसे थे, परंतु सेठ के लिए कुछ भी नहीं। ऐसे ही भगवान शंकर वरद हैं, हमेशा श्रेष्ठ चीज ही अपने उपासक को देते हैं। तो हे वरद, जो समस्त भोग और मोक्ष को देने वाले, परिजन विधेय त्रिभुवन। इसके बाद इसका अन्वय करना, जो नीचे लिखा है ना, परिजन विधेय त्रिभुवन। जिसने कि अपनी उपासना से भक्ति से भगवान शंकर को प्रसन्न करके, परिजन बोलते हैं कि नौकर या सेवक दास, ये तीनों अर्थ होते हैं, पूरे संसार को त्रिभुवन को परिजन विधेय परिजन बना लिया, ऐसा है बाणासुर। आगे बाणा कन्वे करना, बरद परिजन विधेय त्रिभुवन बाण। जिस बाणासुर ने भगवान शंकर की उपासना करके त्रिभुवन को परिजन विधेय मतलब कि अपना दास बना लिया, परमोच्चैः सतिम सुत्रामण, जो सर्वोत्कृष्ट जो समृद्धि है जो कि इंद्र के सामने थी, उसको भी जिसने कि समझो कि तुच्छ कर दिया। रिद्धि मतलब ऐश्वर्यम, अपि यतः अधः चक्रे, यतः मतलब जिस बाणासुर ने भगवान शंकर से वरदान प्राप्त करके सुत्रामण इंद्र के ऐश्वर्य को भी फीका कर दिया, ततः त्वच्चरणयोः, वह केवल आपके चरण कमलों की वरीवशीतरी कार्थे सेवा नमस्कार आदि का प्रभाव है। तस्मिन् चित्रम त्वयि, यह बड़ा ही विचित्र है, न त्वयि शिरसः, जो कोई भी आपके चरणों में सिर झुकाता है, अवनति बोलते हैं झुकाने को, सिर झुकाते ही सब कुछ उसको मिल जाता है, जैसा कि बाणासुर को प्राप्त हुआ। त्वयि शिरसः अवनति कस्य उन्नति न भवति, आपके चरण कमलों में सिर झुकाने पर किस उन्नति के लिए वह नहीं होता है, अर्थात सभी प्रकार के भोग ऐश्वर्य को प्राप्त करा देता है। यह तो हो गया पदार्थ, इसको बोलते हैं पदार्थ। व्याख्यान के पांच लक्षण हैं, पदच्छेदो पदार्थोक्ति, विग्रहो वाक योजना और आक्षेप समाधान। किसी भी श्लोक का मंत्र का अर्थ करना हो तो पहले पदच्छेद करते हैं, बाद में पद के अर्थ को बतलाते हैं पदार्थोक्ति, इसके बाद में विग्रह, विग्रह बोलते स्वरूप का निश्चय करना, किसका क्या अर्थ होना चाहिए, व्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव दोषत्र से रहित हो उसका नाम है विग्रह। विग्रह के बाद में इसके बाद में आक्षेप समाधान और वाक्यार्थ, ये पांच मिला करके श्लोकार्थ कहलाते हैं। तो यहां पर बाणासुर का दृष्टांत दिया कि बाणासुर ने भी भगवान शंकर की उपासना किया था, इंद्र ने भी, इंद्र ने भगवान शंकर के सोमास्कंद, एक बड़ा ही सुंदर दक्षिण भारत में मशहूर ग्रंथ है जिसका नाम है शिव भक्ति चरित्र, संस्कृत में, उसका हिंदी अनुवाद अभी तक नहीं हुआ है, तमिल भाषा में अनुवाद मिलता है। तो शिव भक्त चरित्रम में भगवान शिव की ऐसी महिमा वहां पर प्रमाण के साथ बतलाई है कि इंद्र ने भगवान शंकर की उपासना करके सोमास्कंद प्राप्त किया था और खोई हुई ऐश्वर्य को उपलब्ध हुआ था, परंतु बाणासुर ने ऐसी उपासना किया कि इंद्र का ऐश्वर्य भी तुच्छ हो गया। दोनों के ऐश्वर्य में बड़ा भारी अंतर है। जैसे कोई सेठ, आजकल सेठ लोग कहते हैं ना कि बच्चे तो हमारी बात नहीं मानते परंतु नौकर मानते हैं, बच्चे को पता है कि पापा नाराज होंगे तो कुछ कर तो सकते नहीं, घर से निकाल नहीं सकते, बहुत ज्यादा करेंगे डांटेंगे फटकारेंगे बस, परंतु नौकर को पता है यदि मैं बार बार गलती करूंगा तो सेठ बाहर खदेड़ देगा, इसलिए नौकर जी हजूरी करता है, बार बार जो है ना आगे पीछे घूमता है। तो दोनों ही हाथ जोड़ते हैं, परंतु बच्चा जो है पिता के गुण से प्रभावित होने के बाद आदर करता है, परंतु नौकर पैसे के लोभ में या नौकरी के कारण से जी हजूरी करता है। तो इंद्र का ऐश्वर्य तो नौकर के समान है, इंद्र से लोग भयभीत होकर उसको आदर करते हैं, परंतु बाणासुर के जो भक्त अनुयायी हैं वे डर कर नहीं करते, बल्कि परिजन के समान, दास सेवक के समान आदर करते हैं। इस प्रकार के ऐश्वर्य को भगवान शंकर के चरणों के उपासना से उपलब्ध किया। न तस्मिन चित्रम, जब बाणासुर और इंद्र भी भगवान शंकर की उपासना करके इतने ऐश्वर्य को उपलब्ध हो सकते हैं, तो हम आप उपलब्ध क्यों नहीं हो सकते? बशर्ते हम लोग करते नहीं, हम लोग सोचते बहुत हैं। जैसे शेख चिल्ली की बहुत मशहूर कहानी है ना, सब कुछ जानते हैं, सुनते हैं, मनोराज्य करते हैं, परंतु अमल नहीं करते हैं। यदि बाणासुर जैसे जो कि असुर कुल में उत्पन्न हुआ, वह भी भगवान शंकर की उपासना से भावी को मिट सकता है, तो फिर जो साक्षात भगवान के भक्त हैं वे उपासना करें तो क्या चीज उपलब्ध नहीं हो सकता है? अर्थात सब कुछ उपलब्ध हो सकता है, बशर्ते हम लोग श्रद्धा से उपासना करें। इसलिए कह दिया, न तच्चित्रम तस्मिन त्वचरणयो वरीवशी तरी, आपके चरण कमलों की उपासना से अलभ्य स्त्री ऐश्वर्य भी प्राप्त हो जाता है। पुष्प दंताचार्य जी कहते हैं कि भगवान विष्णु जब देवासुर संग्राम में दैत्य लोग मारे गए, कुछ दैत्य भग करके भृगु पत्नी के शरण ग्रहण की। दैत्य जब देवता से हार गए तो हारने के बाद भागते भागते महर्षि भृगु के आश्रम में गए। वहां जाकर क्या देखते हैं कि वहां पर भृगु महर्षि नहीं है, तो भृगु पत्नी के चरणों में गिर पड़े और बोले, त्राहि माम त्राहि माम। भृगु पत्नी ने उन्हें अपने कमरे में छिपा दिया और कहा कि तुम चिंता मत करो, यहां तुम आराम से भयमुक्त होकर के तुम लोग निवास करो। इधर भगवान विष्णु पता लगाते लगाते बहुत दिन के बाद मालूम पड़ा कि दैत्य भाग करके भृगु पत्नी के शरण में गए हैं। भगवान विष्णु भृगु पत्नी के आश्रम में आते हैं, जैसे ही आते हैं वैसे ही भृगु पत्नी ने पाद से अर्घ से पुष्प से भगवान की पूजा की, स्तुति की, प्रार्थना किया और कहा कि आप आप्त काम है, आपका दर्शन जो है किस प्रयोजन से हुआ, क्योंकि आप पक्षपात रहित देवता माने जाते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हमारे आगमन के कारण को तुम जानती हो, दैत्य तुम्हारे आश्रम में छिपे हुए हैं, तुम उन्हें जो है मेरे हवाले कर दो। भृगु पत्नी ने कहा कि शास्त्र में लिखा है कि शरणागत की रक्षा अवश्य करनी चाहिए, आपका ये बनाया हुआ संविधान है और मैं आपके अनुशासन के अनुसार ही इन शरणागत दैत्यों की रक्षा कर रही हूं और आप कृपया यहां से लौट जाइए। बहुत ज्यादा बात आगे बढ़ गई। बढ़ने के बाद भृगु पत्नी ने यहां तक कहा कि आप ही शास्त्र विधान किए हैं और आपने कहा है, बतलाया है कि शिवी ने शरणागत कबूतर की रक्षा किया था, एक कबूतर को बाज झपटा मार रहा था, वह कबूतर भागते भागते राजर्षि शिवी के पास गया, राजर्षि शिवी ने उस बाज पक्षी को अपना मांस काट कर दिया। बाज पक्षी ने कहा कि देखो मेरा भोजन कबूतर है, तुम इसकी रक्षा कर रहे, मैं भूखे मर जाऊंगा, तुम्हें पाप लगेगा। तो राजर्षि शिवी ने अपने मांस से उसको तृप्त किया। जब राजर्षि इतना कर सकते हैं तो मैं फिर शरणागत की रक्षा क्यों न करूं। अंततो गत्वा भगवान विष्णु ने अपने चक्र से दैत्यों का सामने ही बध कर डाला, अविरोध करने पर भृगु पत्नी का भी चक्र से सिर अलग कर दिया। इधर जो है महर्षि भृगु आते हैं, समाचार मालूम हुआ, बहुत उन्हें क्रोध आता है। क्रोध आने के बाद भगवान विष्णु को श्राप दे डालते हैं, जाओ तुम जो स्त्री हीन हो जाओ, लक्ष्मी से तुम्हारा वियोग हो जाए और तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगे, क्योंकि तुमने ब्राह्मण पत्नी को मारा है जो गर्भिणी थी, जो शरणागत रक्षा कर रही थी। इस प्रकार से भगवान विष्णु को जब श्राप दे दिया, श्राप देने के बाद लक्ष्मी का भगवान विष्णु से वियोग हो जाता है और भगवान विष्णु को ब्रह्म हत्या पीछे पड़ती है। इसके बाद भगवान विष्णु वैकुंठ लोक को छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद जो है वह दक्षिण में कमलालय नामक एक तीर्थ है, उस कमलालय नामक तीर्थ में जाकर के महेश्वर की उपासना करते हैं। 1000 कमलों से हर दिन वे उपासना करते थे। भगवान शिव प्रसन्न होकर के दर्शन देते हैं और ब्रह्म हत्या को नष्ट करके उन्हें सोमास्कंद नामक एक शिवलिंग भेंट करते हैं और कहते हैं कि तुम इस सोमास्कंद नामक शिवलिंग की पूजा हमेशा करते रहोगे तो कोई भी पाप ताप संताप तुम्हारे भक्तों को नहीं लगेगा। तो पुष्प दंताचार्य जी कहते हैं कि भगवान विष्णु ने भी यहां पर दो कथा थी। एक तो कथा है जो काशी में मणिकर्णिका घाट है, जिसको चक्र पुष्करणी तीर्थ कहते हैं, वहां पर ही भगवान ने किसी एक कल्प में नेत्र प्रदान करके सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। और दूसरे पुराण में किसी दूसरे कल्प की यह भी कथा है कि सोमास्कंद नामक शिवलिंग को भगवान शंकर से प्राप्त किया था।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियो, the 24/7 spiritual channel from shaivam.org.
2: Dear listeners of shaivam.org, the following is Atharvana Veda, Saunaka Shaka, Kandam 2, Sukta 28. Thank

0: ஓம் நம சிவாய். டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர் ரேடியோ, தி சைஸ் ஆஃப் அவர் ஆடியோ கலெக்ஷன் கண்டினியூஸ் டு க்ரோ டே பை டே. வி நவ் ஹோஸ்ட் மோர் தேன் 25,000 ஆடியோ ரெக்கார்டிங்ஸ். இன் ஆர்டர் டு மேக் தீஸ் எக்ஸ்டென்சிவ் ரிசோர்ஸஸ் மோர் ஆக்சசிபிள் அண்ட் பெனிஃபிஷியல் டு அவர் ரேடியோ லிசனர்ஸ், வி ஹவ் ரீஆர்கனைஸ்ட் அவர் ப்ரோக்ராம் ஷெட்யூல். திருமுறை மியூசிக் அண்ட் திருமுறை டிஸ்கோர்சஸ் வில் பி ப்ராட்காஸ்ட் ஆன் திருநெறிய தமிழோசை. Philosophical discourses and Periyapuranam lectures in Tamil will be broadcast on Shiva Tattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaiva Lahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. ஓம் நம சிவாய்.
1: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் தைத்திரிய உபநிஷத் பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ ஆனந்த அந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய்.
2: तैत्तिरीय उपनिषद को लेकर के प्रसंग चल रहा है, जिसके अंतर्गत चर्चा ये की जा रही। ऋषि जो है पहले अपने उन पूर्व ऋषियों की जो है शुभकामना धन्यवाद देते हुए आभार प्रकट करते हुए उनको नमस्कार किया। उसके पश्चात अर्वाचीन जिन ऋषियों ने उस भाष्य आदि पर टीका की, वह जो है प्रार्थना करते हुए संकेत करते हैं और अपने प्रतिज्ञा वाक्य को भी संकेत करते हैं। कहा तैत्तिरीयको सारस्य मया आचार्य प्रसादतः विस्पष्टार्थ रुचीनाम ही व्याख्येयम् संप्रदीयते। यहां चर्चा की कि जो यह तैत्तिरीय उपनिषद है और इस उपनिषद का जो सार, जिसकी ऋषियों ने भी चर्चा की, जिस सार को हमसे कहा, उस सार को समझना बड़ा कठिन है। अर्थात सार तो आगे चल करके संकेत करेंगे आठवीं आदिवल्ली में कि ब्रह्मविद आपनोति ब्रह्म। तो अब जो ब्रह्म को जानने वाला वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता, ये कहेंगे आगे, ये सार है उपनिषद का। तो ब्रह्म शब्द से हम सब लोग एक तरह से देखा जाए तो परिचित है, लेकिन वो परिचय कैसा है, वो अप्रोच है, प्रत्यक्ष है या परोच, वो चीज अलग है। लेकिन उससे परिचित तो है ही, भले ही परोक्षतया परिचित हो या प्रत्यक्षतया परिचित हो, लेकिन उससे परिचित होने पर भी वह ब्रह्म का जो प्रबोध है, वह जो सार है, वही सारे की सारा सार बतलाते हुए कहा कि इस ब्रह्म से पृथक ब्रह्म सत्ता अतिरिक्त सत्ता कर्त्वाभावात्, ब्रह्म की सत्ता से कोई पृथक दूसरी सत्ता है नहीं। लेकिन यदि ऐसा है तो फिर हमारे जीवन में ये नाना प्रकार का उपद्रव क्यों, सुख दुख आना जाना, ये सब का सब जो है सोचना विचारना आदि फिर क्यों, जब एक ही सत्ता है तो वहां तो ये सब नहीं हो। इसका मतलब है कहीं न कहीं हमसे भूल है, कहीं न कहीं हम उस सार को ग्रहण करने में असमर्थ हैं। तो ऐसे उस सार को कब समझा जा सकता है, तब इसके लिए संकेत किया कि बगैर प्रसाद के इस सार को ग्रहण करना समर्थ नहीं। तो प्रसाद की बात कह दी, इसलिए कहा आचार्य प्रसाद तो हो, भगवत्पाद आचार्य के आचार के प्रसाद को लेकर के। अब प्रसाद क्या है, तो प्रसाद शब्द का अर्थ जो है प्रसन्नता कर दिया जाता है, प्रसादस्तु प्रसन्नता माने प्रसन्नता। अब प्रसन्नता भी जहां होगी तो प्रसन्नता का मतलब क्या है, सीधा सा सभी जानते हैं कि जहां पर किसी प्रकार का उद्वेग नहीं है, उद्वेग से रहतता का नाम ही है प्रसादता, प्रसन्नता। तो उद्वेग जो है कहां होता है, तो आप जो है भागवतात में देखते हो, उद्विग्न बुद्धि रसदात भावात, वहां ऐसी चर्चा की। और यही क्या है, यही सारे संसार का रोग है, सारे संसार में दुख का हेतु। सबसे बड़ा रोग क्या है, तो बुद्धि की उद्विग्नता। और वो बुद्धि की उद्विग्नता क्यों है, बुद्धि में उद्विग्नता क्यों आई, तो उस उद्विग्नता का हेतु बतलाया, कारण बतलाया कि असदात भावात, जो असत पदार्थ हैं उसमें हमारी सत भावना बनी हुई, उसमें सत्यत्व की बुद्धि बनी। तो असत पदार्थ में सत्यत्व की बुद्धि होना, यही बुद्धि की उद्विग्नता का कारण। हमारी बुद्धि की उद्विग्नता का कारण क्या है, असत पदार्थ में सत्यत्व बुद्धि होना, और उसी को लेकर के सारा झंझावात चलता रहे। अब यदि मन प्रसन्न हो जाए तो क्या होगा, तो कहा उद्विग्नता समाप्त हो जाएगी, तो क्या उसकी कसौटी, तो सत्य पदार्थ हमारे ग्रहण में आ जाएगा, असत्य पदार्थ में सत्यत्व बुद्धि फिर नहीं होगी, ये होगा। और वह सत्य जो है वही क्या है, कहा वही है सार। तो ऐसे उस सत्य रूप सार को ग्रहण करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो कहा असत की निवृत्ति हो या बुद्धि प्रसन्न हो, बुद्धि की उद्विग्नता समाप्त हो। और ये कब होगी, तो वहां भी संकेत किया, मैंने जो भगवान है उन भगवान के चरण कमलों का यदि वह बुद्धि सारा ले लेती है तो क्या होता है, तो कहने लगे उसकी उद्विग्नता समाप्त। मन्ये कुतश्चित् भयमच्युतस्य, वहां ऐसा शब्द आया, मने निर्भयता हमें कब प्राप्त होती है, जो अच्युत है, वहां ने शब्द नहीं दिया, अर्थात जो अपने स्वरूप से कभी भी बदलता नहीं, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसा जो परमात्मा है, ऐसे उस परमात्मा के चरण कमलों में यदि हमारी बुद्धि लग जाती है, तो उसके उन चरण कमलों के प्रसाद से हमारी बुद्धि की जो उद्विग्नता है वो समाप्त हो जाती है। और यहां तक कह दिया, जिसकी बुद्धि में ऐसी प्रसादता आ जाती है, तो कहने लगी विश्वात्मन निवर्तते भी, संपूर्ण जगत का जितना भी भय है वो उस बुद्धि से निवृत्त हो जाता, फिर कोई भय वहां रह जाता नहीं, सर्वथा वो निर्भयता की प्राप्ति कर लेता है। ये सब संकेत किया, तो ये प्रसाद की बात, मने आचार के प्रसाद से, आचार की कृपा से। और ये कब होता है, कैसे, तो एक छोटा सा दृष्टांत आपको दें। एक बार एक संत फक्कड़ थे, फक्कड़, और वो विचरण किया करते, आज यहां कल वहां, प्राचीन परंपरा ही ये थी। तो एक गांव में वह जाते थे, वहां पर उनके जो परिचित लोग थे सभी कुल मिलाकर के अपने जीवन निर्वाह को सुचारू रूप से करते। एक सीधा साधा सरल व्यक्ति था, उसका जीवन निर्वाह जो है सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा था। उन्होंने, संत ने उससे कहा कि वही अमुक अनुष्ठान कर, अमुक उपासना कर, इस प्रकार से तू व्यवसाय कर तो तेरा जीवन भी सुचारू रूप से चलने लगेगा। उसने उस प्रकार से प्रयास भी किया, उनके बताए हुए कार्यों को किया, लेकिन क्या हुआ, उसकी स्थिति वही की वही बनी। एक वर्ष में वो चक्कर लगाते थे, जब एक वर्ष के बाद आए और उसकी वैसी स्थिति देखी, तो फिर उन्होंने और उसको बतलाया कि अभी थोड़ी न्यूनता रह गई होगी, इसलिए तू इस और उपाय बतलाने लगे। उसके अनुसार भी उसने कार्य किया, लेकिन फिर भी उसे सफलता नहीं। तब जो है उन संत ने सोचा कि अब इस पर कोई उपाय ऐसा करना चाहिए जिससे जो है इसका जीवन सुचारू रूप से चले। तो उनको कहीं पर एक मड़ी मिल गई, उस मड़ी को लाकर के उन्होंने उसको दे दिया और कहा कि इस मड़ी को तुम ले लो, इस मड़ी का प्रभाव है कि जो आप लोहे आदि का भी स्पर्श करा दोगे तो वो सुवर्ण बन जाए। इस मड़ी के प्रयोग के द्वारा तुम अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाओ, लेकिन ध्यान रखना इसका प्रयोग उतना ही करना जितनी तुम्हें आवश्यकता, आवश्यकता से हटकर के जो है इसका प्रयोग मत कर। ऐसा कहकर के संत चले गए। वह जो है उस मड़ी को ले लिया उसने, फिर जाकर के उसका एक मित्र था, जो मित्र था वो लोहार था। उस लोहार के पास पहुंचा और उससे कहा कि भाई कुछ लोहा जो है मुझे उधार दे दो, क्योंकि उसकी सामान्य स्थिति थी। था तो मित्र, उसने पूछा कि भाई लोहे का तू क्या करेगा, और उसके पूछने का कारण ये था कि ये जो सामान्य जीवन जीना इसके लिए कठिन, तो हमारा ये कर्ज कैसे चुका पाएगा। इसलिए उसके अंदर न देने की इच्छा थी। उसने कहा कि भाई तू लोहे का क्या करेगा, कम से कम हमें बतला तो। उसने जो है सरल था, उसने सब बतला दिया। उसने कहा इस प्रकार से हमें मड़ी प्राप्त हुई है और किसी संत ने दी है, और जो है उससे हम सुवर्ण बनाएंगे। अब जब ये बात कही तो उसके मन में लोभ आ गया। उसने कहा तू हमारा मित्र है, तू लोहे की याचना क्या करता, तुझे लोहा हम वैसे ही दे देंगे, लेकिन हमको इसमें संदेह लग रहा है, हमको इसमें संशय लग रहा है, ये ऐसा संभव हो सकता नहीं। ऐसा कर, इसका परीक्षण करके हम देखते हैं, तू उस मड़ी को मेरे पास लिया और हम उसका प्रयोग करके देखते हैं, यदि मड़ी सही होगी तो हम तुझे लोहा दे देंगे, चिंता मत कर। लेकिन ऐसा संभव नहीं, कोई नकली ही तुझे मड़ी दे गया हो। वो सरल था, उसने लाके मड़ी उसको दे दी। जब मड़ी उसको दे दी, उसने उस मड़ी को रख लिया, कहा देख अभी दिन का समय है, अभी हमारा व्यापार चल रहा है, हम रात्र में अच्छी तरह से बैठ करके इसका प्रयोग करेंगे, तू कल मेरे पास आना। उसने मड़ी को रख लिया, सर्राफे से जाकर के वैसी ही दूसरी मड़ी उसने बनवा ली। दूसरे दिन जब वो आया तो उसने मड़ी लोहे पर फटक फटक करके उससे कहा कि देख ये मड़ी तो जो है नकली है, मैंने तो कहा था तेरे से। और जब इस प्रकार से उसने कहा तो बेचारा चुप वापस आ गया। एक वर्ष के बाद संत पुनः आए, देखा तो उसकी वही स्थिति। जब देखा कि उसकी वही स्थिति है तो संत ने उससे पूछा कि भाई तूने मड़ी का प्रयोग नहीं किया। उसने सारी कहानी सुना दी कि इस प्रकार से हमारा मित्र था तो वो मड़ी जो है नकली निकल गई। महात्मा समझते थे, महात्मा समझ गए कि इस बेचारे के साथ

0: తత్రయోనిమ్ కృణవసి నహి చే పూర్తమక్షిపాత్. ఈ మంత్ర కార్త సంబంధమే ఆయన సవిత్రా ప్రసవేన, సవిత్రా పరమాత్మ అథవా సూర్య సమలేన ప్రసవ కన్నే వాళ్ళకో అని ప్రసవేన సవితా మా హై అథవా సవితా పరమాత్మ హై సవిత్రా కే ద్వారా సారా సంసార మే అన్న ఉత్పన్న హోతా హై యాద్ రఖనా. సమ్యక్ ప్రస్థాహుతి ఆదిత్యం ఉపతిష్టతి. ఆదిత్య జాయతి మేఘ తతో వృష్టి తతో అన్నం తతో ప్రజా. ఆదిత్య అగ్ని మే జో ఆహుతియా డాలీ జాతీ హై నా, యే ఆహుతియా సీదా ఆదిత్య మే పహుంచతా హై. ఆదిత్య సే వర్షా హోతీ హై, వర్షా సే అన్న హోతే హై, ఇసిలియే ఆదిత్య కో క్యా బోలా సవిత్రా. సవిత్రా తో సవిత్రా దేవతా జో హై నా, సవిత్రా దేవతా సూర్య దేవతా అథవా దూసరా అర్థ మే ఇస్ పే పరమాత్మా లేనా. సవిత్రా దేవతా ద్వారా అని బాత్ జబ్ హమ్ ఉన్కో అనుజ్ఞా లేతే నా ప్రార్థనా కర్తే హో పహలే మంత్ర మే ఆయా తో సవిత్రా దేవతా సే అనుజ్ఞా హో కర్కే హమ్కో క్యా కర్నా చాహియే. బ్రహ్మ పూర్వం పూర్వీయం బ్రహ్మ సేవ దూషిత సేవిత. సనాతన జో బ్రహ్మ హై, చిరంతన జో బ్రహ్మ హై, ఉస్ బ్రహ్మ కీ సేవన్ కర్నా చాహియే, సేవా కరే. తత్ర జోనేమ్ కిరణవసే, తత్ర తత్ర ఉస్ బ్రహ్మ మే నిష్ఠా, జోని మనే నిష్ఠా, జోని మనే సమాధి. తో వహా నిష్ఠా కర్నీ చాహియే. అబ వహా నిష్ఠా నహీ కరే తో క్యా హోగా, ये विचार हुआ. पूछे आपने कहा तत्र योनि किणवसि, वहां जाने कुरुस्व, ये समझना किणवसि माने कुरुस्व, ये विधि व्याख्या है. वहां क्या करना चाहिए, निष्ठा करना चाहिए. कहा सनातन ब्रह्म में, जिस ब्रह्म को सेवन करने के लिए बोला है ना, उस ब्रह्म में निष्ठा करना चाहिए. अगर निष्ठा ना करने से तो क्या होगा, तो आगे बोलते हैं नहीं कि पूर्तम अक्षिपत. पूर्तम अक्षिपत नहीं थे, यदि नहीं करोगे तो पूर्त कर्म तुमको विक्षिप्त करेगा, संसार के भोग में लगाएगा. मतलब कि आप ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, कर्मनिष्ठ नहीं होना चाहिए. तो दो प्रकार के कर्म बताया था, ख्याल है कि नहीं, एक पूर्त कर्म और इष्ट कर्म. यह पूर्त शब्द से इष्ट का समझ लेना, उपलक्षण समझ लेना. इष्ट भी सर स्रोत कर्म और स्मार्त कर्म, अनिवार्य स्रोत कर्म कहो, स्मार्त कर्म कहो, इष्ट कर्म कहो, पूर्त कर्म कहो. इष्ट पूर्त मन्यमाना वरिष्ठम, वो उपनिषद में ना मंडक उपनिषद में भी आया. हाँ, इष्ट पूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम, केवल इष्ट और कर्म को मानते हो तो तुम्हारा संसार से छुटकारा नहीं मिलने वाले. हाँ, इष्ट पूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम, कुछ लोग इष्ट पूर्त को मानते हैं. कौन? कर्मकांडी लोग, पूर्व मीमांसक. बस कर्म ही सब कुछ है, कर्म के पीछे कोई है नहीं. ब्रह्म ईश्वर को नहीं मानते हैं ना, ईश्वर को. हाँ, तो पूर्तम अक्षिपत, पूर्त कर्म. पूर्त कर्म क्या करेगा, तुमको विक्षिप्त बनाएगा, अर्थात कर्म संसार में लगाएगा. पूर्त कर्म क्या समझते हैं ना, पूर्ति करने के लिए जो कर्म किया जाए, अभाव के पूर्ति करने के लिए जो कर्म किया जाए, या तालाब बनाओ, बगीचा बनाओ, अन्य नाना नानी के पार्क बनाओ, मंदिर बनाओ, तालाब खोदो, सड़क बनाओ, अन्न क्षेत्र खोलो, गौशाला खोलो, ये सब जो कर्म होते हैं ना सामाजिक, है उसका नाम पूर्त कर्म. इष्टकर्म स्वर्ग कामो जजेता तो तुमको स्वर्ग जाना है तो जजन करो, ये विधि व्याख्या है। किम जजेता स्वर्ग कामो जजेता, किम जजेता अश्वमेधे न जजेता, अश्वमेध यज्ञ करो, सोम यज्ञ करो, भार्गव यज्ञ करो, इष्टकर्म कूर्त कर्म वो इष्टकर्म राजा राजसूय न जजेत, अश्वमेधे न जजेत। राजा लोग बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, कौन सा अश्वमेध यज्ञ आनी पर राजसूय यज्ञ, सोम यज्ञ न, श्याम यज्ञ नहीं, श्याम यज्ञ शत्रु मारने के लिए किया जाता है। जो शत्रु होते हैं ना, शत्रु को मारने के लिए श्याम यज्ञ करो। ब्राह्मणा बृहस्पति सभी न जजेता, ब्राह्मणों को बृहस्पति जाग करना चाहिए, राजा को राजा से जाग करना चाहिए, अश्वम यज्ञ करना चाहिए, सोम यज्ञ करना चाहिए, ऐसे अलग अलग है। तो राजा लोग करते बड़े बड़े यज्ञ, जैसे राम ने अश्व छोड़ा था कि नहीं, अश्व यज्ञ किया। फिर इसी प्रकार पांडवों ने छोड़ा था कि नहीं। पहले पहले राजा लोग अश्व को छोड़ते थे, अश्व घूम करके आते तब यज्ञ करते थे, इससे पहले नहीं करते। इसी प्रकार राजा सगर जो है ना, राजा सगर ने छोड़ा था कि नहीं अश्व, जिसके पीछे 60,000 टिड्डी दल चला था। राजा सगर के 60,000 संतान थे, वो अभी कहते दो संतान, हम दो हमारे दो, ये क्या करेगा ये, कल दोनों मर गया तो रोना पड़ेगा कि नहीं रोना पड़ेगा। हाँ, अभी हमारे यहाँ अभी भी 16-16, 17-17 पुत्र को पालन पोषण करता है, तू एक के डर जाती है। हमारे यहाँ अभी दर्जनों पुत्र पैदा करने वाला, गांव में जाकर देखो जमींदारों को, तो जमींदार वगैरह तुम क्यों नहीं कर सकते हो, तो तुम नहीं कर सकते, तुम मत करो, जो करता है उसको करने दो ना। मैं तो कहता जिसको करना है करने दो ना, तुम क्यों रोकोगे, जिसको सामर्थ्य है करेगा, किरण नहीं। अब 8-8, 10-10 संतान तो अभी भी है, तो फिर वो नौकराई बात दूसरी है, नौकरी कौन देगा। अभी नौकरशाही में प्रवेश कर गया, पहले नौकरी नहीं करते थे, समझे क्या नहीं। आपने जमीन अभी क्यों बेच दिया सब, क्यों आ गए, खेती बाड़ी क्यों छोड़ दिया, आपने कमजोरी नहीं देखते हो तो दूसरा को कमजोरी आपने में आरोपित करते। सामर्थ्य होना चाहिए ना। अबे अबे मुसलमान चला सकता है 10-10, 12-12, 5-5 बीवी, 100-100 बीवी, अब हिंदू क्यों नहीं करता है, हिंदू क्यों नहीं चला सकता, मुसलमान कैसे चलाता है अभी भी, उसका 8-10 संतान होता है एक एक परिवार का। हमारे हिंदुस्तान में पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब हुआ 5 करोड़ मुसलमान थे, अभी 25 करोड़ कैसे हो गया, कैसे हो गया, क्या चार बीवी हो 50 बीवी होते ना। अभी भी अरब देश में एक एक मुसलमान का कोई जो है ना वो सौदागर मुसलमान 100-100 बीवियां रखते हैं। चलिए, तो कहने का मतलब समझे कि नहीं, कर्मा जो है ना, कर्मा बंधन का हेतु है, कौन सा, पूर्त कर्म। पूर्त कर्म क्या है, जो अभाव को पूर्ति करने के लिए, सामाजिक अभाव को पूर्ति करने के लिए जो किया जाता है, अन्न अन्न क्षेत्र खोलता है, धर्मशाला बनाता है, मंदिर बनाता है, सड़क बनाता है, कुआ बनाता है, प्याव बनाता है, ये सब बनाने वाला का कर्म का नाम पूर्त कर्म होता है। इष्ट माने बड़े बड़े यज्ञ है, राधा राधा सूर्य नजित अश्वमेधी नजित जजन करना चाहिए। आई बात तो क्यों आप कौन सा कर्म कर रहे हैं? पुराणिक कर्म भी होते हैं ना, विष्णु यज्ञ, रुद्र यज्ञ, फलाना यज्ञ, ये भी तो यज्ञ है ना, ये भी कर्म करते। उसमें पीछे कामना क्या है आपकी? आप क्यों कर रहे हैं यज्ञ? आप क्यों कर यज्ञ कर रहे हैं? कोई ना कोई लक्ष्य होगा ना। हाँ, बिना लक्ष्य से कोई कर्म होता नहीं। अरे बात लक्ष्य के बिना, हाँ आज कर्म करते क्या शास्त्र में लिखता है ना, फलम अनुद्देश्य मंदो बिना प्रवर्तते। फल के उद्देश्य के बिना मंद बुद्धि वाला मनुष्य भी किसी कर्म के लिए प्रवृत्त नहीं होता है। आप यहाँ जा रहे हैं, रास्ता में किसी बोला कहाँ जा रहे हो, बोले नहीं कहीं नहीं, तो जाता रहे हो कहीं नहीं गया, नहीं इसे थोड़ा काम है, तो बोलना पड़ेगा कि नहीं, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? मुझे जाना है। कहाँ जाना है? मंदिर जाना है। क्यों मंदिर जाना है? दर्शन करने के लिए जाना है। तो लक्ष्य बतलाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिना लक्ष्य से कुछ होता नहीं। तो यहाँ कहते हैं जो दोनों कर्म है, दृग दर्शन शक्ति और एकात्मता एवं अस्मिता। दृग का दर्शन, दृग कहते ज्ञान को, दर्शन कहते दृश्य को। आनी बात, ये दोनों के जो एकात्मता होती है उसको अस्मिता कहते हैं। जब तक अस्मिता नहीं होती है ना तो कर्म नहीं होता है। याद रखना, अहम भाव पहले अपने में आरोपित करना पड़ता है। अहम करोमी, मैं करता हूं, ये आप हमने कहा तो आपने हमसे पूछा क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कब कर रहे हो, कई प्रश्न एक साथ आता है तो बतलाना पड़ता है। किं करोमि, कथम करोमि, कस्मात करोमि, किम उद्देश्य करोमि, ये सब बातें आती है। आनी बात, ये सब बातें आती हैं। तो इसीलिए अस्मिता के बिना, अहम के आरोप के बिना कोई कर्म कोई करता नहीं। क्यों? जागृत अवस्था में रहता है अस्मिता, स्वप्न अवस्था में भी रहती है अस्मिता। स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म अस्मिता है, जागृत में स्थूल अस्मिता है, और सुसुप्ति में अस्मिता नहीं रहती है। हाँ, उस समय निर्लीन हो जाता है। उस अवस्था में तुम रहती हो कि नहीं रहती हो? हाँ रहते। तो उस अवस्था में तुम कोई कर्म करते हो, मैं इस कर्म का करता हूँ, ऐसे कर्मणा करता हूँ अस्मि, वैसे कर्मणा फलम में स्यात, तो नहीं है। तो इसीलिए जब दृग दृश्य दोनों एक हो जाता है, सुसुप्ति अवस्था में दृश्य अलग हो जाता है और दृष्टा अलग हो जाता है, इसीलिए उस समय अहम भाव नहीं रहता है। तो इसमें तो उस समय कोई भी कर्म, चाहे मानसिक कर्म हो, चाहे सांकल्पिक कर्म हो, आनी बात कोई कर्म नहीं होता है। तो देखो इसी का भाष्य चला था, कहां से नहीं आगे पहले स्लो देखो, हाँ सभी जैसे ज्ञान अग्निना, हाँ इसी का चला, नहीं ते पूर्त स्मार्त, देखो यहां से नहीं ते पूर्त स्मार्त, पूर्त माने स्मार्त कर्म, इष्टम श्रोत्रम स इष्ट कर्म श्रोत कर्म, हाँ ये आक्षेपन न पुनर्भोगा हेतु बदनाती, पुनर्भोग के लिए तुमको संसार में बंधेगा नहीं, आज नहीं तो तुमको बंधेगा, क्यों? अहम भाव जब करोगे कोई भी कर्म के प्रति तो बंधन का हेतु होगा। कर्म में कर्तृत्व का अभिमान किए बिना कर्म नहीं होता, याद रखना। संकल्प करते हो कि नहीं, शून्य वंदना करते हो कि नहीं, शून्य वंदना में भी संकल्प होता है ना, हम ऐसा करूँ। ओ आद्य ब्रह्मण द्वितीय परार्धे श्वेतवराह कल्पे, ब्रह्मण द्वितीय पर श्वेतवराह कल्पे भविष्य मंदांतरी अष्टविंशति तमें कलियुगे कलि प्रथम चरणे भारतवर्षे भरतखंडे जम्बु द्वितीय आर्यवर्त एक देशांतरगत अहम प्रातः संध्या वंदनम करिष्ये अथवा अमुक स्मार्तकर्मम करिष्ये, मैं करता हूं ये संकल्प करते हो तो अहम के आरोप के बिना संकल्प होता नहीं, कोई कर्म नहीं होता। अन्य वैसा श्रुत कर्म हो या स्मार्त कर्म हो, कर्तृत्व का आरोप करना पड़ेगा। अन्य बात तो कर्तृत्व का जहां आरोप करोगे कर्म में तो कर्म बंधन का हेतु होगा। बिना संकल्प पे कर्म होता केवल निष्काम कर्म, नानी बात संकल्प नहीं किया जाए, कर्तृत्व अभिमान नहीं किया जाए। तो जैसे श्री कृष्णाय परमात्मा ने आये काल पाठ किया कि नहीं, श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय दाय नमो नमः। परंतु यहाँ भी संकल्प है, हाँ नमस्कार क्लेश को नाश करो। क्यों कर, क्यों नमस्कार कर रहे हो? हमारा क्लेश को नाश कर दीजिए। तो भगवान को क्लेश नाश के कर्ता बनाया कि नहीं बनाया? तो क्लेश नाश करने के लिए बोलते हो कि नहीं बोलते हो? तो फिर हो गया और क्या। जब भगवान को बुलाया हम आपको नमस्कार करते हैं, तो नमस्कार के बदले में क्या चाहते हो? हमारा दुखों का नाश करो, क्लेश का नाश करो। तो भगवान को क्या बनाया? भगवान को तो बनाया हमारा काम कर दो। देखो तीन प्रकार के कर्ता होते हैं, एक सात्विक, एक राजसिक, एक तामसिक कर्ता। सात्विक कर्ता जो होते ना कर्म करता है, यानी उसमें कर्तृत्व का अभिमान नहीं करता। हमारा कर्तव्य है कर्म करना, फल देना ना देना मालिक क्या मर्जी है। तो कर्म करना हमारा कर्तव्य है, फल का उद्देश्य हमारा नहीं है। कर्म करते चलो, कर्म करते चलो, आने बात फल मिले सा ना मिले, फल के उद्देश्य से हम कर्म नहीं करते, आने बात। जैसे गीता में बतलाया ना 18वां अध्याय में, सात्विक कर्ता, राजसिक कर्ता, तामसिक कर्ता, तीन प्रकार के है। सात्विक कर्ता को मांगता नहीं, राजसिक कर्ता कहते हैं राजगुण प्रधान जो कर्ता होते हैं वो कहते हैं फल हमको फल चाहिए, क्या फल लिए बिना हम कर्म करेंगे नहीं, फल छोड़ेंगे नहीं, कर्म करेंगे फल छोड़ेंगे नहीं, फल तो चाहिए, फल देना पड़ेगा। तुम हमारा क्लेश नाश करना तुमको पड़ेगा, हमारा दुख नाश करना पड़ेगा, हमारा हमको एक बेटा देना पड़ेगा। हम तुम्हारे जप करते इतना दिन से पुत्री से यज्ञ करते करते करते करते पुत्रम दही पुत्रम दही पुत्रम दही करते करते मुंह सूख गया है, हमको पुत्र देना पड़ेगा, समझे कि नहीं? हमारा अमुक रोग विनाश करना पड़ेगा, हमारे अमुक बीमारी को दूर करना पड़ेगा। महाराज करते करते इतना दिन हो गया, पहले रोग में कोई बीमारी में कोई फर्क नहीं पड़ा है, जब करते करते अंगुली में कड़ा पड़ गया परंतु कोस हुआ नहीं, तो क्या करेंगे? तो राजसिक जप करने वाला भक्त, राजसिक कर्म करने वाला कर्ता, ये जो फल बिना फल चाहिए उनको फल लेना पड़ा। तामसिक करता करते पहले फल मिलेगा तब कर्म करूंगा, पहले दो मेरे को, देखूंगा तुम है कि नहीं, तुम कितना दे सकते हो। फल दो फिर भजन करेंगे, फल दो पहले, करते हो कि नहीं करते हो? तो ये तामसिक करता है, फल लिए बिना तुम्हारा सेवा हम नहीं करेंगे, हमारे घर में इतना 1000 रुपया भेज दो, हमारा घर बनाएगा, हम तुम्हारे यहाँ कर्म करेंगे।
1: 1000 रुपया
0: तो कहने का मतलब संसार में कर्म करते हैं, कर्म करने का सबका उद्देश्य, सबका लक्ष्य, सबका तरीका अलग अलग है, एक सा नहीं होते। अन्य बात, ऐसे पूर्त कर्म करते हैं, एक आदमी करते रहे, हाँ धर्मशाला बनाया, ईंट लगाया, पत्थर लगाया, ऐसे लगे ना पत्थर लगाते कि नहीं, हरिद्वार में जाओ आश्रमों में कितनी पत्थर लगाया, कितना हर रूम में पत्थर है, हर रूम में पत्थर है। आने बात, कोई एक जो है ना सज्जन जो है ना खूब रूम बनाया, पत्थर बनाया, ईंट लगाया।